0: 听众朋友们，接下来我们播送了大曼给他唱的一首歌曲。
1: ये दीवानी सी एक लड़के पे वो मरती थी नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी कुछ कहना था शायद उसको जाने किससे डरती थी जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थीप्यार कैसे होता है ये प्यार कैसे होता है और मैं सिर्फ यही कह पाता था

है श्री रामचरितमानस पाठ का। तो इस संगीत में रामचरितमानस पाठ में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 11।

श्री राम के युवराज पद पाने की पूर्व संध्या अयोध्या में बधावे बज रहे हैं और अंतःपुर में रानी कैकई को भवन में बैठी राजा दशरथ की गुहार सुन रही हैं। हे सुनैनी, मैं कल प्रातःकाल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, तुम मंगल साज सजो। कपटयुक्त प्रेम दिखाते हुए मुंह मोड़कर हंसती रानी कैकई बोली, कभी आपने दो वरदान देने को कहा था, किंतु अब तो उनके मिलने में भी संदेह है। निष्कलुष हृदय राजा ने अपनी तरह से रानी का मर्म समझा, हंसकर बोले, वे दोनों वर तो थाती की तरह तुमने संजो रखे हैं, कभी मांगा ही नहीं। रघुकुल में तो सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। कैकई ने वर मांगे, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक का, दूसरा वर भी हे नाथ मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें।

yourself. If you

0: मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमरीका के सेनेट में पारित और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक है। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
5: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्री ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
3: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
6: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
3: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक एफसीआरए पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
7: We have seen the comments.
8: हमने टिप्पणियां देखी।

0: की हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
1: रेगुलेट द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स।
2: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं।
0: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
2: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
4: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
5: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई

0: जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुझा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान क्यूआर कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर ओपीडी रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही तीन विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, एनटीए के तीन विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जलभराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to present IIT Delhi's highest honours to meritorious students during its convocation ceremony today. UPI transactions to remain free for consumers and small merchants clarifies Apex Digital Payments Body PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation is country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with

0: मुल्क का अंदरूनी मामला है। झारखंड सरकार ने भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बदउनवानियों पर मुजाहरे करने वाले तलबा के साथ पहली मरतबा बाकायदा बातचीत की। अमरीकी सीनेट ने रूसी बंदिशों से मुतालिक उस बिल को मंजूरी दे दी है जिसमें 5 मुल्कों पर 100% महसूल आयात करने के लिए कहा गया है। और मशरकी राजस्थान और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद तकरीब से खिताब करेंगे। वो 587 PhD स्कॉलर समेत 3000 से ज्यादा ग्रेजुएशन करने वाले तलबा से भी खिताब करेंगे जिन्हें तकरीब के दौरान डिग्रियों से सरफराज किया जाएगा। पेश एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी तकरीब के दौरान IIT दिल्ली के आला तरीन एजाजात जिनमें सदर का गोल्ड मेडल, डायरेक्टर का गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और इम्तियाजी नंबरों से कामयाब होने वाले तलबा को परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल्स अता करेंगे। इसके अलावा जनाब मोदी IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में कायम AI से आरास्ता आला कारकर्दगी वाली सुपर कम्प्यूटिंग सहूलत प्राम प्रज्ञा का भी इफ्तिताह करेंगे। इस जदीद तरीन सहूलत से इदारे की AI डेटा साइंस एडवांस कंप्यूटिंग और मुख्तलिफ मजामीन पर मबनी तहकीकी सलाहियत में इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि IIT दिल्ली में हमेशा ही तहकीक और इख्तिरा के शोबों में आला ताउन दिया है। न्यू डेस्क से शिवांगी मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: भारत की रकूम के लेन देन से मुतालिक कौंसिल PCI ने ऐलान किया है कि UPI सारिफीन के लिए मुफ्त ही रहेगा। कौंसिल ने एक बयान में तस्दीक की है कि हर भारतीय लेन देन पर बगैर कोई चार्जेस दिए डिजिटल वसीले से रकूम का फौरी लेन देन कर सकता है। कौंसिल ने यह भी कहा है कि अगर कोई कारोबारी डिजिटल वसीले से कोई रकम हासिल करता है तो उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। PCI ने यह भी कहा कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और RBI टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, घोटालों की रोकथाम और इख्तिरा के मैदानों में UPI की मोतबरियत को बरकरार रखने के लिए सरमाया लगा रहे हैं। PCI ने वजाहत की है कि कारोबारी खिदमात पर आयद ऐसे कोई भी चार्जेस जो कारोबारियों और रकूम फराहम करने वाली कंपनियों के दरमियान महज कारोबारी इल्तिजामात हों, उनका मतलब ये नहीं है कि ये चार्जेस सारिफीन डिजिटल पेमेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए अदा कर रहे हैं। उसने खास तौर पर कहा है कि UPI एक ऐसा अहम कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचा बन गया है जिसे बहुत से शहरी रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। भारत ने एक अमरीकी कानून साज की तरफ से बैरूनी अतियात के जाब्तों में तरमीम से मुतालिक भारत के मुजवजा बिल पर एतराज जाहिर किया है। भारत ने कहा है कि कानून साजी से मुतालिक उसके मामलात उसके अंदरूनी मामलात हैं जिनके बारे में पार्लियामेंट फैसले करती है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने यह बात नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए एक सवाल के जवाब में कही। भारतीय जहाजों और जहाजियों की हिफाजत और सलामती के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले को आला तरीन तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि पूरे खित्ते खलीज खित्ते में भारतीय मिशन, जहाजरानी की वजारत और समुद्र से मुतालिक हुकाम के लगातार राबते में हैं। उन्होंने कहा कि भारत बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते महफूज और बिला रोक टोक जहाजरानी व तिजारत के लिए कहता रहेगा। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के माबैन दिफा के समझौते के बारे में तर्जुमान ने कहा कि इस सिलसिले में पेशरफ्त पर करीबी नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान हालिया दिफाई समझौते के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस सिलसिले में पेशरफ्त पर करीबी नजर रखे हुए है। भारत और भूटान ने बिजली के शोबे में दो तरफा तावुन को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अहद को दोहराया है। बिजली, हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में भूटान के तवानाई और कुदरती वसाइल के वजीर लियोन पोगेम शेरिंग के साथ एक दो तरफा मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तावुन का जायजा लिया और पनबिजली के फरोग, सरहद के आर पार बिजली के कारोबार, तरसीली राबते, बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई और सलाहियत साजी के बारे में बात की। दोनों वजीरों ने लगातार तरक्की और इलाके में तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए तावुन की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अभी तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और भारत भूटान तवानाई शराकत दारी में जारी मुजाकरात और तालमेल के जरिए मजीद गहराई लाने का अज़्म किया। داخلی امور اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ آج ممبئی میں نیشنل اربن کوآپریٹو فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ

0: श्रोताओं, हार्मोन्स एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि हमारा शरीर काम कैसे करेगा। बच्चों के शरीर में हार्मोन्स का काम होता है ये तय करना कि उनकी ग्रोथ कैसी होगी। अगर हार्मोन असंतुलित होते हैं तो बच्चों को कई बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। बच्चों में असंतुलित हार्मोन से होने वाली समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से हमें बताने के लिए हमारे आज के विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खड़गावत। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। तो जैसा मैंने कहा, बच्चों में हार्मोन संबंधी समस्याएं, इस विषय पर आज हम जानकारी चाहेंगे हमारे सुनने वालों के लिए कि आमतौर पर जब बच्चे छोटे होते हैं या यूं माने कि नवजात शिशु होता है तो क्या क्या हार्मोन संबंधी समस्याएं देखने में आती हैं आमतौर पर।
1: हाँ जी, जब बच्चा बिल्कुल नवजात होता है यानी कि पहले महीने में या कुछ महीनों में, तो सबसे कॉमन जो हार्मोन की प्रॉब्लम उस वक्त हो सकती है वो है कि थायराइड की प्रॉब्लम, जो कि जन्मजात मानी जाती है कि बच्चे के शुरू से थायराइड की ग्लैंड विकास नहीं हुआ है। सो इसका सबसे अच्छा समाधान है, हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में सब में जन्म पे ही थायराइड के हार्मोन की जांच हो जाती है कॉर्ड ब्लड से लेके, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रोग्राम शुरू कर रही है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसमें सब बच्चों में जन्म पे थायराइड की जांच होगी, क्योंकि ये पाया गया है कि जन्म पे अगर थायराइड की प्रॉब्लम होती है किसी भी बच्चे को तो उसका दिमाग बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है यानी जिसे मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, वो हो जाता है। तो इसके लिए हम थायराइड की जांच कर सकते हैं और बिल्कुल आसान है, ब्लड सैंपल से लेके उसका ट्रीट करके हम बचा सकते हैं कि बच्चे का दिमाग एकदम नॉर्मल रहे। उसके अलावा जो बाकी जन्म पे हार्मोन की प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन नहीं है, जैसे कुछ हार्मोन की प्रॉब्लम होती है कि ये उसमें ये पता लगाना मुश्किल होता है कि लड़का है या लड़की है, इस तरह की हार्मोन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो बहुत रेयर है, कॉमन नहीं है।
0: जी जी, तो जैसा आपने डॉक्टर साहब कहा कि थायराइड पाया जाता है नवजात शिशु में भी, तो कहीं ना कहीं हम ये माने कि थायराइड जन्मजात अगर बच्चे में है तो ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है।
1: हाँ जी, थायराइड जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, क्योंकि इसमें थायराइड के अगेंस्ट, ग्लैंड के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाती हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में नुकसान होता है, और थायराइड किसी भी बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को कभी भी हो सकता है, जन्म पे भी हो सकता है, उसको 6 महीने पे भी हो सकता है, साल पे भी हो सकता है, आगे चल के 10-11 साल या उसको 50 साल या 80 साल, किसी भी उम्र में थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। और बच्चों में अगर होती है कि नवजात में जैसे हमने बात की कि इस तरह के लक्षण होते हैं, और अगर बच्चा 2-3 साल का है तो उसमें होता है कि उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, वजन बढ़ जाता है, कब्जी रहती है, खाना पूरा नहीं खाता है, अधिकतर टाइम सोया रहता है, एक्टिव नहीं रहता है, इस तरह के लक्षण होते हैं, और जैसे बच्चा स्कूल में जाना शुरू हो जाता है तो उसमें होता है कि अगर थायराइड हार्मोन कम बन रहा है तो उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस कम हो जाती है, वो एग्जाम जल्दी से पास नहीं कर पाता, उसकी मेमोरी अफेक्ट हो जाती है क्योंकि इसका असर दिमाग के विकास पे पड़ता है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, वजन ज्यादा होता है, बच्चा अधिकतर टाइम लेटा रहता है, खेलता नहीं है, उसकी आवाज भारी हो जाती है, स्किन ड्राई रहती है, कब्जी रहती है, इस तरह के लक्षण अगर होते हैं तो हमें थायराइड के बारे में एक बार जांच कर लेना चाहिए।
0: जी जी, तो एक बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब बताई कि जन्म के बाद थायराइड टेस्ट होना चाहिए, अगर हम नहीं करा रहे हैं तो ये एक चांस होता है कि बच्चे को थायराइड हो और आपको पता ही ना चले, और जैसा हम कहते हैं कि जितना जल्दी हमें समस्या का पता चलता है उतना ही जल्दी उसका समाधान हम कर सकते हैं। तो आपने सिम्टम्स बताए, तो अगर ये सिम्टम्स के साथ माता पिता आपके पास आते हैं बच्चे के साथ तो क्या आप कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं और फिर कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है ये भी बताइए।
1: हाँ जी, ये बिल्कुल जैसा मैंने कहा बिल्कुल आसान है, हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं, एक ब्लड सैंपल लेते हैं, 2 ml ब्लड लिया और उसमें थायराइड का टेस्ट कर लेते हैं, जिससे हमें क्लियरली पता चल जाता है बिना किसी कंफ्यूजन के कि थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं है, और ये ब्लड टेस्ट खाली पेट भी नहीं लेना है, कभी भी ले सकते हैं, दिन में रात में किसी भी वक्त लेके कर सकते हैं, और अगर उसमें थायराइड की मात्रा हमें पता चलता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है और हार्मोन कम है तो हम तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ट्रीटमेंट बहुत आसान है, एक टैबलेट आती है जो कि बहुत ही सस्ती टैबलेट है जिसका रोज का खर्चा 50 पैसे या 75 पैसे ऐसा है, वो टैबलेट खाली पेट सवेरे उठते ही बच्चे को देनी होती है और उसके बाद बच्चा एकदम नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। और एक बार हमने टैबलेट शुरू कर दी तो शुरू के 3-4 महीनों में हमें बार बार चेक करना होता है, और एक बार अगर थायराइड हार्मोन नॉर्मल आ जाता है तो फिर हम 3 महीने में एक बार चेक कर सकते हैं जब तक बच्चा ग्रो कर रहा है, और उसके बाद साल में एक बार चेक कर सकते हैं। तो

0: थायराइड का इलाज बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है और बिल्कुल भी महंगा नहीं है, आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन एक बार हमने शुरू कर दिया तो हमें ये जानना होगा कि ये लाइफ लॉन्ग इलाज है।
1: जी
0: बच्चा
1: जी
0: जब तक रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा, जब तक सांस चलेगी तब तक हमें इलाज बराबर देना पड़ेगा, हम बीच में बंद नहीं कर सकते
1: ठीक
0: हैं।
1: नहीं हो सकता है ये, एक
0: हाँ,
1: मैनेज
0: ठीक
1: किया
0: नहीं हो
1: जाएगा
0: सकता है,
1: इसको।
0: क्योर नहीं होता है, इसको हम मैनेज कर लेते हैं। और इससे जो हार्मोन नहीं बन रहा है हम बाहर से दे देते हैं, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है और एकदम नॉर्मल लाइफ लीड करता
1: पर रेगुलर चेकअप्स कराने पड़ते हैं।
0: है। शुरू के टाइम में जब तक बच्चा ग्रो कर रहा है हमें बार बार चेक करवाना है, लेकिन एक बार बच्चे की जैसे ग्रोथ पूरी हो गई है, 15-20 साल का हो गया, तो साल में एक बार थायराइड हार्मोन की जांच करवाना जरूरी है, और उससे हमें पता चलता रहे कि दवाई की मात्रा जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे
1: जी
0: हैं।
1: जी एक और बहुत जरूरी होता है डॉक्टर साहब, जब हम बच्चों की बात करते हैं ग्रोथ,
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: अगर किसी बच्चे की ग्रोथ सही नहीं है, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, तो थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाता है पेरेंट्स के लिए। तो एक तो कारण आपने बताया है कि थायराइड भी इसका एक कारण हो सकता है, क्या और भी कोई ऐसा हार्मोन होता है जैसे एंडोक्राइन सिस्टम में, जैसा
0: हाँ
1: आप
0: जी,
1: लोग जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और
0: हाँ जी,
1: जिसके लिए
0: बिल्कुल,
1: सचेत होना चाहिए।
0: हाँ जी, बिल्कुल।
1: जी जी
0: दूसरा, जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, ग्रोथ का मतलब फिर हम फिजिकल ग्रोथ से बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, बच्चा लंबा होता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, सो ये लंबाई के लिए जरूरी है कि थायराइड हार्मोन ठीक होना चाहिए। सो इसके लिए केवल थायराइड हार्मोन ही जिम्मेदार नहीं है, दूसरा बड़ा जो हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन है, जो कि हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहां से सिक्रीट होता है, और ये ग्रोथ हार्मोन है जो बच्चे की लंबाई बढ़ाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन में किसी भी तरह की कोई कमी रहती है, पूरा सिक्रीट नहीं हो पाता है, तो बच्चे की लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है, बच्चा छोटा रह जाता है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा बोना हो गया है। सो इसको भी हम आसानी से डायग्नोस करके इसका इलाज शुरू कर सकते हैं और बच्चा एकदम से वापस ग्रो होना शुरू हो जाता है, और ऐसे लंबाई बढ़ती है बच्चे की जैसे लगता है कि खींच के लंबा कर दिया है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि ग्रोथ हार्मोन की कमी के अलावा और भी कारण हो सकते हैं कि जिनसे बच्चे की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। अगर बच्चे को किसी भी तरह की कोई बीमारी है, जैसे बच्चे में खून की कमी है, या पेट में कीड़े हैं, या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, छाती का इन्फेक्शन है, पेशाब का इन्फेक्शन है, और या किसी भी ऑर्गन की, किसी भी लीवर, किडनी की, हार्ट की, किसी भी तरह की बीमारी है, तो बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ जाता है,
1: जी
0: क्योंकि जो शरीर में एनर्जी होती है वो लिमिटेड होती है, तो वो एनर्जी यूज हो जाती है उस बीमारी से लड़ने में, तो ग्रोथ के लिए बचती नहीं है, इसलिए ग्रोथ डिले हो जाती है। सो इसमें सबसे जरूरी है कि अगर बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो हमें ये पता करें। आमतौर पे हम माता पिता को ये बताते हैं कि 4 साल के बाद आप हर बर्थडे के दिन बच्चे को नाप लीजिए कि उसकी लंबाई कितनी है, और हर बच्चा कम से कम 5 सेंटीमीटर एक साल में बढ़ना चाहिए। अगर वो 5 सेंटीमीटर नहीं बढ़ता है तो थोड़ा सा ये चिंता का विषय है, और इसमें नजदीकी डॉक्टर से एक बार या बच्चों के जो डॉक्टर, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। उनके लिए आसान है, वो ग्रोथ चार्ट्स आते हैं, उन पे लंबाई लगा के देख लेते हैं कि ये बच्चा ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा। तो उन माता पिता के लिए जरूरी है कि जिनके बच्चे अभी ग्रो कर रहे हैं 4 साल के बाद, हर साल आप नाप लीजिए, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको तुरंत कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 5 सेंटीमीटर आपका बच्चा एक साल में नहीं बढ़ा है तो थोड़ा सा चिंता का विषय है, आप अपने चिकित्सक से सलाह ले लें।
1: जी तो ये तो आपने लंबाई की बात की डॉक्टर साहब, आपने ये भी कहा कि उनको जब हम सही दवाई दे देते हैं तो लंबाई बढ़ जाती है, तो किस उम्र तक बढ़ सकती है, ये भी एक प्रश्न है
0: हाँ जी,
1: कि वो कभी भी आपके पास आए तो ये समस्या का समाधान पा सकते हैं या कुछ उम्र तक ही हो सकता
0: हाँ
1: है।
0: जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि किस उम्र तक बच्चों की लंबाई हम बढ़ सकती है कि हम उसमें जांच करें, इलाज करें, लंबाई बढ़
1: जी
0: जाएगी। ये डिसाइड होता है उसकी उम्र से नहीं डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है कि उसके शरीर का डेवलपमेंट किस स्टेज में, डेवलपमेंट से मतलब उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट है कि एक लड़का है वो आदमी बन रहा है या एक लड़की है वो औरत में कन्वर्ट हो रही है, और जैसे ही उनका ये डेवलपमेंट पूरा हो जाता है उनकी लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है। सो आमतौर पे कहते हैं कि एक लड़की की जो लंबाई बढ़ती है वो 14-15 साल के बाद बढ़नी बंद हो जाती है, और लड़के की 16 से 17 साल के बाद बढ़नी बंद हो जाती है। ये एक आम तौर पे एक एज है, लेकिन अगर डेवलपमेंट जल्दी शुरू हुआ है तो जल्दी भी बंद हो सकती है, और डेवलपमेंट लेट शुरू हुआ है तो लेट भी बंद हो सकती है। सो ये एक रफ कट ऑफ है जिसके बाद लंबाई यूजुअली नहीं बढ़ती है।
1: जी तो आपने थायराइड बताया, ग्रोथ हॉर्मोन्स के बारे में
0: हाँ
1: बताया,
0: जी,
1: क्या बच्चों को जन्म से डायबिटीज भी हो सकते हैं?
0: बिल्कुल, बच्चों को डायबिटीज भी हो सकती है, हालांकि ये केसेस बहुत कॉमन नहीं है, जो हम आम पब्लिक में देखते हैं वो ये कहते हैं कि ये टाइप टू डायबिटीज है. बच्चों में टाइप टू डायबिटीज बहुत कम होती है, टाइप वन डायबिटीज अधिकतर होती है. इसका मतलब है कि

0: आपके जन्म से ही इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो कुछ केसेस में हमने देखा है कि जन्म पे भी डायबिटीज हो जाती है, जिनको इंसुलिन इंजेक्शन देना होता है 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 3 साल, कभी भी डायबिटीज हो सकती है। हालांकि टाइप 1 डायबिटीज है, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन हो सकती है। सबसे जरूरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, आजकल हमने ये देखा है कि बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, उस मोटापे बढ़ने की वजह से बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज भी होनी शुरू हो गई है। सो ये वो चीज है जिसको हम आसानी से बचा सकते हैं, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, खाने में घी, तेल, फैट हम कम करके उनका अगर मोटापा कम करेंगे, तो वो डायबिटीज जो बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज हो भी गई है, तो वापस भी ठीक हो सकती है, एकदम नॉर्मल भी शुगर रह सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हमें उनका लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा।
1: तो मोटापे से इसका संबंध है
0: हाँ जी
1: जी। तो और भी कोई ऐसी समस्या है, जैसे हमने 3 समस्याओं पर आज बात की, तो डॉक्टर साहब कोई और ऐसी समस्या हो तो जरूर हमारे श्रोताओं को बताएं उसके बारे में।
0: हाँ जी दूसरा होता है कि बच्चों की एक निर्धारित एज में उनका सेक्सुअल डेवलपमेंट शुरू होता है, जहाँ लड़का है वो आदमी में कन्वर्ट होना शुरू होता है, लड़की है वो औरत में कन्वर्ट होना शुरू होती है। ये सारे चेंजेस हैं जो हार्मोन से कंट्रोल्ड होते हैं, जिनके लिए अलग अलग हार्मोन्स हैं, वो ही ये चेंजेस शुरू करते हैं और वो ही ये कन्वर्जन कंप्लीट करते हैं। सो इन हार्मोन में किसी में भी सिक्रेशन में अगर प्रॉब्लम होती है, तो उससे इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी में मान लीजिए 12-13 साल हो गई और डेवलपमेंट शुरू ही नहीं हुआ है। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि डेवलपमेंट 9 साल पे शुरू होना है, वो 7 साल पे शुरू हो गया है। अगर लड़की है तो 7 साल पे उसके छाते का विकास शुरू हो गया है, महावारी शुरू हो गई है, जो कि एबनॉर्मल है और हमें उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। सो इसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, कि प्यूबर्टी अगर एक टाइम से पहले होती है तो भी एबनॉर्मल है, और प्यूबर्टी एक टाइम तक नहीं शुरू होती है तो भी एबनॉर्मल है। सो इन दोनों के लिए हमें हार्मोन के टेस्ट करके पता करना होता है, और अगर जल्दी शुरू हुई है तो भी हम इलाज करके उसको रोक सकते हैं, और अगर लेट तक नहीं शुरू हुई है, 13-14 साल तक नहीं शुरू हुई है, तो भी हम उसकी जांच करके उसका इलाज करते हैं और प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। सो प्यूबर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी काफी कॉमन है इस एज ग्रुप में, और जैसे मोटापा बढ़ रहा है बच्चों में, तो उसका नतीजा यह है कि बच्चों के प्यूबर्टी डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ रहा है। लड़कियों में देखा गया कि अगर लड़कियों का वजन ज्यादा है प्यूबर्टी शुरू होने के टाइम पे, तो उनको प्यूबर्टी जल्दी शुरू हो जाती है, 6 महीने जल्दी शुरू हो जाती है, कि 9 साल पे शुरू होने, तो 60-8.5 साल पे ही शुरू हो जाती है। इसके विपरीत लड़कों में देखा गया कि अगर वो मोटे हैं तो प्यूबर्टी उनमें लेट शुरू होती है। सो इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि हार्मोन से गवर्न होती है, इसका हम आसानी से पता करके इलाज कर सकते हैं।
1: जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर साहब आपने बताई। और प्यूबर्टी एक ऐसी उम्र होती है किशोर अवस्था, जब बहुत हार्मोन्स का बदलाव होता है, और ये भी कहें कि एक वेव, एक फ्लड होता है शरीर में हार्मोन्स का, तो उस समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो बचपन में जो हमने बात की और एक प्यूबर्टी में, तो जरूर ये एक ऐसी समस्या है जिस पर हमें विस्तार से बात करनी होगी। तो जरूर हम अगले कार्यक्रम में आपके साथ इस विषय पर बातचीत करेंगे, हमारे श्रोताओं को इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आज हम अपने कार्यक्रम में इतना ही ले रहे हैं कि हार्मोन की जो समस्या है बच्चों में, जो छोटे बच्चों में टिल प्यूबर्टी क्या क्या होती है। एक चलते चलते और सवाल दिमाग में आ रहा है डॉक्टर साहब कि आपने बोला कई समस्याएं इसमें जो हमने बात की वो जन्म से भी हो सकती हैं, तो क्या कुछ ऐसी प्रिकॉशंस, ऐसी सावधानी गर्भवती महिला ले सकती है, चाहे खान पान की हो, चाहे एक्सरसाइज हो या कुछ भी और हो, जिससे कि इस तरह के चांसेस को कम किया जा सके?
0: सबसे पहले तो गर्भवती महिला को यह जानना जरूरी है कि जब वो प्रेग्नेंट है, तो उन्हें ऐसी दवाइयां बिल्कुल नहीं लेनी है, ऐसा कोई इलाज जिसकी सेफ्टी प्रूव नहीं है। हो सकता है कि इसमें से कुछ, जैसे मान लीजिए कुछ चूर्ण या पुड़िया लें जिनका कुछ पता नहीं है, उनमें हार्मोन की दवाइयां मिली हुई है, तो वो बच्चे के लिंग पे असर कर सकती है, बच्चे का ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है कि जिसमें हमें पता नहीं हो लड़का है या लड़की है। सो अवांछित दवाइयां हैं वो बिल्कुल नहीं लें, साधारण खाना खाएं और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, ताकि प्रेगनेंसी में हम डायबिटीज होने का खतरा कम कर सकें। और बाकी जो हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बदलाव इससे खाने पीने से या फिजिकल एक्टिविटी से नहीं होता है। अगर डायबिटीज मदर को नहीं है तो एकदम बच्चे पर एकदम नॉर्मल रहेगा।
1: जी, तो आज हमने बात की हार्मोनल इश्यूज इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में हार्मोन संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, कैसे इनको पहचान कर इनका इलाज कराया जा सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में रहे डॉक्टर राजेश खड़गावत, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: बच्चों में हार्मोन संबंधी समस्याओं पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खड़गावट से आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
0: अच्छा मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मानसिक तनाव के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कई तरह की बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों में होने वाली मानसिक समस्याएं, उनके लक्षण, निदान और होम्योपैथी से उपचार की विधि के बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेषज्ञ हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर B.L. मीना। भेंट करता है श्वेता शर्मा।
2: बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चों में समस्याएं और मानसिक बीमारी में क्या अंतर है और इसका क्या इलाज होता है, यही जानने के लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर B.L. मीना जो होम्योपैथी स्पेशलिस्ट हैं। बच्चों में मानसिक बीमारी का पता लगाना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला हमारा सवाल है कि आखिर बच्चों में मानसिक बीमारी कितने तरह की होती है?
3: मैडम, मैं ये बताना चाहूंगा कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 10-20% बच्चे और बड़े लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। आप इंडिया में देखेंगे तो लगभग 20 करोड़ और मोर देन 20 करोड़ से अधिक मानसिक बीमारी से लोग ग्रस्त हैं। अब आपने पूछा कि कितने प्रकार की बीमारियां होती है, तो इसमें आप देखेंगे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ADHD, OSD, OCD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, फोबिया जिसमें बच्चों में वो शक करने लगते हैं, उनमें कई तरह के डर पैदा हो जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं
2: जिसकी वजह से वो हकलाने भी लगते हैं।
3: बिल्कुल हकलाने लगते हैं, स्कूल जाने से भी डरने लगते हैं, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं।
2: क्योंकि बच्चे अक्सर शोर मचाते हैं या पेट का दर्द, सिर दर्द ये रहता है, स्कूल नहीं जाना, इस तरह की शिकायत करते हैं, क्या ये सारी चीजें?
3: ये सारे मैं आपको इसमें जो सिम्टम्स बताएंगे उसमें आप जानोगे कि हम कैसे पहचाने बच्चों में मानसिक बीमारी को कैसे पहचाने। आप देखेंगे कि बच्चों में व्यवहारिक परिवर्तन आने लगता है, वो अब उनका जो व्यवहार है वो बात बात में गुस्सा करने लगते हैं, अपने आप को वो अलग दूर कोने में बैठने को मजबूर करते हैं, या अलग जब भी गेस्ट लोग आते हैं तो वो अलग रहते हैं, बच्चों में खेल नहीं रहे होते हैं, तो ये उनका व्यवहारिक परिवर्तन आने लगते हैं। दूसरा, उनका भूख या नींद के पैटर्न में बदलाव आने लगते हैं। आप देखेंगे वो या तो उदास है या चिंता हो रही है उनमें, या उनमें एक अलग तरह का डर है, तनाव है, उनके आत्मविश्वास की कमी है। पेरेंट्स के सामने कुछ भी बोलेंगे, पोएम भी बोलेंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन जैसे ही कोई बाहर का कोई बंदा आ गया तो उसके सामने वो नहीं बोल पा रहे, तो उनके आत्मविश्वास की कमी है।
2: जी, तो सर ये समस्याएं जो होती हैं डॉक्टर साहब, ये बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं किस कारण की वजह से होती है?
3: इसमें बहुत सारे कारण है, इसमें आप पाएंगे कि आनुवंशिक बीमारी भी है ये।
2: अच्छा।
3: हाँ, कुछ हद तक ये ट्रांसफर भी होती है। इसके अलावा मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट अगर ठीक से नहीं होता है, नींद अगर प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, खान पान उनका ये है। दूसरा, एक ट्रोमा एक बहुत बड़ा कारण है। ट्रोमा में हमें मालूम ही नहीं चलता कि बच्चे को कब ट्रोमा इन इंजरी, वो भावनात्मक इंजरी भी हो सकती है। अच्छा। आपकी शारीरिक इंजरी भी हो सकती है जिसके कारण से बच्चों में ये मानसिक बीमारी हो सकती है। परिवार में कई ऐसी गतिविधियां होती हैं, पेरेंट्स के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे, रिलेशन नहीं चल रहा, उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं। बच्चों में देखो, अब स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनमें साइबर बुलिंग हो जाती है, एक उनमें झगड़े हो जाते हैं। दूसरा, आप सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया में पाएंगे कि बच्चे सोशल मीडिया के साथ में बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि उनको बच्चों को अपना मोबाइल दे दिया और माएं जो हैं वो अपना काम में लग गई, पेरेंट्स भी, फादर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आप देखेंगे कि जो ट्रोमा कब होता है, हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि बच्चे को ट्रोमा कब हो गया।
2: जी।
3: आप जब जो स्क्रीन देख रहा है, स्क्रीन में कौन सी मूवी देख रहा है, कौन सा सीरियल देख रहा है, कौन सी रील देख रहा है, उस रील में ऐसा कौन सा सीन आ गया जिसकी वजह से उस बच्चे को मानसिक ट्रोमा हो गया। जो मानसिक ट्रोमा आज हुआ है उसका लॉन्ग टाइम तक उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो इसकी वजह से वो धीरे धीरे करके मानसिक रोग का शिकार हो जाएगा।
2: जी, क्या हम ये कोरोना के टाइम पर भी जो बच्चे रहे हैं, छोटे बच्चे रहे हैं जिन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिला उस वक्त, उनमें ये सारे ट्रॉमा के जो लक्षण है वो देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं?
3: बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि उन्हीं में ज्यादा मिलता है, एक्चुअली वो भी एक तरह का ट्रॉमा था। उस ट्रॉमा से क्या हुआ कि पेरेंट्स भी अफेक्ट आया, पेरेंट्स ने बच्चों को बाहर जाने से रोका, उनको एक टेरर उस घर के अंदर पैदा हो गया कि नहीं कोरोना आ गया है, तो वो ठीक असर बच्चों पे पड़ा। उस बच्चों पे पड़ने की वजह से ये हुआ कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो रुक गया, बाहर जो सोशलाइजेशन जो होना था वो रुक गया, तो धीरे धीरे बच्चों ने एक अपनी सेल में चले गए। इससे ही मानसिक बीमारी ने बच्चों में और बड़ों में दोनों में ही इसने अपने पैर फंसा।
2: तो होम्योपैथी में इस बीमारी का

0: क्या इलाज है?
1: होम्योपैथी में देखो किसी भी बीमारी का होम्योपैथी में पर्टिकुलर डिजीज के नाम से हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों के आधार पे होम्योपैथी में दवाइयां सिलेक्ट की जाती है
0: जी।
1: एक होम्योपैथ ओवरऑल पूरे जो पेशेंट जो आया है उसको ओवरऑल स्टडी करता है, ओवरऑल सारे सिम्टम्स लेता है, लेने के बाद में हम किसी फाइनल मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। और जब वो फाइनल मेडिसिन का सिलेक्शन होता है वो ओवरऑल आइदर ब्ले उसमें मानसिक बीमारी हो, किसी को फिजिकल डिजीज हो, कोई भी जो भी डिजीज हो, सारी चीजों को वो मेडिसिन कवर करती है।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि छोटे बच्चे होते हैं उनमें लक्षण तो इतने आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आपने जैसे बताया है कि आपको पूरा ओवरऑल उसकी स्टडी करनी पड़ती है, तो एक छोटे से बच्चे की आप किस तरह से स्टडी करते हैं ताकि आप उसे एक दवाई दे सके होम्योपैथी की?
1: छोटे बच्चों में हमें एक फाइन ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। वो फाइन ऑब्जर्वर सबसे पहले ऑब्जर्वर पेरेंट्स को बनना पड़ेगा, उसके बाद में हम स्कूल के टीचर्स को बनना पड़ेगा, उसके बाद में हमारे फिजिशियंस का रोल आता है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे का व्यवहार पैटर्न में क्या बदलाव आ रहा है, वो क्या सोशलाइज हो रहा है, क्या बच्चे जो उसके जो घर में और अदर बच्चे उनके साथ खेल रहा है, क्या वो अपने टॉयज को चीजों को शेयर कर रहा है, क्या वो आप जो कुछ कह रहे हो उस पर अटेंशन दे रहा है, क्या उसका रिएक्शन आ रहा है। अगर ये सब चीजें अगर नहीं हो रही है तो हम सोच सकते हैं कि हाँ बच्चे में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। फिर हमें उसको कॉज रूट तक जाना पड़ेगा कि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या पेरेंट्स हैं, क्या उसकी वजह सोशल मीडिया है, क्या उसकी वजह उसके दोस्त लोग हैं, क्या उसके जो भाई बहन हैं, तब जाके हमें उसको जाना पड़ेगा।
0: और ये कहा जाता है कि होम्योपैथी जो दवाइयां हैं वो असर करने में टाइम लगाती हैं, तो ये बात कहाँ तक सच है या क्या मिथ है?
1: नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। होम्योपैथी दवाई कहीं देर से असर नहीं करती है, लेकिन इसका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि सोचो अगर हम बच्चे को अगर पेशेंट एज ए पेशेंट अगर हमारे पास आया है तो उसका जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है पेरेंट्स ने, या तो वो पूरे सिम्टम्स बताएं या डॉक्टर या जो फिजिशियन है वो उसको ठीक से ऑब्जर्व करें। अगर ठीक से ऑब्जर्व कर लेगा, अगर ठीक से डॉक्टर के पास सारे सिम्टम्स आ जाएंगे, तो होम्योपैथी की मेडिसिन का सिलेक्शन बिल्कुल सटीक होगा। और सटीक होगा तो आप मेरा विश्वास करिए इतनी फास्ट काम करती है कि आप बिलीव भी नहीं करेंगे क्या हो सकता। कई ऐसे पेशेंट रहेंगे जो सोचे यार क्या मेडिकल हो गया। अभी मैं रिसेंटली बात करूं तो एक पेशेंट आया था, उसका ये था कि कहीं अफेयर चल रहा था, वो उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसका सारा बिजनेस उसने ठप कर लिया और एक सेल में चला गया और वो सारी चीजें बंद कर दी उसने। उसकी सिस्टर मेरे पास लेके आई, पूरी हिस्ट्री बताई, हमने सिंगल मेडिसिन दी और आप बिलीव नहीं करेंगे विद इन 10 डेज उसने कहा डॉक्टर साहब मैं मेरे बिजनेस गाड़ियां ट्रांसपोर्ट का काम था क्या मैं उस साथ चले जाऊं। तो इतना फास्ट।
0: कभी कभी बच्चे दवाइयां नहीं लेना चाहते या दवाइयां लेने से इनकार कर देते हैं, तो ऐसे में बच्चों को किस तरह से आप दवाइयां देते हैं और किस तरह से अगर बच्चे बीच में ही दवाइयां छोड़ दें तो उसका क्या नेगेटिव असर होता है?
1: नहीं, होम्योपैथिक की ब्यूटी यही है कि होम्योपैथी में जब बच्चा आ गया और एक बार दवाई लेना शुरू कर दिया तो वो मीठी गोलियों के लिए पेरेंट्स और उसके बच्चे दोनों कहेंगे नहीं नहीं मीठी गोली के लिए चलो
0: जी।
1: अच्छा, और अच्छे से अगर हमने अगर उसको सिम्टम्स लिए हैं और अच्छे से अगर दवाई दी है तो नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं।
0: बिल्कुल। क्या इस बीमारी को रोका जा सकता है, इसके रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है?
1: रोकथाम के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जो सोशल स्टिग्मा जो ट्रॉमा है हमें उसको रोकना पड़ेगा। सबसे पहले हमें रोकने के लिए कि सोशल स्टिग्मा और जो ये जो डर है कि लोगों में एक तरह का डर है कि यार ये मैं बीमारी बताऊं या नहीं बताऊं, ये सबसे बड़ी वजह है। लोग बच्चे को या अपने को खुद को भी ये नहीं साबित करना चाहते कि मैं मानसिक बीमारी का रोगी हूं, मैं मानसिक बीमारी की दवाएं ले रहा हूं, यही वजह है कि बीमारी बढ़ती जा रही है। तो हमें इस स्टिग्मा को, इस डर को हमें निकालना पड़ेगा
0: जी।
1: अगर हम निकालने के बाद में दवाई और साइकोथेरेपी अगर दोनों को साथ साथ लिया जाए तो ये बीमारी को हम जड़ से मिटा सकते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि समाज में काफी मतलब नेगेटिव नजरिया है मानसिक बीमारी को लेके, तो इस नजरिए को आपके नजरिए से कैसे हम दूर कर सकते हैं?
1: इस नजरिए को दूर करने के लिए हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे इजीली साइकोथेरेपिस्ट मिल जाए, इजीली जो मानसिक रोगी हैं उसको अटेंड करने के लिए डॉक्टर्स मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो हम अर्ली इंटरवेंशन कर पाएंगे, जल्दी पहचान कर पाएंगे कि हाँ ये मानसिक रोगी है। अगर मानसिक रोगी है तो फिर उसको हमको साइकोथेरेपी और मेडिसिन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन दिया जाए तो ये बीमारी जड़ से जा सकती है।
0: तो डॉक्टर साहब, आप हमारे जो सुनने वाले हैं उनको ऐसे क्या टिप्स देना चाहेंगे जिसकी वजह से जो बच्चों में मानसिक विकार हो रहे हैं वो दूर हो सके या फिर वो विकार आ ही ना?
1: इसके लिए मैं दो टेक्निक बताना चाहूंगा। दो टेक्निक में क्या, एक है ABCD टेक्निक और दूसरी टेक्निक है परमा टेक्निक। आप ABCD टेक्निक में आप जानेंगे कि ABCD आप चार उनको याद रखिए। ए मीन्स है एक्टिविटी। आप देखेंगे कि कोई भी इंसिडेंट हुआ है वो एक्टिविटी में आता है, कि कोई भी इंसिडेंट हो जिसकी वजह से उसको वो

0: उसके अंदर गुस्सा आएगा, उसको एंगर होगा, उसका खुशी या दुख होगा, ये उसका नतीजा हुआ सी। डी में क्या होगा कि हमें इन तीनों चीजों के बाद में हमें अपने आप को, जो पेशेंट है या डॉक्टर है वो उसको सलाह देगा कि आप उन तीनों चीजों पे एक क्वेश्चन मार्क लगाइए कि जो मेरा जो बिलीव सिस्टम था उससे अलग एक दूसरा पार्ट भी तो हो सकता है
1: जी।
0: हो सकता है आपने उसको स्माइल दी, उसने आपको देखा ही नहीं होगा, इसलिए उसने इग्नोर किया होगा
1: जी।
0: तो हमें जो डी पार्ट है, डी पार्ट पे काम करना पड़ेगा। अगर डी पार्ट में काम करेंगे तो हमारा ये जो मानसिक विकार है वो कम होंगे। दूसरी टेक्निक में परमा की बात कर रहा था, परमा इन द सेंस, पी इन द सेंस पॉजिटिव इमोशंस। हमें पॉजिटिव इमोशंस पे काम करना पड़ेगा, क्या जो हमारी खुशी के पल थे उन पे हमें काम करना है, उन्हीं के बारे में हम सोचेंगे, अच्छी भावनाओं को सोचेंगे तो हमें एक पॉजिटिव भावना आएगी, हमें खुशी का इजहार होगा। दूसरा ई का मतलब एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब कोई भी पल हो जो आपका वर्तमान है उसके अंदर आप एंगेज रहिए, खेल रहे हो तो जी भर के खेलिए, फ्लो में खेलिए,
1: इसी पल में रहिए,
0: इसी पल में रहें, जी भर के खेलिए आप। दूसरा कोई काम कर रहे हो तो जी भर के अच्छे से काम करिए। आर रिलेशन, रिलेशन न सिर्फ के जो भी रिलेशन आपके हैं उन रिलेशन को आप अच्छे से पालिए, उनको जो भी रिलेशन है उसको आप प्रमोट करिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, तो उसको वो एक आपका जो रिलेशन अच्छा बना रहेगा। एम मीन्स है मीनिंग, आपकी जो लाइफ है उसको मीनिंगफुल बनाइए, आपको अपने टारगेट्स बड़े बनाइए। जब टारगेट बड़े बनाएंगे तो आपकी लाइफ का एक वो रहेगा, तो आपने कभी भी आत्महत्या जैसा तो विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि आप उसके पीछे लगेंगे। तीसरा है अचीवमेंट, अचीवमेंट इन द सेंस कि आपके जो भी छोटी छोटी खुशियां हो रही है उनको आप सेलिब्रेट करिए। बच्चों का कोई भी अगर उसने एक अच्छा काम किया तो बच्चों को आप उसको सेलिब्रेट करिए, जैसे सेलिब्रेट करेंगे तो पता लगेगा कि उसकी खुशी के पल का अंदाजा नहीं रहेगा। तो ये दो टेक्निक अगर हम दवा के साथ साथ अगर यूज करेंगे तो ये जो मानसिक बीमारी है वो काफी हद तक डाउन हो जाएगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताई और जो बच्चों में मानसिक विकार है उसके बारे में इतने विस्तार से बताया और हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
2: बच्चों में मानसिक विकार और होम्योपैथी से इसका उपचार, अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर बीएल मीना से। आपसे बात कर रही थी श्वेता शर्मा। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत यहीं संपन्न होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: और श्रोताओं, आप समय हुआ है कार्यक्रम धरती आकाश का। आज आप सुनेंगे वार्ता हाइड्रोजन ऊर्जा का बढ़ता महत्व और E20 एथेनॉल से जुड़ी भ्रांतियां। वार्ताकार हैं श्री इंदु शेखर शुक्ल, जो कि एक अध्यापक हैं।
4: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
5: मैं इंदु शेखर शुक्ल आज हरित ऊर्जा का महत्व के बारे में आप सभी को जानकारी दूंगा। हरित ऊर्जा में आज विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे हाइड्रोजन ऊर्जा की और इथेनॉल ऊर्जा की। आधुनिक परिवेश में इन दोनों ही ऊर्जाओं का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, इसको लेकर के कई भ्रांतियां भी हैं। आज इन सारी चीजों के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। हरित ऊर्जा का महत्व कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण को कम करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने की क्षमता में निहित है। सरल शब्दों में हरित ऊर्जा का अर्थ है पृथ्वी को प्रदूषित किए बिना बिजली या ताप उत्पन्न करने के लिए प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करना। हरित ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में शामिल है हाइड्रोजन ऊर्जा, इथेनॉल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। आज हम विश्लेषण करेंगे हाइड्रोजन एवं इथेनॉल ऊर्जा का। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा की। हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन से, पानी से या दोनों के मिश्रण से निकाला जा सकता है। प्राकृतिक गैस वर्तमान में हाइड्रोजन उत्पादन का प्राथमिक स्रोत है, जो लगभग 70 मिलियन टन के वार्षिक वैश्विक हाइड्रोजन उत्पादन का लगभग 3/4 हिस्सा है। ये वैश्विक प्राकृतिक गैस उपयोग का लगभग 6% है। आज हाइड्रोजन का उपयोग मुख्य रूप से उद्योगों द्वारा किया जाता है, विशेष रूप से तेल शोधन, अमोनिया उत्पादन, मिथेनॉल उत्पादन और इस्पात उत्पादन में। इस हाइड्रोजन की लगभग पूरी आपूर्ति जीवाश्म ईंधनों से होती है। हाइड्रोजन को मौजूदा प्राकृतिक गैस नेटवर्क में मिलाया जा सकता है, जिसकी सबसे अधिक संभावना बहुमंजिला और वाणिज्यिक भवनों में है, विशेष रूप से घनी आबादी वाले शहरों में, जबकि दीर्घकालिक संभावनाओं में हाइड्रोजन बॉयलर या ईंधन सेल में

हाइड्रोजन का प्रत्यक्ष उपयोग शामिल हो सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण के लिए हाइड्रोजन एक प्रमुख विकल्प है और विद्युत प्रणाली की लचीलता बढ़ाने के लिए गैस टर्बाइनों में हाइड्रोजन और अमोनिया का उपयोग किया जा सकता है। अमोनिया का उपयोग कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों में उत्सर्जन को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। हाइड्रोजन का उपयोग कुछ उद्योगों में पहले से ही व्यापक रूप से किया जा रहा है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में इसकी पूरी क्षमता का अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है। स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता का लाभ उठाने का ये सही समय है। G20 की अध्यक्षता कर रही जापान सरकार के अनुरोध पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEEA ने हाइड्रोजन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने और इसके भविष्य के विकास पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में पाया गया कि स्वच्छ हाइड्रोजन को वर्तमान में अभूतपूर्व राजनीतिक और व्यावसायिक गति मिल रही है और दुनिया भर में नीतियों और परियोजनाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि अब समय आ गया है कि प्रौद्योगिकियों को बढ़ाया जाए और लागत कम की जाए ताकि हाइड्रोजन का व्यापक उपयोग हो सके। हाइड्रोजन बहुमुखी ऊर्जा है। आज उपलब्ध प्रौद्योगिकियां हाइड्रोजन को ऊर्जा उत्पादन, भंडारण, परिवहन और विभिन्न तरीकों से उपयोग करने में सक्षम बनाती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कोयला और तेल सहित कई प्रकार के ईंधन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं। इसे पाइपलाइनों द्वारा गैस के रूप में या द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG की तरह जहाजों द्वारा तरल रूप में परिवहन किया जा सकता है। इसे घरों को बिजली देने और उद्योगों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए बिजली और मीथेन में परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही कारों, ट्रकों, जहाजों और विमानों के लिए ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नवत हैं। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन की तुलना में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अधिक महंगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, जिसका उपयोग हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए किया जाता है, बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है और भारत में नवीकरणीय बिजली की लागत अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है। वर्तमान में भारत में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए अवसंरचना की कमी है। इसमें हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों और हाइड्रोजन के परिवहन के लिए पाइपलाइनों की कमी भी शामिल है। हरित हाइड्रोजन के संभावित लाभों के बावजूद वर्तमान में भारत में इस प्रौद्योगिकी की सीमित रूप से ही अपनाया जा रहा है। आम लोगों के बीच हरित हाइड्रोजन के बारे में जागरूकता एवं समझ की कमी के साथ साथ इस प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए व्यवसायों के लिए प्रोत्साहन की कमी के कारण ये स्थिति बनी हुई है। व्यावसायिक रूप से हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए हरित हाइड्रोजन का निष्कर्षण उद्योग के समक्ष विद्यमान सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन की लागत को कम करने के लिए भारत में नवीकरणीय बिजली सृजन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। ऐसा सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार के माध्यम से किया जा सकता है। सरकार इस प्रौद्योगिकी के उत्पादन एवं उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स क्रेडिट एवं सब्सिडी जैसे विनियामक प्रोत्साहनों को लागू करके हरित हाइड्रोजन के अभिग्रहण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आम लोगों को ग्रीन हाइड्रोजन के लाभों और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में इसकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता अभियानों और शैक्षिक पहलों के माध्यम से इस उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत में हाइड्रोजन रेल का आगमन हरित ऊर्जा से संभव हो सका है। आइए जानते हैं हाइड्रोजन रेल के बारे में। भारतीय रेल स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन के एक नए युग में प्रवेश कर रही है। हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली स्वदेशी ट्रेन इस अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये एक स्वचालित इंजन है जो चलायमान रहते हाइड्रोजन का उपयोग करके अपनी बिजली उत्पन्न करता है। 17 जुलाई 2026 को उद्घाटन के साथ हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया। ये उत्तर रेलवे के जींद सोनीपत खंड पर चल रही है। यह ट्रेन समर्पित हाइड्रोजन भंडारण, ईंधन भरने और परिचालन बुनियादी ढांचे के साथ उन्नत प्रणोदन प्रौद्योगिकी से युक्त है। ये भारत में स्वच्छ रेल परिवहन की व्यवहार्यता को प्रदर्शित कर रहा है। एक प्रायोगिक पहल के रूप में विकसित ये ट्रेन नवाचार के लिए भारतीय रेल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार परिवहन को भी बढ़ावा देती है।
इस ट्रेन के उद्घाटन के साथ भारत हाइड्रोजन से चलने वाले रेल परिवहन की खोज करने वाले देशों के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है। इनमें पूर्व में जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी रेलवे हाइड्रोजन भंडारण और ईंधन भरने की सुविधा हरियाणा के जींद

में स्थापित की गई है। इस स्वदेशी संयंत्र में एक बार में लगभग 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन का भंडारण होता है। यह हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन संचालन में मदद करेगा। ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। भारतीय रेल के निरंतर आधुनिकीकरण के साथ ये पहल व्यापक रूप से अपनाने की नींव है। ये ट्रेन अधिक सुदृढ़ परिवहन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। 17 फरवरी 2004 को स्टेन थॉमसन और जिम बोमन द्वारा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी में हाइड्रोजन रेल के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक खोज इंजन लक्ष्य शब्द के रूप में इसे शामिल करने के बाद हाइड्रेल शब्द प्रचलन में आया।

आइए अब समझते हैं E20 पेट्रोल के बारे में। E20 पेट्रोल ऐसा ईंधन है जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है। सरकार ने एथेनॉल उत्पादन बढ़ाया और E10 से E20 तक का सफर केवल 3 वर्षों में पूरा कर लिया। ये परिवर्तन मूल योजना से कहीं अधिक तेज रहा। हाल ही में भारत ने E20 पेट्रोल का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले हासिल कर लिया। इसके बाद सरकार ने जून 2026 में E85 ईंधन लॉन्च किया और अब E25 तथा फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इस तेज बदलाव के कारण लाखों ऐसे वाहन भी E20 पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें मूल रूप से E10 ईंधन के लिए डिजाइन किया गया था। यही कारण है कि माइलेज और इंजन पर प्रभाव को लेकर बहस तेज हो गई है। एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है, अर्थात समान मात्रा में एथेनॉल जलाने पर पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त होती है। जब इंजन को समान शक्ति उत्पन्न करनी होती है तो उसे अधिक मात्रा में ईंधन जलाना पड़ता है। यही कारण है कि E20 पेट्रोल के उपयोग से कई वाहनों में माइलेज कम दिखाई देती है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH है, जबकि पेट्रोल में अधिक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। सरकार अब E20 के बाद E25 और E85 की दिशा में आगे बढ़ रही है। E25 में 25% एथेनॉल और 75% पेट्रोल होता है। E85 में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। इन ईंधनों का उपयोग मुख्य फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में किया जाता है। फ्लेक्स फ्यूल वाहन ऐसे वाहन हैं जो विभिन्न अनुपातों में एथेनॉल और पेट्रोल के मिश्रण पर आसानी से चल सकते हैं। इनमें विशेष प्रकार के इंजन, फ्यूल इंजेक्टर, पाइप, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम और जंगरोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है। भारत के लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि उच्च एथेनॉल मिश्रण तभी सफल होगा जब उपभोक्ताओं को विकल्प, उचित कीमत और तकनीकी रूप से सक्षम वाहन उपलब्ध हों। E20 पेट्रोल के फायदे क्या हैं, आइए जानते हैं। कच्चे तेल के आयात में कमी, विदेशी मुद्रा की बचत, किसानों की आय में वृद्धि, जैव ईंधन उद्योग को बढ़ावा, कार्बन उत्सर्जन में कमी ऊर्जा सुरक्षा में मजबूती प्रदान करता है। E20 पेट्रोल भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हरित ईंधन नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पेट्रोल आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को लाभ मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। हालांकि सरकार को E25 और E85 जैसे उच्च एथेनॉल मिश्रण लागू करने से पहले वाहन उद्योग, उपभोक्ताओं और ईंधन वितरण प्रणाली को पूरी तरह तैयार करना होगा। ब्राजील की तरह उपभोक्ताओं को विकल्प और मूल्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराना भी आवश्यक होगा। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम भारत की ऊर्जा रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ माना गया है। इसकी प्रगति, वैज्ञानिक मूल्यांकन, चरणबद्ध कार्यान्वयन और सरकार उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को दर्शाती है। इस कार्यक्रम ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है, उत्सर्जन को कम किया है और किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा किए हैं। इसने कच्चे तेल के आयात को भी कम किया है और घरेलू स्तर पर उत्पादित नवीकरणीय ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया है। EBP कार्यक्रम स्वच्छ, अधिक लचीले और आत्मनिर्भर परिवहन ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देना जारी रखेगा। भारत इथेनॉल मिश्रण को अपनाने वाला अकेला देश नहीं है, ये अब विश्व स्तर पर स्वीकृत प्रथा है। कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने इथेनॉल को अपनी ईंधन रणनीति में मजबूती से शामिल कर लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में E10 पूरे देश में मानक इथेनॉल मिश्रित ईंधन है। अमेरिकी सरकार के समर्थन से ई

15 का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। लाखों वाहन पहले से ही फ्लेक्सिबल ईंधन के अनुकूल हैं। ये वाहन E85 तक के मिश्रण पर भी चल सकते हैं। इथेनॉल के उपयोग में ब्राजील वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना हुआ है। वर्तमान में यहाँ E27 को मानक पेट्रोल मिश्रण के रूप में अनिवार्य किया गया है। इसे बढ़ाकर लगभग 35% किया जा रहा है। बिकने वाली नई कारों में से 80% से अधिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन हैं। ये वाहन E27, E30 या शुद्ध जलयुक्त इथेनॉल पर भी चलते हैं। जापान ने भी अपने ईंधन मिश्रण में इथेनॉल को शामिल कर लिया है। ये चरणबद्ध तरीके से E10 को लागू करके किया गया। कनाडा, थाईलैंड और कई यूरोपीय देशों सहित अपनी स्वच्छ ईंधन रणनीतियों के हिस्से के रूप में इथेनॉल मिश्रण को अपनाया है। इस तरह हरित ऊर्जा का महत्व कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण को कम करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने की क्षमता में भारत आगे निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में शीघ्र शामिल हो सकता है।

0: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धरती आकाश। आपने वार्ता सुनी हाइड्रोजन ऊर्जा का बढ़ता महत्व और E20 एथेनॉल से जुड़ी भ्रांतियां। वार्ताकार थे श्री इंदु शेखर शुक्ल, एक शिक्षक। और अब समय हुआ है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप ये कार्यक्रम।

मो फेरिया ते दो महीने से हफ्ते वजीरा ने सनाई है कि शराइ है उस वे ब्रिक्स रादर जयपुर बेपायान दसा मतने बख्शे खिताम खारजी आकाशवाणी व मुतरजी मगुंदे महमूद आलम अली दहमी नशस्त वजीरा ने सनाई है कि शराइ उस ब्रिक्स रूद पंचम्बे दर जयपुर राजस्थान तहत रियासत हिंद ब्रिक्स दर साल 2020 तो शेष बामौफियत बेपायान रसीद इन नशस्त वजीरा ने सनाए व नुमाइंदगा ने अरशद की शराइ उस ब्रिक्स रा गिर्द हम आवुरता तामुल बुजरा तहत मुशारकत ब्रिक्स दर इनकलाब सनती नवीन NIR बे औजे खुद बेरसाना इन नशस के बाशियार साजगारी बराये ताब आवरी नो आवरी हमकारी और पायदारी बरगुजार शुदे बेस्तरी राबराये किशर हाइये उद्व फराहम कर तादर मोरी दे तकवियत काबिलियत हाइये सनती मुहारे तहवुल फन्नावरी व ईजाद फुर्सत हाइये बीशतर बराये इकदामात मुश्तरक तबादुल नजर कुनन पीयूष गोयल वजीर मरकजी बागनाई यो सनाए CIM दर सुखनरानी खुद दर इन निशस्त अज नुमाइंदगान हाजिर दर जयपुर इस्तकबाल कर वो आन शहर रा शहरी तौसीफ कर के कारनहा हुनर व सनत रा बतौर एक पारचे बा आरमान हाइये एक इकतसाद सनती मुदन दर हम मियामी सद वजीर बागरगानी सनत दर चश्म अंदाजी के बेसूरत दर हाल तावुलत ताकीद कर के माबायद आरमान हाइरा बे नौ आवारी व हमकारी अमली तब्दील कुनीम उताकीद करके किश्वर हाइये ब्रेक बायद अज नुगात गोवत मुकमिल खुद बराये ईजाद सनाइये इन एताफ फजीर इस्तिफादे कुनन व खात निशान कर के पार्थ NIR बे साजमान और कार असरी इन हमकारी तब्दील शुदे वजीर मुशावी दर उमूर तजारत व सनत जितेन परसाद ताहूद हिंदरा बराये तकवियत मुशारकत हाइये सनती कवीतर बैन किशर हाइये उज्व ब्रिक्स मुजदन तायद कर्द व नक्श हमकारी नौ आवरी व एतमाद मुतकबिल रा दर ईजाद आयंदई सनती इन इताफ फजीर व फरागिर बरजस्ते नमूद वजीर सनत बाजरगानी यादावरी कर्द के सफर ब्रिक्स बा अव्वलीन इजलास दर या का तेरीन बर्ग रूस ये दर साल 2009 आगाज शुद ऊ रहबरी ब्राजील दर तूल रियासत दर साल 2020 तो पंच कदरदानी कर्द व मुजद्दन ताकीद कर्द के भारत मुताहिद बे इदामये इन मीरास अफ तरीके रुई कर दी ये तदरीजी पीजगीराने वो अमल गरायाने में बशद वो खात निशान कर के रियासत हिंद बेदुम्बाले ईजाद तदावुम वो दर एनहाल तकवियत एतमाद बीशतर बने मशागिल सरमाया गुजारान और नो आवारान व पीजपुर दे हमकारी इलमी के नतीजे मलमूसीरा बराये हमें आजाइये ब्रिक्स बे अरमोगानी अवरत वजीर सनत व बाजरगानी पीशरफ था ये काबिल तवज्जोरा के तहत रियासत हिंद ब्रिक्स अफ्तरे पार्थ NIR बेदर सामदेस बे इत्तलाए हाजरीन रसान वो हमचिनी नतीजे बर रसीहाइये गुस्तरदे अंजाम शुदे तवसुदे गुरु है मशवरतीयो गुरु हाई कारिये मौजूई दर चार हौजाए उलवियत दर शिनासाई शुदे तवसुत हिंद बाहदफ ईजाद साजो कारहा नहादी पायदार बराये तामीक हमकारी सनती बैन किशराइये उज्व ब्रिक्स राबरदस्ते कर इन मवारिद शामिल नहाई शुदन चारचूब हमकारी दर गुरु है तस्वीब शराइत मुरज SME कारी व बरनामा अमरियाती बराये गुरु कारी सनत फोतो वोल्टाइक व नहाई शुदन बरनामा अमरियाती रुजद मुबतनी बरनो आवारी तवसुत इरतफात इस्तारताब खाई बूद अलावे वरीन अहमियत सिस्टम हाइये हमलो नकल व लॉजिस्टिक के मुखावी में मुर्तबित बासनत अज जुमले बरनामे रेजी ये जीर साख्ते मुबतनी बर GIS यानी बर सिस्टम इतलाते जोग्राफियाई व बरनामे रेजी ये लॉजिस्टिक के शहरी बरजस्ते शु यकी अज नताइज असली ये निशस्त तस्वीर ये बयानिया मुश्तरक दहमी निशस्त वजीरा ने सनाइये किशोर हाइये उज्व ब्रिक्स इन बयानिये मुनअकिस कुनंदगी ताहू दे जमी किश्वर हाइये उद बराइये फरातर रफ्तन अज गुफ्तगु बे सिमत इजराइये अबजार हाइये इल्मी हमकारी के सनायरा तवियत कर दे व जिंदगी रा बहबूद मी बख्शर दर
Gardule in the chef Vuzaraye Sanae Varos Aye Hayat Aye Kishwar Hayos the Break Did Gahaye Millie Hudra Beshra Gudashtan Waiptegarate Kilidi Siasat Guzari Ulaveyatavo Dasavur Haye Hudra Darite Haye Tosay Sanati Barjaste Gardan. In Bayanyeha Barta Hude Mushtarak Baraye Tagviate Kabiliat Haye Sanati Tasri Tahbule Digitalo Fanavari Tagviade Ecosystem Haye Sanati in Etav Pazi.

혼혈 빛이 나네. हुनर पीछे गाने फिल्म में हम किसी से कम नहीं इबारतन दर्द ऋषि कपूर काजल किरण तारिक खान अमजद खान व जीनत अमान

अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा यह वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में यह हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा यह हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है,

0: तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के 30वें दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेमेंस ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi is addressing the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi. Earlier, Prime Minister Modi conferred degrees on 587 PhD scholars during the ceremony. We now go live to the Prime Minister's address.
0: वो अकेले नहीं आती है, मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है।

0: घर आंगन।
1: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला,
2: और मैं हूँ श्रुतिपुरी। स्वीकारिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: और श्रुति, सावन की हरियाली, रिमझिम फुहारों की ताजगी, तिरंगे की शान से सजा स्वतंत्रता सप्ताह और आने वाले त्योहारों की मधुराहट, यही तो है हमारे देश की खूबसूरती।
2: कहते हैं उम्मीद की किरण वही देख पाता है जो हर सुबह को एक नए अवसर की तरह अपनाता है। इसी सुविचार के साथ इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। कुछ बातें होंगी, प्रेरणादायक किस्से होंगे, मौसम की महक होगी और होगी संस्कृति की रंगत, और साथ ही साथ होंगे ऐसे सदाबहार गाने जो आपके मन को रिमझिम फुहारों जैसा सुकून देंगे।
1: तो मुस्कुराइए, क्योंकि हर मौसम बदलता है, हर कठिनाई गुजर जाती है और उम्मीद हमेशा जीवन को नई दिशा देती है। और हाँ, आज का सवाल, देश की प्रगति में हम किस तरह का योगदान दे सकते हैं, ये आपको बताना है। हमारा ईमेल आईडी है fmgoalgae@gmail.com। आपके मेल्स का रहेगा हमें इंतजार।

0: बात का दिन और देशवासियों को एक मंत्र मिला, करो या मरो।
1: मंजुला, साल था 1942। पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। भारत से अंग्रेज हर तरह का सहयोग चाहते थे, लेकिन आजादी देने का उनका कोई इरादा नहीं था। देश का धैर्य अब जवाब दे चुका था।
0: और फिर आया 8 अगस्त 1942 का ऐतिहासिक दिन। मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में हजारों लोग एकत्र हुए। हर चेहरा उम्मीद से भरा था, हर दिल में आजादी की लौ जल रही थी। स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी सड़कों पर उतर आए। किसानों ने विरोध का बिगुल फूंका, मजदूरों ने हड़ताल की। गांव गांव और शहर शहर में आजादी की आवाज गूंजने लगी।
1: और इस क्रांति में हमारी वीरांगनाएं भी किसी से पीछे नहीं रही।
0: बिल्कुल
1: महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने अगस्त क्रांति मैदान में तिरंगा फहराकर साहस का नया इतिहास रचा। उषा मेहता ने गुप्त रेडियो के माध्यम से अंग्रेजों की पाबंदियों को चुनौती देते हुए पूरे देश तक क्रांति की आवाज पहुंचाई। यही तो भारत की ताकत थी। जब एक एक नागरिक ने ये ठान लिया कि अब आजादी से कम कुछ
0: कुछ
1: भी
0: भी स्वीकार
1: स्वीकार
0: नहीं।
1: नहीं।
0: और अब भारत छोड़ो आंदोलन भले ही तुरंत स्वतंत्रता ना दिला सका दोस्तों, लेकिन उसने अंग्रेजों को ये एहसास करा दिया कि अब भारत पर राज करना संभव नहीं है। यही वो चिंगारी थी जिसने 5 वर्ष बाद स्वतंत्रता की मशाल को प्रज्वलित कर
1: और
0: दिया।
1: आज अगस्त क्रांति दिवस पर आइए उन अनगिनत ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें, जिनके त्याग की वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आजादी केवल एक अधिकार नहीं है, ये उन लाखों बलिदानों की अमूल्य विरासत है, जिसे हम अपने कर्म, अपने चरित्र और अपने राष्ट्र प्रेम में सहज कर रखते हैं।
0: बिल्कुल। और जिनकी सांसों में वतन बसता था, जिनकी धड़कनों में हिंदुस्तान था, वे चले गए इतिहास बनकर। तभी तो आज हमारा भारत महान
1: चलो
0: था।
1: ऐसे जीवन जिए कि देश को हम पर भी नाज हो, तिरंगे की हर लहराती शान में हमारे कर्मों का भी छोटा सा अंदाज हो।

0: शहीद फिल्म में अभी आप मुकेश, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर और राजेंद्र मेहता को सुन रहे थे।
1: और आज का सवाल एक बार फिर से कि आप अपने देश के प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपको मेल भेजना है हमारे ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com। और श्रुति सावन की मधुर फुहारों और आजादी के जश्न से भरे इस विशेष वीक में हम याद करेंगे उन वीरांगनाओं को, उन वॉरियर क्वींस को, जिन्होंने सिर्फ इतिहास ही नहीं रचा बल्कि भारत की आजादी की नींव अपने साहस, त्याग और बलिदान से मजबूत की। जरा सोचिए, जब 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली चिंगारी भड़की, तब क्या सिर्फ पुरुष ही रणभूमि में थे? बिल्कुल नहीं, भारत की बेटियां भी तलवार, भाला और अदम्य साहस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। तो अब हम बात करेंगे वॉरियर क्वींस की।
0: हाँ मंजुला, तो सबसे पहले बात आती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, केवल एक वाक्य नहीं बल्कि ये पूरे देश के आत्मसम्मान की आवाज बन गया था। रानी लक्ष्मीबाई के साथ एक और वीरांगना थी, झलकारी बाई। वे रानी की महिला सेना दुर्गा दल का नेतृत्व करती थी। युद्ध के दौरान उन्होंने स्वयं रानी का रूप धारण कर अंग्रेजों को भ्रमित किया ताकि लक्ष्मीबाई सुरक्षित निकल सके। उनके इस साहस ने इतिहास की दिशा ही बदल दी।
1: बिल्कुल सही। और इसी तरह रामगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी, उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। जब हार निश्चित दिखाई देने लगी तब भी आत्मसमर्पण करने की बजाय वीर गति को चुना। उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। अवंती बाई की विश्वसनीय अंगरक्षिका गिरधारी बाई ने भी विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई। इतिहास के पन्नों में उनका नाम भले ही कम लिखा गया हो, लेकिन उनका साहस किसी से कम नहीं था।
0: और मध्य प्रदेश के धार की रानी द्रौपदी बाई ने 1857 के विरोध का नेतृत्व किया और अंग्रेजों का डट कर सामना किया। और मंजुला, अब तुम्हें दक्षिण भारत की यात्रा कराते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु की रानी वेलु नाचियार अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित युद्ध छेड़ने वाली भारत की पहली रानी मानी जाती हैं।
1: क्या बात।
0: उन्होंने अपनी सेना तैयार की और अद्भुत रणनीति से अंग्रेजों को चुनौती दी।
1: और श्रुति, कर्नाटक की रानी अबक्का चौटा ने पुर्तगालियों के विरुद्ध कई बार विजय प्राप्त की। समुद्री सुरक्षा और मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने मुगल सेना के सामने अद्भुत वीरता दिखाई। उन्होंने कभी पराजय स्वीकार नहीं की और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान किया।
0: और देखो, मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर को कौन नहीं जानता। अक्सर उनके उत्कृष्ट शासन और जन कल्याण के लिए उन्हें याद किया जाता है, लेकिन वे एक निर्भीक शासक भी थी जिन्होंने अपने राज्य को मजबूत बनाया और महिलाओं के नेतृत्व का एक आदर्श स्थापित किया। और जब बात होलकर वंश की हो रही हो तो भीमा भाई होलकर का नाम भी गर्व से लिया जाता है।
1: तो दोस्तों, इतिहास केवल कुछ प्रसिद्ध नामों तक सीमित नहीं है। अनगिनत ऐसी वीरांगनाएं थी जिनके बलिदान की बदौलत आज हम खुली हवा में आजादी की सांस ले रहे हैं। तो आज जब हम स्वतंत्रता दिवस सप्ताह का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए अपने बच्चों को इन वीरांगनाओं की कहानियां सुनाएं।

0: परदेश फिल्म में अभी आप हरि हरन, कविता कृष्णमूर्ति, आदित्य नारायण और शंकर महादेवन को सुन रहे थे। और मंजुला, अब हमें हमें आदेश
1: मेल्स
0: होता
1: आ
0: होगी,
1: गए हैं
0: मेल्स लेनी होगी।
1: तो चलिए
0: तो
1: आप
0: सबसे
1: शुरू
0: पहले,
1: करिए।
0: हाँ बिल्कुल, सबसे पहले ये मेल मैं उठा रही हूँ, ये मेल है नवीन भाटिया जी की, और ये लिखते हैं कि आप अपने टैक्स टाइम पे भर के देश की सेवा कर सकते हैं, और बिल्कुल ठीक लिखा है। और जानती हूँ, एक ऐसी ही मेल एक और आई है, और ये लिखने वाले हैं अनिल मेहता। ये लिख रहे हैं, हम ईमानदार नागरिक बनकर टैक्स समय पर भरकर और सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करके देश का
1: वाओ,
0: विकास कर सकते हैं। बहुत सुंदर लिखा है। और इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छता बनाए रखें, पेड़ लगाएं और समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षित और सशक्त बनाने में मदद करें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और अफरोज शेख लिखते हैं कि जो भी काम करते हैं अपने तरफ से देशभक्ति के लिए करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं देश के बारे में, वो भी एक देशभक्ति है।
0: बिल्कुल
1: ऐना लिखती हैं कि देश की प्रगति सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। ईमानदारी से अपना काम करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वच्छता बनाए रखना, ये सब मैं करती हूँ अपने देश की प्रोग्रेस के लिए।
0: और तुम जानती हो कृष्ण कुमार क्या लिख रहे हैं भटीपुरा महोबा से। ये लिखते हैं कि हम अनुशासन में रहते हुए देश के संसाधनों का अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग करके, पानी बिजली का उपयोग आवश्यकतानुसार करके, कूड़े को कूड़ेदान में डालकर और अपने सभी बिलों का भुगतान समय पे करके, अपने देश के पर्यटन स्थलों की सैर करके, अर्थव्यवस्था में सुधार करके देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। कितना बढ़िया लिखा
1: बहुत
0: है इन्होंने।
1: बढ़िया। और साधना गोयल जी भी लिखती हैं कि देश की प्रगति में योगदान और अपने कर्तव्यों और नियमों का पालन कर सकते हैं, देश के संविधान और नियमों का पालन करें और अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पानी बिजली सबकी बचत करें।
0: और देखो, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी जी, ये शांति नगर सोनीपत से लिख रही हैं, और ये लिखती हैं कि जो भी काम करें ईमानदारी से करें, बिजली पानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उपयोग सोच समझ कर करें, साफ सफाई का और वातावरण को स्वच्छ रखने का ध्यान रखें, और आप सभी का दिवस शुभ हो। ये
1: और
0: भी लिख
1: संदीप
0: रही
1: राय जी लिखते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने काम, व्यवहार और समाज के प्रति जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाना राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। अपने प्रोफेशनल या बिजनेस में गुणवत्ता और ईमानदारी बनाए रखना। और ये मेल काफी लंबा है, लेकिन मैंने इसका सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट ले लिया।
0: और देखिए, जो हमें डॉक्टर राजेश्वर राय लिख रहे हैं कि हमें बहुत सोच समझ कर वोट करना चाहिए, अपनी डिग्निटी, अपने राइट्स के लिए हमें हमेशा खड़े रहना चाहिए, क्राइम को, करप्शन को और अनसेफ कंडीशंस का ध्यान रखना चाहिए।

0: चाहिए और हमें लॉफुल चैनल के साथ ही चलना चाहिए।
1: और सुगंधा राव भी लिखती हैं कि प्रोमोट कम्युनल हार्मनी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिया डाइवर्सिटी। बहुत ही खूबसूरत मेल इनका भी है, तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद इतने अच्छे अच्छे मेल्स भेजने के लिए।
0: और देखो आप गाना भी तो सुनवाना है ना, तो आइए सुनते हैं येसुदास की आवाज़ में ये गीत, फिल्म है सावन को आने दो।

दोस्तों कहते हैं बेटी जब विदा होती है तो उसके साथ सिर्फ एक डोली नहीं जाती, एक पूरे परिवार की परवरिश, सोच और संस्कार भी उसके साथ चलते हैं। हम अक्सर अपनी बेटियों के लिए सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस जोड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन

0: जरा सोचिए, अगर सबसे बड़ी विरासत का नाम पूछा जाए तो क्या गहने होंगे या फिर वे संस्कार जो हर मोड़ पर उसका साथ देंगे।
1: क्योंकि मंजुला, सोने के गहने तो कभी भी चोरी हो सकते हैं, टूट सकते हैं या समय के साथ पुराने पड़ सकते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार जीवन भर साथ चलते हैं और पीढ़ियों तक आगे बढ़ते हैं। बेटी का विरासत में केवल आभूषण नहीं, उसको आत्मसम्मान दीजिए,
0: बिल्कुल
1: उसे ये सिखाइए कि किसी भी रिश्ते में अपनी गरिमा के साथ कभी समझौता ना करे।
0: उसे शिक्षा दीजिए ताकि वो अपने फैसले स्वयं ले सके, उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनने की प्रेरणा दीजिए क्योंकि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। उसे ये भी सिखाइए कि दूसरों का सम्मान करे लेकिन अपनी आवाज दबाकर नहीं, ना कहना भी एक संस्कार है और अन्याय के सामने खड़ा होना भी।
1: बेटी को करुणा दीजिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसकी अच्छाई का लोग लाभ उठाने लगें। उसे
0: बिल्कुल
1: विनम्र बनाइए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अपना आत्मसम्मान खो बैठे, अपना आत्मविश्वास खो बैठे। उसे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने परिवार की जड़ों से जोड़िए, क्योंकि जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं वही जीवन में सबसे बड़े तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है। याद रखिए, माँ बाप की सबसे बड़ी पहचान बेटियों के गहनों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। जब लोग कहते हैं बेटी को बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, तो समझ लीजिए यही सबसे अनमोल विरासत है ना
0: बिल्कुल सही। और आज
1: मंजुला?
0: समय बदल रहा है, बेटियां आसमान छू रही हैं, इतिहास रच रही हैं, देश का नेतृत्व कर रही हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षित भविष्य नहीं, सशक्त व्यक्तित्व भी दीजिए क्योंकि विरासत केवल वो नहीं होता जो तिजोरी में रखा जाए, विरासत वो भी होता है जो चरित्र में दिखाई दे, व्यवहार में झलके और पूरी दुनिया में आपकी परवरिश की पहचान बन जाए। सोने चांदी के गहने समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, संस्कारों के गहने पीढ़ियों तक परिवार का नाम रोशन करते हैं।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी रिवाज़।
1: और श्रुति, जब एक स्त्री, एक महिला आगे बढ़ती है तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य भी बदल जाता है। और यही सोच आज के भारत को विकसित भारत बनने की दिशा में सबसे बड़ी शक्ति दे रही है।
0: देखो मंजुला, एक समय था जब महिलाओं की पहचान केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित समझी जाती थी, लेकिन आज वही महिलाएं अंतरिक्ष की ऊंचाइयां छू रही हैं, देश की रक्षा कर रही हैं, सीमा पार विज्ञान में नए कीर्तिमान बना रही हैं, व्यवसाय चला रही हैं,
1: बिल्कुल
0: गांवों में परिवर्तन ला रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दे रही हैं। सोचिए, क्या कोई ऐसा क्षेत्र बचा है जहां
1: बिल्कुल
0: भारतीय
1: नहीं,
0: महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय न दिया हो?
1: बिल्कुल। चाहे कृषि हो या एआई, शिक्षा हो या उद्यमिता, खेल हो या राजनीति, हर क्षेत्र में नारी शक्ति भारत के विकास की नई इबारत लिख रही है। आज लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है। छोटे छोटे गांव की बेटियां अपने हुनर से परिवार ही नहीं, पूरे समाज की तस्वीर बदल रही हैं। महिला उद्यमी स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिला रही हैं। महिला किसान आधुनिक खेती अपना रही
0: हाँ,
1: हैं।
0: देखो, महिला वैज्ञानिक नई खोजों से देश का भविष्य सुरक्षित बना रही हैं और हमारी बेटियां सेना, न्यायपालिका, प्रशासन और तकनीक जैसे क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। लेकिन केवल उपलब्धियां ही पर्याप्त नहीं है मंजुला, विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर बेटी को समान अवसर मिलेगा।
1: बिल्कुल, जब शिक्षा हर लड़की का अधिकार बनेगी, जब सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन केवल शब्द नहीं बल्कि हर महिला की वास्तविक पहचान होंगे।
0: देखो, एक शिक्षित महिला केवल स्वयं शिक्षित नहीं होती बल्कि पूरे परिवार को शिक्षित करती है। एक आत्मनिर्भर महिला केवल अपनी आय नहीं बढ़ाती बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है। और एक आत्मविश्वासी महिला केवल अपने सपने पूरे नहीं करती बल्कि समाज की सोच भी बदल के रख देती
1: क्या बात
0: है।
1: है। तो आज आवश्यकता केवल महिलाओं को अवसर देने की नहीं बल्कि उनकी क्षमता पर विश्वास करने की है। बेटियों को ये मत कहिए कि तुम ये नहीं कर सकती, बल्कि उनसे कहिए तुम्हारे सपनों की कोई सीमा नहीं, क्योंकि विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव वही होगी जहां बेटा और बेटी दोनों को समान अवसर, समान सम्मान और समान विश्वास मिले।

0: अभी हम सुन रहे थे कविता सेठ को, फिल्म थी नीरजा।
1: और मंजुला, कुछ मेल हमारे पास आई हैं जिन्हें हमने लेना है। ये मेल हमारे पास आई है गौरी शंकर जी की, नांगलोई से लिखते हैं कि आप दोनों बेटियों को राम राम। और ये लिख रहे हैं, जिंदगी में कोई गलत काम ना करें। हमारे देश में बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने कामों के साथ लोगों में प्रेरणा दी है और उनको देखकर शिक्षा भी मिलती है। तो हम उनकी शिक्षा पर अमल करें, किसी को दुख ना दें और हो सके तो अच्छा काम करें।
0: और पीहू पुंडीर जी लिखती हैं देहरादून से कि मेरा मानना है कि देश का विकास केवल बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी भर नहीं है, बल्कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी और निष्ठा से काम करके उसमें योगदान दे सकते हैं।
1: और एक मेल आया है योगी दीक्षित जी का पीतमपुरा से, ये लिखते हैं कि देश के सभी नागरिक अपने दायित्व का पालन पूर्ण प्रामाणिकता के साथ और ईमानदारी से करें, यही देश की सबसे बड़ी सेवा है, यही देशभक्ति है।
0: बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर से रुख करते हैं सावन की तरफ। श्रुति, सावन का महीना, हरियाली झूले गीत और हाथों पर रची गहरी मेहंदी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मेहंदी केवल सुंदरता बढ़ाने का साधन नहीं है बल्कि आयुर्वेद की एक अनमोल देन भी है। तो आइए जानते हैं कि क्यों सदियों से भारतीय परंपरा में मेहंदी को इतना महत्वपूर्ण माना गया है।
1: बिल्कुल, देखो सावन आते ही हर घर में महिलाओं के हाथों में मेहंदी रच जाती है। तुमने मेरी हरी चूड़ियां देखी है और मेहंदी देखी है?
0: बहुत सुंदर, बहुत
1: सुंदर। मान्यता है कि जितनी गहरी मेहंदी रचती है ना, उतना ही प्रेम और सौभाग्य मिलता है। लेकिन इसके पीछे केवल मान्यता नहीं, विज्ञान भी छिपा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आयुर्वेद के अनुसार मेहंदी की तासीर शीतल होती है। बरसात के मौसम में जब उमस और गर्मी के कारण शरीर में पित्त बढ़ जाता है, तब मेहंदी शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडक पहुंचाती है। हथेलियों और पैरों के तलवों पर इसे लगाने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है और मन को भी बड़ी शांति मिलती है।
1: और यही कारण है कि प्राचीन भारत में विवाह, तीज, करवा चौथ और सावन जैसे अवसरों पर मेहंदी लगाने की परंपरा विकसित हुई। ये केवल श्रृंगार नहीं है बल्कि शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का एक प्राकृतिक उपाय भी है।
0: इतना ही नहीं, मेहंदी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं। बालों में मेहंदी लगाने से सिर को ठंडक मिलती है, रूसी कम होता है और बालों को प्राकृतिक चमक भी बनी रहती
1: लेकिन
0: है।
1: लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखें, आजकल बाजार में मिलने वाली इंस्टेंट या जो ब्लैक मेहंदी होती है ना, इनमें कई रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं जो त्वचा पर एलर्जी, जलन और दाने पैदा कर देते हैं। इसलिए हमेशा प्राकृतिक मेहंदी का ही चुनाव करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और भारतीय परंपराओं की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जहां हर रीति रिवाज के पीछे जीवन को बेहतर बनाने का कोई न कोई वैज्ञानिक और स्वास्थ्य वर्धक कारण छिपा होता है, मेहंदी भी उसी ज्ञान की एक सुंदर मिसाल है जो हाथों की शोभा बढ़ाने के साथ साथ शरीर और मन को भी सुकून देती
1: तो
0: है।
1: तो इस सावन जब आप अपने हाथ पर मेहंदी रचाएं तो याद रखिए, ये केवल रंग नहीं बल्कि हमारी आयुर्वेदिक विरासत का एक स्पर्श है।

0: मेहंदी रंग लाएगी। इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं
1: और इसी गीत के साथ आज की इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। सावन का आनंद लीजिए, लेकिन अपना ख्याल भी रखिए। फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारी और मनोरंजन के साथ। तो दीजिए मंजुला और
0: श्रुति बुरी को इजाजत।
1: नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालय

0: की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों के संघ AAERI के साथ साझेदारी में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म AAERI सत्यापन का शुभारंभ किया। मंत्रालय ने बताया कि डिजी लॉकर से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक, पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का सुरक्षित और डिजिटल तरीके से सत्यापन कर सकेंगे। झारखंड सरकार आज JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से बातचीत की। ये बैठक रांची के गेस्ट हाउस में हुई। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले दो सप्ताह से रांची में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद ये बातचीत हुई है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल शाम पहली औपचारिक बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए IED, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के खिलाफ विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलुवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को अपना पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that students graduating today are not merely completing their education but are beginning a new chapter in their lives. He was addressing the 57th convocation ceremony of IIT Delhi today. Mr. Modi urged the graduating students to live the moment to the fullest as they would cherish and miss the memories of their campus life in the years to come. The Prime Minister congratulated the graduating students and wished them success as they embark on a new journey.
2: आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं।
1: The Jharkhand government today held talks with protesting students and job aspirants over alleged irregularities in examinations conducted by the JPSC and JSSC. The meeting began at the state guest house in Ranchi. An 8-member delegation representing students and job aspirants is holding discussions with government officials. The talks come after protests in the state capital over the past 2 weeks against the alleged irregularities in the exams.

1962 के भारतीय भारत और चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म का निर्देशन किया था दूरदर्शी फिल्मकार चेतन आनंद ने। संगीत दिया था गजलों और दर्द भरी धुनों के बादशाह मदन मोहन ने, और गीत लिखे थे उर्दू के प्रख्यात शायर कैफी आजमी ने। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई बलराज साहनी, धर्मेंद्र, विजय आनंद, प्रिय राजवंश, जय

सुधीर, संजय खान और अन्य कई कलाकारों ने। कहा जाता है कि 1962 के युद्ध के बाद देश का मनोबल टूट सा गया था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारतीय सैनिकों के साहस को बड़े पर्दे पर उतारने की बहुत ज़रूरत महसूस की। चेतन आनंद को सेना का पूरा सहयोग मिला और जो वास्तविक लोकेशन पर जाकर उन्होंने फिल्मांकन किया, जिससे फिल्म का हर दृश्य बेहद वास्तविक प्रतीत होता है। यही कारण है कि आज भी हकीकत मूवी को भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ युद्ध फिल्मों में गिना जाता है। तो बात करते रहेंगे फिल्म हकीकत की। चलिए सुन लेते हैं इस फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, आपने अभी सुना अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। श्रोताओं, ये केवल एक गीत नहीं है बल्कि उन अमर वीरों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। दोस्तों, हकीकत भारतीय सिनेमा की उन विरल फिल्मों में से एक है जिसने युद्ध को केवल गोलियों और बारूद के शोर के रूप में नहीं बल्कि सैनिकों की भावनाओं, उनके सपनों, उनके परिवारों, उनके प्रेम और उनके अदम्य साहस के साथ प्रस्तुत किया। यही कारण है कि 6 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ये फिल्म उतनी ही प्रभावशाली और प्रासंगिक महसूस होती है। निर्देशक चेतन आनंद ने जिस संवेदनशीलता के साथ 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि को पर्दे पर उकेरा, वो भारतीय फिल्म इतिहास में एक मिसाल बन गई। मदन मोहन का कालजयी संगीत और कैफी आजमी के भावपूर्ण गीतों ने इस फिल्म को अमरता प्रदान की। बलराज साहनी, धर्मेंद्र, प्रिय राजवंश, विजय आनंद और सभी कलाकारों के सशक्त अभिनय ने इस कथा को जीवंत बना दिया। इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि सीमा पर खड़ा सैनिक केवल एक वर्दीधारी जवान नहीं होता, बल्कि वो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति और किसी का मित्र भी होता है। वह अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर राष्ट्र की रक्षा का दायित्व निभाता है। शायद इसी भावना को हकीकत ने अत्यंत मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया। तो दोस्तों, हम बात करते रहेंगे फिल्म हकीकत की। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, अभी आपने सुना हकीकत फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। लता जी की आवाज़ में ज़रा सी आहट होती है। ये गीत फिल्म का एक अत्यंत मधुर और रोमांटिक गीत है। युद्ध की कठोर परिस्थितियों के बीच भी प्रेम की कोमल भावनाएं कैसे जीवित रहती हैं, इसका सुंदर चित्रण इस गीत में देखने को मिलता है। मदन मोहन की आवाज़ और लता जी की मदन मोहन जी की मधुर धुन और लता जी की आवाज़ इस गीत को अविस्मरणीय बना देते हैं। जिस तरह ये फिल्म भूलने लायक नहीं है, वैसे ही इसका गीत भी उतना ही और संगीत भी उतना ही अमर है। तो इसके साथ चलिए आपको एक और गीत सुनवाते हैं। मदन मोहन जी की ही धुन और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का।

दोस्तों आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से और आज की फिल्म है हकीकत। तो श्रोताओं, फिल्म की शुरुआत होती है लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों से, जहां भारतीय सेना की एक टुकड़ी अपनी सीमाओं की रक्षा में तैनात है। मेजर रंजीत सिंह के नेतृत्व में सैनिक कठिन मौसम और सीमित संसाधनों के बावजूद पूरे उत्साह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। इसी दौरान दर्शकों की मुलाकात होती है कैप्टन बहादुर सिंह से, जिनकी भूमिका निभाई है धर्मेंद्र ने। बहादुर सिंह एक निर्भीक सैनिक हैं, लेकिन उनके भीतर एक संवेदनशील इंसान भी बसता है। लद्दाख के एक गांव में उनकी मुलाकात होती है एक सरल और निश्चल युवती अंगमू से। दोनों के बीच धीरे धीरे स्नेह पनपता है, लेकिन सीमाओं पर बढ़ता तनाव इस प्रेम कहानी पर भी अपनी छाया डालने लगता है। तो दोस्तों अब सुनिए एक ऐसा गीत जो प्रेम की मासूम प्रतीक्षा और मन की हलचल को बेहद खूबसूरती से व्यक्त करता है। मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गीत आज भी उतना ही ताज़ा लगता है जितना 6 दशक पहले था।

दोस्तों, आपको इस फिल्म का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर बताएं तो फिल्म के संगीतकार मदन मोहन स्वयं भारतीय सेना में रह चुके थे। शायद यही कारण था कि सैनिकों के मन की भावनाओं को उन्होंने अपनी धुनों में इतनी गहराई से उतारा। और वहीं कैफी आजमी ने भी गीत लिखते समय केवल प्रेम नहीं बल्कि कर्तव्य, विरह और राष्ट्र प्रेम को शब्द दिए। यही वजह है कि हकीकत का संगीत समय की कसौटी पर आज भी उतना ही प्रभावशाली है। यहाँ सीमा पर हालात बिगड़ते जा रहे थे, सैनिकों को यह एहसास होने लगता है कि दुश्मन किसी भी समय हमला कर सकता है। हर सैनिक अपने परिवार, अपने सपनों और अपने भविष्य को पीछे छोड़कर केवल एक ही उद्देश्य के साथ डटा है, वो है देश की रक्षा। ऐसे ही भावों को शब्द देता है अगला गीत। ये गीत साहिराना अंदाज नहीं बल्कि एक सैनिक के टूटते हुए दिल की सच्ची आवाज है। मोहम्मद रफी की दर्द भरी गायकी और कैफी आजमी के मार्मिक शब्द इसे अमर बना देते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, इन गीतों के माध्यम से और फिल्म की कहानी के माध्यम से हमने केवल एक फिल्म के संगीत का आनंद ही नहीं लिया, बल्कि उस दौर की उस संवेदनाओं, संघर्षों और राष्ट्र प्रेम को भी महसूस किया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से को हम यहीं विराम देंगे और आपको छोड़ जाएंगे इस गीत के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त सुनिधि को दीजिए इजाजत। नमस्कार, और सुनते रहिए इसका गीत।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज IIT दिल्ली के 57वें कन्वोकेशन समारोह नूं संबोधन किया। उन्होंने विद्यार्थियों नूं अपने फैसलों में राष्ट्रीय हित नूं तरजीह देने की अपील की। झारखंड सरकार ने आज भर्ती प्रीख्यावां विच कथित बेनियमियां खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों नाल गलबात की है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सवेरे एक बस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई तो 11 होर जख्मी हो गए हैं। भारत के आशीष यादव ने अमरीका के यूजीन विश्व अथलैटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप मर्दा के जैवलिन थ्रो मुकाबले चांदी का तमगा जितया है। भारत की अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूरनामेंट के फाइनल च पहुंच गई है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलॉजी IIT दिल्ली के विद्यार्थियों को अपील की है कि वह अपने फैसलों में राष्ट्रीय हित को तरजीह दें और अपने आप तो पुछन कि उनके काम देश को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। श्री मोदी ने यह टिप्पणियां IIT दिल्ली की 57वीं कन्वोकेशन संबोधन करदे की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर पीढ़ी अपने समय दी विलक्षण चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेवारी निभाती है। उन्होंने कहा कि डिग्रियां हासिल कर रहे विद्यार्थियों वालों किए जाने वाले काम विकसित भारत के राह महत्वपूर्ण प्रभाव पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नवे उभर रहे खेतर ने जो नौजवानों लिए नवे मौके प्रदान कर रहे हैं। सैमी कंडक्टर पुलाड़ और ड्रोन वर्गे खेतर की मिसाल देंदे उन्होंने कहा कि भारत सारे खेतर में आत्म निर्भर बनने वाल काम कर रहा है।
1: सैमी कंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथ।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ। मैं हबीबुर रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे खुद किफालत वाले शोबे सामने आ रहे हैं जो विकसित भारत की एक मजबूत बुनियाद बनेंगे। उन्होंने IIT के तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में कौमी मफाद को मरकजी हैसियत दें। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों पर एहतजाज करने वाले तलबा के साथ दूसरे दौर की गुफ्तगू की है। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के हादसे में 7 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज राजस्थान और उड़ीसा में तेज से बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। खराब मौसम की वजह से जम्मू से बालतल के लिए अमरनाथ जी की यात्रा मुअत्तल कर दी गई है और अमरीका में 20 साल तक की उम्र की आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में आशीष यादव ने चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के तलबा पर जोर दिया है कि वो अपने फैसलों में मुल्क के मफाद को मरकजी हैसियत दें। उन्होंने तलबा से कहा है कि वो खुद से ये पूछें कि उनकी सरगर्मियों से मुल्क को किस तरह फायदा पहुंच सकता है और किस तरह जरूरियात पूरी की जा सकती हैं। जनाब मोदी ने IIT दिल्ली के 97वें जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हर नस्ल को अपने ज़माने में मखसूस चैलेंजों का सामना करना पड़ता है और वो अपनी कौमी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं।
1: आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं।
0: जनाब मोदी ने कहा कि

0: अरे से ग्रेजुएट करने वाले तलबा ने जो काम किए हैं 30-35 बरसों में, उनके असरात विकसित भारत के सफर पर नुमाया तौर पर असरअंदाज होंगे। वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क में नए शोबे उभर कर सामने आ रहे हैं जहां नौजवानों को नित नए मौके मयसर होंगे। उन्होंने इस सिलसिले में सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन्स का जिक्र किया और ये भी कहा कि भारत इन सभी शोबों में खुद किफालत के हुसूल के लिए काम कर रहा है।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: जनाब मोदी ने तलबा से कहा है कि उन्हें तनख्वाह, मुलाजमत या शोबे की बुनियाद पर जहां वो काम करते हैं दूसरों से मुआवजना करने से गुरेज करना चाहिए। वजीर आजम ने कहा है कि जिंदगी दर्जाबंदी का नाम नहीं है और न ही इसका मकसद दूसरों से मुकाबला करना है, बल्कि ये मुकाबला खुद ही से करना है। जनाब मोदी ने तलबा को मशवरा दिया कि वो उन्हें हर दिन गुज़िश्ता कल से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। झारखंड हुकूमत ने जेपीएससी और जेएसएससी की जानिब से मुनाकिद कराए गए इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों पर एहतजाज कर रहे तलबा और नौकरियों के ख्वाहिशमंद अफराद से आज बातचीत की। यह मुलाकात रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में शुरू हुई। तलबा और नौकरियों के ख्वाहिशमंद अफराद की नुमाइंदगी करने वाला 8 रुकनी वफद सरकारी अफसरान से बातचीत कर रहा है। इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के मामले पर रियासती राजधानी में गुज़िश्ता हफ्तों से जारी मुजाहरों के बाद ये बातचीत हो रही है। तलबा के वफद और हुकूमत के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात कल शाम मुनाकिद हुई थी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के साथ हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा चुराह असेंबली हलके में तीसा पुलिस स्टेशन हुदूद में चालुंज मोड़ के करीब मीरागढ़ में हुआ। हलाक होने वाले 7 अफराद की शनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इमरजेंसी कार्रवाइयों से मुतालिक रियासती सेंटर के मुताबिक यह हादसा आज सुबह 7:15 बजे के करीब पेश आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये प्राइवेट बस बीरागढ़ से चंबा जा रही थी जब ये चालुंज मोड़ के करीब सड़क से नीचे उतर गई और नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने गमजदा कुंबों के साथ ताजियत का इजहार किया। वजीर आजम ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने सरहद पार की दहशतगर्दी से मुतालिक साजिश में मुलविस 2 मुलजमान के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। ये दोनों मुलजिम भारत पाकिस्तान सरहद से आईईडी, आतिशी हथियार और हेरोइन मुबैना तौर पर स्मगलिंग करने में मुलविस थे। हथियारों वगैरह का पंजाब और नई दिल्ली में मनसूबाबंद हमलों में इस्तेमाल किया जाना था। ये फर्द जुर्म कल मोहाली में कौमी जांच एजेंसी एनआईए की खसूसी अदालत में दायर की गई। मुलजमान के नाम शुभम कुमार और जसवीर चौधरी बताए गए हैं। शुभम कुमार गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि जसवीर फरार बताया जाता है। भारतीय महकमे मौसमियात ने राजस्थान और उड़ीसा में आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक लक्षद्वीप, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और गरज चमक का इम्कान जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू से बालतल के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा आज के दिन मुअत्तल कर दी गई है। खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कई मकामात पर सड़कों की हालत की वजह से यात्रा मुअत्तल की गई है। ताहम बालतल से पवित्र गुफा की जानिब यात्रा जारी रहेगी। सुबह से 1200 से ज्यादा अकीदतमंद दर्शन कर चुके हैं। दर्शन कर चुके यात्रियों को बालतल से जम्मू जाने की इजाजत दी गई है। कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मैट्रिक टन खेप पहली मरतबा बिहार से ऑस्ट्रेलिया बरामद की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि ये खेप सीधे दरभंगा के किसानों से खरीदी गई जिससे उन किसानों को बाजार की कीमत के मुकाबले 18% ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ। भारतीय रेलवेज की जानिब से केरलम के ओनम त्योहार के लिए ऐलान करदा खसूसी ट्रेन खिदमात की तादाद बढ़कर 112 हो गई है। खसूसी खिदमात ज्यादातर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए चलाई जा रही हैं। भारत ने अमरीका के यूजेन में जारी एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे रोज आशीष यादव के मर्दों के जेवेलियन थ्रो में चांदी का तमगा जीतने के साथ अपने तमगों का खाता खोला। 19 साल खिलाड़ी ने अपनी तीसरी कोशिश में 74.09 मीटर की अपनी बेहतरीन थ्रो की और दूसरे मकाम पर रहे। आशीष वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने 2016 में पोलैंड में मुनाकिदा चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता था, जहां उन्होंने 86.48 मीटर के थ्रो के साथ अब तक कायम आलमी जूनियर रिकॉर्ड बनाया था। जनूबी अफ्रीका के जॉन हैंडिक हेमेंस ने 80.50 मीटर की थ्रो के साथ सोने का तमगा जीता। जनूबी कोरिया के आसान में जारी कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चहलिहर खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन भारतीय खिलाड़ी रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21 और 21-13 से शिकस्त दी। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए आला दर्जाबंदी की हामिल आलमी नंबर 22 जापान की हीना अकेची को 3 गेम्स के सनसनीखेज मुकाबले में हरा दिया था। खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में कल अश्मिता का मुकाबला चीन की क्यू हान से होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे खुद कफालत वाले शोबे सामने आ रहे हैं जो विकसित भारत की एक मजबूत बुनियाद बनेंगे। उन्होंने IIT के तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में कौमी मफाद को मरकजी हैसियत दें। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों पर एहतजाज करने वाले तलबा के साथ दूसरे दौर की गुफ्तगू की है। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के हादसे में 7 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज राजस्थान और उड़ीसा में तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। खराब मौसम की वजह से जम्मू से बालतल के लिए अमरनाथ जी की यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interest at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations. 7 people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Orissa today. Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal suspended due to bad weather conditions. And in men's javelin throw, Ashish Yadav wins silver at World Athletics Under 20 Championships in United States. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today urged the students of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. Mr. Modi made these remarks while addressing the 57th convocation of IIT Delhi. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
1: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein atmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. यही विकसित भारत की मजबूत नींव का।

0: in the background. Trump said the facility would strengthen national security in Washington, D.C. and protect future presidents. His comments come amid a legal dispute over the construction project. A federal appeals court has blocked work on the proposed White House ballroom. Trump has described the court ruling as a national security threat and a national disgrace, and said his administration would challenge the decision before the U.S. Supreme Court. At least three people, including a child, have been killed in overnight Russian missile strikes near the Ukrainian capital Kyiv. The attacks hit areas east of Kyiv in the early hours today. Regional Military Administration Chief Temur Kachenko said three people were also injured in the ballistic missile strikes. India opened its medal account on the third day of the World Athletics Under-20 Championships in Eugene, USA, with Ashish Yadav winning silver in the men's javelin throw. The 19-year-old produced his best effort of 74.09 meters in his third attempt to finish second. Ashish became only the second Indian after Neeraj Chopra to win a silver in the event at the World Athletics Under-20 Championships. South Africa's Jan Hendrik Heymans won the gold with a throw of 80.5 meters. Indian shuttler Ashmita Shaliha has reached the women's singles final of the Korea Masters Super 300 Badminton Tournament in Asan, South Korea. Ashmita defeated fellow Indian Rakshita Ramraj in the semi-final today. Ashmita will face China's Qiu Han in the women's singles final tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interests at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and GSSE examinations. Seven people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Odisha today. Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal suspended due to bad weather conditions. And in men's javelin throw, Ashish Yadav wins silver at World Athletics Under-20 Championships in United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आप सब जानते हैं हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का

0: हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
0: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कम्प्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
4: मेरा जो

0: कोऑपरेटिव का समझ है बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
3: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति M. पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट फिल्मी कार्यक्रम एक ही कलाकार, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी सुनिधि गुप्ता। और आज हम याद करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार को जिसकी मौजूदगी पर्दे पर आते ही दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती है। उनकी भारी आवाज, धीमी गति से संवाद बोलने का अपना अलग अंदाज, सहज हास्य और बेहतरीन अभिनय, इन सब ने उन्हें हिंदी फिल्मों के सबसे प्रिय चरित्र अभिनेताओं में शामिल कर दिया। आज का यह विशेष अंक समर्पित है अभिनेता असित सेन को। असित सेन ने लगभग 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कभी बड़ा नायक बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन जिस भी भूमिका में नजर आए उसे यादगार बना दिया। वे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने बिना किसी बनावटी अभिनय के केवल अपनी सहजता से दर्शकों का दिल जीत लिया। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे उनके जीवन की रोचक बातें, उनके अभिनय सफर के कुछ अनसुने किस्से, और सुनेंगे वे सदाबहार गीत जो उन पर फिल्माए गए या जिन दृश्यों में उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। तो आइए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ।

பாஜத் தாபத நாச்சத் கிருஷ்ண கண்ணையா கோபிந்த கேசங்க ராசத சாவத் நாச்சு சாவத் தாத்தா தையா தை தையா தை தையா खेलत गेंद गिरी यमुना बिच नित्य कियो तहा नागन थैया कोप के इंद्र चढ़ो बिज ऊपर गोपी करत सब हा हा दैया जाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देन चलैया जगे मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा

na na na de de tom na na na de de tom na na na de de tom na na na de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de tom de de. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज के हमारे कलाकार हैं असित सेन। असित सेन का जन्म तत्कालीन अविभाजित बंगाल में हुआ। रंगमंच से जुड़ाव ने उन्हें अभिनय की बारीकियां सिखाई। बाद में उन्होंने बांग्ला फिल्मों में काम भी किया और धीरे धीरे हिंदी फिल्मों में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। अक्सर लोग अभिनेता असित सेन और निर्देशक असित सेन को एक ही व्यक्ति समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग व्यक्तित्व थे। अभिनेता असित सेन अपनी विशिष्ट आवाज और हास्य अभिनय के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे बिना किसी अतिशयोक्ति के दर्शकों को हंसा देते थे। उनके चेहरे के भाव, संवाद, बोलने की लय और ठहराव अपने आप में अभिनय का पाठ थे।

दोस्तों 70 का दशक हिंदी सिनेमा में चरित्र अभिनेताओं का स्वर्णिम दौर माना जाता है। उस समय यदि किसी फिल्म में ओम प्रकाश, डेविड, आईएस जौहर, केस्टो मुखर्जी, जॉनी वॉकर और असित सेन जैसे कलाकार हों तो मनोरंजन अपने आप सुनिश्चित हो जाता था। जी हाँ, असित सेन की सबसे बड़ी खूबी थी कि वे छोटे से छोटे दृश्य को भी यादगार बना देते थे। उनका संवाद, बोलने का धीमा अंदाज बाद में अनेक हास्य कलाकारों ने अपनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सहजता किसी के लिए दोहराना आसान नहीं था।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आसित सेन की। ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशकों ने आसित सेन की प्रतिभा को बहुत अच्छी तरह पहचाना। बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके, गोलमाल जैसी फिल्मों में उन्होंने छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदार निभाए। उनका अभिनय कभी भी कहानी पर हावी नहीं होता था, बल्कि उसे और विश्वसनीय बना देता था। इसी कारण दर्शकों को लगता था कि वे कोई अभिनेता नहीं, बल्कि अपने आसपास का ही कोई परिचित व्यक्ति हैं।

दोस्तों, असित सेन के अभिनय का एक और महत्वपूर्ण पहलू था समय की सटीक समझ। कॉमेडी केवल अच्छे संवादों से नहीं बनती, बल्कि सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने से बनती है। असित सेन इस कला में पारंगत थे। वे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के दृश्य को प्रभावशाली बना देते थे। आज भी उनकी फिल्में देखी जाएं तो उनका अभिनय बिल्कुल ताज़ा और स्वाभाविक सा लगता है।

मिथो आसित सेन उन कलाकारों में से थे जो शूटिंग के दौरान भी अपने सहयोगियों के बीच अत्यंत विनम्र और मिलनसार माने जाते थे। तो आज हमने बात की कलाकार आसित सेन की, कार्यक्रम एक ही कलाकार में। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त सुनिधि को दीजिए इजाज़त। नमस्कार और सुनते रहिए ये गीत।

0: नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो हमारी ब्रजभूमि इतनी मोहिनी है ना, कन्हैया को जो रूप है वो ऐसा है कि काऊ के हृदय में अगर बस जाए ना तो निकारे ना निकरे।
1: जी चंपा जी, देखो पद्माकर कवि ने जब वर्णन करे तो उनने कही कि एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आखिन सो कढ़गो अबीर पे अहीर को कढ़े नहीं। तो ये जो हमारा कन्हैया है ना, एक बार जिन्हें नेत्रन में समा जाए तो
0: जी
1: उनमें तो निकरवे की तो बात ही कहाँ रह जाए फिर।
0: देखो, सावन को महीना चल रो है तो हम देखें कि चारों ओर बम बम बोले और हर हर महादेव को जो उद्घोष है, उनकी जो गूंज है वो सुनाई पड़ रही है। सावन के महीना में भले ही ब्रज में झूला हिंडोरान की बहार है, आप देखो कि हमारे ब्रज भूमि के काऊ कोने में चले जाओ, शिव वहां पे अनेक रूपन में विराजित हैं। यानी कि आपकी बात पे ही हम आमे कि या कृष्ण के मनमोहन रूप पे ही आकर्षित होके सियात भोले बाबा ब्रज की ओर चले आए होंगे।
1: आप जाकी बात कह रहे हैं, देखो तो सही कि कन्हैया को जन्म भयो और भोले बाबा दर्शन करवे आए, और यशोदा मैया ने दर्शन नाए कराए तो भोले बाबा नंदगाम के पास विराजित है गे, जाकू आज हूँ आशीश्वर के रूप में पूजो जाए।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, जोगी को वेश धर के भोलेनाथ स्वयं यशोदा मैया के द्वार पे आए। ब्रज धरा में शिव चार कोतवालन के रूप में विराजमान हैं और आप देखो ना, भारी तादाद में कांवड़िया कांवड़ लेके आ रहे हैं और इन शिवालय इन पे जलाभिषेक कर रहे हैं, जल यात्रा आ रही है। अरे नृत्य गोपाल जी, आप नंदगांव की बात कर रहे हो, आप वृंदावन की ओर चलो। वृंदावन में बंसीवट पे जो गोपेश्वर महादेव हैं, ये उनकी ब्रजवास को ही तो प्रतीक है। आप देखो के संज्ञा को हर रोज वहां शिव को श्रृंगार गोपी के रूप में होवे है, कितनी विलक्षण बात है।
1: कि यहाँ को जो श्रृंगार है ना
0: जी
1: वह बड़ो अद्भुत है। हार हमेल साड़ी फरिया अनेक अनेक आभूषण ते गोपेश्वर को गोपी स्वरूप में प्रतिदिन श्रृंगार करो जाए।
0: वृंदावन में तो ऐसी लोक मान्यता है कि बिना गोपी

0: ईश्वरे मिले ब्रज दर्शन पूरो नाय होवे।
1: बिना गोपेश्वर के महाराज ही पूरो नाय हो चंपा जी।
0: हाँ पूरे विश्व की भी बात करें ना तो केवल वृंदावन में गोपेश्वर महादेव गोपी रूप यानी कि स्त्री रूप में ना विराजित हैं।
1: देखो चंपा जी, ब्रज में कहो जाए कि नरते नार बने तब रास रचे।
0: और हित वृंदावन दास जी ने तो यहाँ कही है कि नाम विदित गोपेश्वर जिनको ते वृंदा कानन कुतवार यानी कि वो वृंदावन के कोतवाल हैं।
1: कि सूरदास जी ने वर्णन करो कि जब भोले बाबा नंदगांव में आए ना, जा वेश में आए, वाको बड़ो सुंदर वर्णन करो है। नंद द्वारे एक जोगी आयो, श्रृंगी नाद बजायो, शीश जटा शशि बदन सोहाये, अरुण नयन छवि छायो, रोबत खिजत कृष्ण सामरो, रहत नहीं हुलरायो, लियो उठाए गोद नंद रानी, द्वारे जाए दिखायो, अलख अलख कर लियो गोद में, चरण चूम उड़ लायो, श्रवण लाग कछु मंत्र सुनायो, हसी बालक किलकायो, चिरजीवो सुत मेहर तिहारो, हो जोगी सुख पायो, सूरदास रमि बल्यो रावरो, शंकर नाम बतायो।

0: प्यारे भैया बहनाओ, अभी आप ये शिव भक्ति रचना सुन रहे हते। हाँ प्यारे भैया बहनाओ, आप भी आ बात को जाने और हम भी जाने, आपके भी आसपास कहूँ ना कहूँ आम नीम शीशम के जो पेड़ हैं, अमुआ की जो डार हैं, उन पे झूला पड़ गए होंगे और हमारी जो छोटी छोटी बालिकाएं वे सब झूला झूल रही होंगी। और यूं कह रहे हैं कि 8-10 दिन तो सावन के बीत चुके हैं, ना झूला पड़े तो आप झूला डार लो। नृत्य गोपाल जी।
1: जी हाँ चंपा, पर अपने श्रोतांते निवेदन कर दूं, कहूं अच्छो सो बड़ो सो झूला हो तो चंपा जी को बुला लीनो झूलवे के ताई।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, हमें तो कोई बुला ले हम तो वहीं चले जाएंगे, खाली झूलवे ते मतलब है। और यह सावन के महीना के काजे तो वैसे भी काहू ने कहो है, चंदा लगे है चकोर को ज्यो, जो सावन मास सुहानो पपैया, देव मोहे सब प्यारे लगे और मध्य बसे पर कृष्ण कन्हैया। कृष्ण को संग होए, ब्रज को बास होए, और वामे भी सावन के महीना में झूला झूलवे को मिल जाए तो बाकी तो वानगी ही कछु और है।
1: जी हाँ चंपा जी, प्रकृति को अनुपम श्रृंगार लेके आवे है सावन महीना। और यह सावन के महीना में ब्रिज में लोक कलान को हु ऐसो स्वरूप और विकास देखवे को मिले कि हम जगह जगह लोक की
0: नाट्य विधाएं,
1: हाँ उनको मंचन हु देखे हैं।
0: तो नृत्य गोपाल जी आप तो देख लियो, पर ऐसा करो ना कि ऐसी कोई नाट्य विधाएं हमारे भैया बहनान को भी तो सुनवाए दो, ऐसे ही कछु कार्यक्रम की ओर बढ़े हम।
1: जी हाँ श्रोताओ, तो आज आपको सुनवा में एक भेंट वार्ता जाको विषय है स्वांग संगीत में पद्मावती झूला। और यह विषय पे आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में है ताराचंद प्रेमी जी, और उनसे बात कर रही है चंपा जी।
0: ब्रज माधुरी कार्यक्रम में ताराचंद प्रेमी जी आपको स्वागत है, अभिनंदन है।
2: सब सुनवे बारे भैयान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, और आपको भी राधे राधे। चंपा जी आपने वो स्टूडियो में बुलाया है
0: जी। ताराचंद जी देखो, आप तो जानो हो कि ब्रजभूमि वैसे तो कृष्ण और प्रिया प्रियतम की लीला भूमि है, पर यहाँ की जो नाट्य विधाएं है ना उनकी भी वानगी ऐसी है, उनने विश्व स्तर पे अपनो परचम फहरायो है। ताराचंद प्रेमी जी,
2: हाँ जी,
0: आज आप स्वांग संगीत विधा पे बात करवे के काजे हमारे स्टूडियो में आए हो
2: जी।
0: तो सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे कि जो आपके स्वांग को मंचन है तो कहाँ रूप में बाकी आप जो शुरुआत है वाकू करो करें।
2: चंपा जी आपने प्रश्न बहुत बढ़िया कियो है। मैं आपको बताऊं कि जब भगत सांगीत और नौटंकी शुरू हो का है
0: जी,
2: तो वहां में सब कलाकार अपना स्वांग सजके
0: जी,
2: सजके कपड़ा वपड़ा पहन के और जो है तैयार रह के और स्टेज पे आ जाए सब
0: मंच पे
2: और फिर एक सामूहिक मतलब जो वंदना करें भगवान की।
0: देखो आपकी जो सामूहिक प्रस्तुति है,
2: हाँ,
0: तो आपने कही है कि हम युगल सरकार की जो स्तुति है बातें आपको रंगारंग शुरुआत करें,
2: हाँ,
0: तो हमारे श्रोतान को भी बाकी वानगी ने प्रस्तुत करके बताओ।
2: हाँ अवश्य बताऊंगा मैं, ये ध्रुपद में क्लासिकल में गायो करें सब जो है मिलके,

0: बहुत सुंदर ताराचंद प्रेमी जी। आप एक बात बताओ,
1: हाँ
0: ये चाहे भगत नौटंकी है, स्वांग संगीत है, तो आपकी जो ये छंदन की गायकी है ना, वहां में हम देखे हैं दोहा है, चौबोला है, बहर तवील है, लावनी है, इनके अलावा कोई और भी कछु गायकी को मंचन होवे?
1: हाँ
0: अपने श्रोता भैया बहनान के काजे मन हुआ कि या बात को भी पूछ ली जाए, क्योंकि हमारे ब्रज में तो ये बात कही हुई है कि मन की बात ना मन में ना रखनी चाहिए।
1: जी
0: कि अगर हम या को क्रमानुसार या देखें, तो या में कोई और स्तुति जो कि अनिवार्य है वो आपको मंचीय शैली में देनी देनी है?
1: हाँ, आपने चंपा जी बहुत सुंदर प्रश्न किया हो। ये सामूहिक वंदना के बाद में फिर कलाकार एकल जो है भेंट करें।
0: जी,
1: हाँ, मैं भेंट आपको सुनाऊं।
0: जैसे सावन को महीना चल रहा है तो भोलेनाथ शिव को ही कोई भेंट आपकी समर्पित होए?
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: दुख सब तुम ही हरोगे, महादेव कैलाश पति दंगल में लाज रखोगे।
1: बहुत सुंदर प्रेमी जी। देखो मंचीय गायन में आप या गायकी को लेके आते होंगे, तो कितनी बढ़िया बात है कि जो भक्ति को समाए ना वो
0: जी
1: अपने आप आरंभ में ही बंध जाता होएगो। और ऐसी
0: हाँ
1: भक्ति की वह भक्ति है देखवे के काजे, तो स्वयं महाराज भोलेनाथ भी ब्रज दरा की ओर चले आए
0: सच
1: हैं।
0: कह रही हो आप चंपा जी।
1: पर हम देखें कि नौटंकी स्वांग सांगीत में अनेकानेक विधान को मंचन हो रहे हो है, पर सावन की बात चल रही है ना, तो एक बात हमारे मन में आई कि क्यों ना आज अपने श्रोता भैया बहन के काजे पद्मावती के झूला को भी वर्णन कछु सुन लियो
0: वाह
1: जाए।
0: वाह वाह वाह वाह चंपा जी, वाह वाह वाह वाह,
1: है ना,
0: बहुत सुंदर प्रश्न
1: जब
0: कर रही हो
1: भोलेनाथ
0: आप
1: तो
0: तो।
1: स्वयं कैलाशवासी ब्रज आई गए हैं
0: हाँ
1: सावन
0: हाँ
1: में,
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: हम देखे हैं कि जो लोकगीत की शैली है, चाहे वे मल्हार की शैली है या कोई अन्य विधा की शैली है, तो हम अपने बड़े जनन के श्री मुक्ते सुने हैं कि पद्मावती के झूला को भी ना बड़ा वाह वियल वर्णन हो
0: हाँ
1: है स्वांग विधा में।
0: स्वांग विधा में,
1: जी
0: तो स्वांग विधा में पद्मावती का झूला में वो मल्हार है
1: मल्हार एक ही है कि या एक दो तरह के
0: ना,
1: हैं,
0: दो तरह की मल्हार है वहां
1: तो
0: पे।
1: बताओ हमारे भैया बहन
0: लो
1: को
0: ना सुनो भैया,
1: कौन कौन सी मल्हार
0: देखो
1: है।
0: एक तो ये है।

0: बहुत सुंदर ताराचंद जी, आपने जो ब्रज की दोनों तरह की मल्हारम की शैली है उनकी वानगी हमारे श्रोता भैया बहनान को सुनाई है। ताराचंद जी,
1: जी
0: स्वांग संगीत परंपरा है, आप यहाँ के विश्व विख्यात कलाकार हैं। यही क्रम में एक बात आप बताओ कि जो पद्मावती झूला है, ये तो हमारे ब्रज धरा की ना प्रसिद्ध लोक गाथा है।
1: चंपा जी, मैं आपको बताऊं कि पद्मावती के झूला में बहुत ही भावपूर्ण दृश्य मतलब हमें,
0: जी,
1: और
0: यानी कि जो संवाद और संगीत है ना, वहां को
1: हाँ
0: मेल है।
1: वहां को मेल है।
0: जी
1: आप सही पकड़े। तो पद्मावती को जो झूला है, पद्मावती एक राजा के लड़का पे मोहित है जाए,
0: जी जी
1: तो बाकी संग में जो सहेली है
0: जी
1: मुंजो कह के, देखो ये परदेशी है, या के बारे में भरोसे मत रहो,
0: हाँ
1: आप घर को चलो।
0: जी
1: तो वन की ना ना मोको मतलब पसंद आएगा, ये तो राजकुमार, मैं तो याते विवाह करना चाहूं। बाकी संग में जो सहेली अटकाई वो बड़ी चतुरी, तो वन की देखो ऐसे मत मिलो, मैं इनको मतलब इशारा बताऊं, भाई इशारे इनको बता दो, अगर
0: जी
1: समझदार होंगे
0: तो
1: कोई
0: समझ
1: समझ
0: जाएंगे।
1: जाएंगे और महलन में आ जाएंगे और तुमसे
0: हाँ
1: मुलाकात कर लेंगे।
0: जी
1: तो उनने मतलब एक कमल को फूल लियो सखी ने, और वह राजकुमारी को पद्मावती को दियो कि कमल को फूल पहले आप अपने कान ते लगाओ, और फिर दांतन ते कुतरो, और फिर पामन ते दबाओ, और फिर जो है या सीने ते लगाओ,
0: जी
1: और राजकुमार दिखा के और धर दे यहीं
0: जी
1: देख के, और जब सब चल दो, अपने आप समझदार होंगे तो आ जाएंगे।
0: तो ये तो ऐसी चतुर हुई जैसी राधा रानी की चतुर सखी है ललता जी।
1: ललता जी।
0: जी
1: तो जैसे ही राजकुमार के संग में जो वजीर को लड़का होगा,
0: जी
1: वाने कही राजकुमार ऐसा है कि या कमल के फूल मत लियो, जो जादू फादू तो ना है, चक्कर पड़ जाए भैया। तो वन के नाना कोई जादू नाना झट मुन्ने पकड़ लियो कमल को फूल, वन के
0: जी
1: भैया ऐसे ऐसे इशारो मतलब करो है हमें, और हमें दिखा के यहाँ दर्दिया का मतलब का है। तो वो उनके वजीर के लड़का ने बताया है, और मैं आपको बताऊं गाय के लामनी में,
0: जी
1: हाँ बम भगत लामनी है,
0: जी
1: कमल

0: कमल फूल जो कान ते लगायो वाको मतलब ये बतायो कि कर्नाटक शहर के रहने वाली है राजकुमारी,
1: जी
0: और दांतन ते जो कुतरो वाको मतलब ये बतायो कि वो दंत सेन राजा की राजकुमारी है। और फिर पैरों तले दबाए, पैरों

0: जब पैरों तले वाने दबाया फूल तो
1: जी
0: वाने अपनो पद्मावती नाम बताया राजकुमार,
1: जी
0: और जब सीने से लगाया तो वाने कि मैं तुमसे प्रेम करूं।
1: जी यानी कि जो ये पद्मावती झूला है ये
0: हाँ
1: प्रेम प्रसंग की
0: प्रेम प्रसंग
1: लोक गाथा
0: की
1: है।
0: लोक गाथा है।
1: जी
0: हाँ, तो राजकुमार के दोस्त ने कही, वजीर के लड़का
1: मित्र
0: ने,
1: ने
0: मित्र ने, कि ऐसे ऐसे बातें भैया मैंने तो कुछ सब बात बता दी है और

0: प्रसंग है, जो कथानक है या पद्मावती झूला में, बाएं ओर हमारे श्रोता भैया वैनान को सुनाओ। तो यही वाली बात है, जब आप जैसे विद्वान हमारे सामने हैं तो पूछना तो लाजमी है।
1: जय हो जय हो जय हो जय हो।
0: जी
1: देखो मैं आपको हूँ पद्मावती से ही संबंधित जो है आला है, तो पद्मावती को श्रृंगार लिखो है उस्ताद ने, हमारे यहाँ के जीवन उस्ताद हैं, एक छाता के ही हैं छत्रवन के। मैं आपको बताऊँ, सजी पद्मावत रंग महल में हो, सजी पद्मावत रंग महल में नख से

0: अरे मत घबरावे, मिले हम दम कर दिल में सब्र करार। भैया या इशारे साफ साफ कह गई है कि राजकुमार मैं तुमसे प्रेम करूं हूं और तुम मोते मिलवे के ताई आ जाओ।
1: निवेदन हम करें कि आप ना कोई आल्हा को

0: रही कोंधा मार, भैया मन बिजली रही कोंधा मार।
1: बहुत सुंदर प्रेमी जी। देखो सावन को महीना चल रो है या लोक गाथा की कोई मल्हार है ना, तो बाय और हमारे श्रोता भैया वैनान को सुनाए दो।

0: अब तक ना आयो मेरो सामरो।
1: बहुत सुंदर ताराचंद प्रेमी जी। देखो सांवरों मेलन में आवे ना आवे, पर हम आपसे यह बात को अनुरोध करें कि आप हमारे ब्रज माधुरी कार्यक्रम में ऐसे ही आते रहो,
0: जय हो जय
1: और
0: हो।
1: तो आप हमारे ब्रज माधुरी कार्यक्रम में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही बुलाते रहें और आप ऐसे ही आते रहो।
0: चंपा जी
1: नमस्कार।
0: आपको भी धन्यवाद और सब सुनवे वाले भैया बहनन को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।
2: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे भेंट वार्ता स्वांग सांगीत में पद्मावती झूला, या मैं ताराचंद प्रेमी जी से बात कर रहे हैं। चंपा जी
1: बात करके ना इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने भी भैया बहनान ने हमें आज सुनो होएगो, उनको मन ना थिरक रहो होएगो, झूला झूलवे के काजे। आप पौराणिक काल से ही देख लो, ऐसी लोक मान्यता है कि ब्रज और कदम्ब के वृक्ष, इनको तो इतना आपसी तालमेल है कि बिना कदम्ब के वृक्ष के तो ब्रज की कोई कल्पना ही ना है।
2: जी हाँ चंपा, ब्रज की शोभा है हमारो कदम्ब।
1: हमारे 84 कोसीय ब्रज को जो परिकर है, आज वहां पे ना जो सघन वृक्षारोपण हो रहे हो है, उनमें भी कदम्ब के वृक्ष को ना प्रधानता दी जा रही है।
2: पर तनिक घड़ी की ओरहू देख ले हो, अब आज के ब्रज माधुरी कार्यक्रम को समय यही संपन्न है रहे हो है। कार्यक्रम प्रस्तुत करता वीके तोमर के संग मो नृत्य गोपाल
1: और मोई चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को अनुमति दो। नमस्कार, नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 3:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं नाटक पार्वती गिरी।
1: आइए सुनते हैं नाटक पार्वती गिरी। लेखिका सुनीता अग्रवाल, निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी।

0: त्रिशा, लो अभी तक तुम ये पन्ने लेकर बैठी हो। जब से आई हो इन्हीं पन्नों में डूबी हुई हो, किसी बात का होश नहीं है तुम्हें। अरे घर से थोड़ी मोहब्बत भी करो, उसके भी कुछ काम करो।
1: ओहो दीदी, आप आज कर लीजिए ना, बस कुछ पे रह गए हैं।
0: यानी खाना भी मुझे ही बनाना होगा। सोचा था छोटी बहन आ रही है, थोड़ा तो सुख मिलेगा। देखू तो ऐसा क्या पढ़ रही हो कि तुम्हारा कुछ और करने का दिल ही नहीं कर रहा। क्या है ये पन्ने और क्या लिखा हुआ है इन पन्नों में?
1: पन्ने नहीं है दी, पार्वती गिरी जी की बायोग्राफी है। उनके जीवन ने बहुत लोगों की जिंदगी को बदला है। आजादी की लड़ाई के बाद उन्होंने गांव में लोगों की निस्वार्थ सेवा करने का काम चुना, जैसे आप इस गांव में काम कर रही हैं। आपकी भी प्रेरणा वही है ना?
0: हाँ प्रिशा, उनके जैसा एक काम भी कर पाऊं तो धन्य समझूं मैं अपने आप को।
1: पर आप भी तो सब कुछ त्याग कर इस गांव के लिए इतना कुछ कर रही हैं।
0: आदरणीय पार्वती गिरी जी से मेरी क्या बराबरी, वो तो उड़ीसा की मदर टेरेसा कहलाती हैं। पर तू इन्हें अचानक क्यों पढ़ने लगी? वैसे देखा जाए तो पार्वती गिरी जी के बारे में कुछ खास जानकारी मिलती नहीं है, वो तो खोया हुआ इतिहास हो गई है।
1: बात तो सही है, पर कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आजादी की लड़ाई के संघर्षों को, उनकी यादों को जिंदा रखा जा सके।
0: अच्छा, जैसे?
1: जैसे आप और कुछ और लोग भी।
0: पहेलियां बुझाओगी या कुछ बताओगी भी?
1: अरे वो छोड़ो, पता है दी, मुझे याद है कि आप अपने कॉलेज के आखिरी साल में एक ट्रिप पर ओडिशा गई थी। पर जब आप आई तो एकदम बदल चुकी थी। बस कुछ दिनों बाद अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ आ गई। तब से यहीं के लोगों के लिए काम कर रही हैं। माँ पापा आज तक आपको रोक नहीं पाए।
0: पता है प्रिशा, मात्र अपना जीवन जीकर इस दुनिया से चले गए तो क्या जिया? जिए तो कोई पार्वती गिरी जी की तरह जिए, जिसने स्वतंत्रता के बाद भी कोई बड़ा पद ना लेकर गांव-गांव जाकर काम करने की सोची। वो 1955 में संबलपुर जिले के लोगों के लिए स्वच्छता सुधार के लिए एक अमरीकी प्रोजेक्ट में शामिल हुई। उन्होंने नृसिंहनाथ में कस्तूरबा गांधी मातृ निकेतन नामक महिलाओं और अनाथों के लिए एक आश्रम शुरू किया और संबलपुर जिले के जूजोमुरा ब्लॉक के अंतर्गत बीर सिंह गढ़ में निराश्रितों के लिए डॉक्टर संतरा बाल निकेतन नामक एक और घर शुरू किया।
1: हाँ दीदी, मैंने भी पढ़ा कि उन्होंने जेल सुधार और कुष्ठ रोग उन्मूलन में काम किया। उनके समाज सेवा के कार्यों को देखते हुए 1984 में भारत समाज

0: कल्याण विभाग ने उन्हें सम्मानित भी किया था।
1: वाह, ये सब जानकारी इन्हीं कागजों में है क्या? दिखा दो, किसने इतनी जानकारी इकट्ठा करके रखी हुई है?
0: ट्रेन में एक महाशय मिले थे जो पार्वती गिरी जी पर रिसर्च कर रहे हैं। मैंने कहा पार्वती जी की अनुयायी से साक्षात मिलवा देती हूँ, मदद ही हो जाएगी बेचारे की। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों, ठीक किया ना दी?
1: हाँ,
0: पार्वती गिरी जी तो आपकी भी प्रेरणा है, तो आप करेंगी ना उनकी मदद?
1: तुम ना, तुम ये ट्रेन में दोस्तियां करना बंद करोगी, पता है ना जमाना कितना खराब है।
0: आ दीदी, ये चीटिंग है। आप कहती हो कि ट्रेन में किसी का खाना नहीं खाना चाहिए, ना ही खिलाना चाहिए। देखो कैसे अच्छे से रटी हुई है मैंने ये बात। पर पढ़ने लिखने की बातें नहीं करनी चाहिए, ये आपने कभी नहीं कहा।
1: तुमसे ना बस बहस करा लो, बात की होगी तो नंबर भी एक्सचेंज किए होंगे ना।
0: अरे आप तो बहुत इंटेलिजेंट निकली
1: तुम।
0: देखो देखो, अब जाओ बढ़िया सा खाना बना लो, थोड़ा ज्यादा बना लेना, और अगर कोई आ जाए तो उसको भी पूरा हो जाए। क्यों?
1: क्या मतलब कि कोई आ रहा है और मुझे पता ही नहीं?
0: मुझे भी कहाँ पता है, पर सोच रही हूँ कि जब किसी ने अपने हाथ की लिखी हुई इतनी बड़ी रिसर्च दी है तो वो लेने भी तो आएगा ना। अगर ना भी लेने आए तो पूछने तो आएगा ना कि कैसी लगी।
1: ओफो, तुम जब से आई हो ना बहुत बहकी बहकी बातें कर रही हो। कान खोल के सुन लो, इस घर में कोई अजनबी नहीं आना चाहिए, समझी?
0: वो तो वक्त बताएगा।
1: क्या बोला?
0: अरे भाई कुछ नहीं, प्लीज कुछ पढ़ने बच्चे हैं दीदी, पढ़ने दो ना चैन से।
1: ठीक है, एक आवाज लगाऊंगी, खाने के लिए आ जाना चुपचाप।
0: ओके माता श्री जी का बिग रूप, जाए अब आप।

0: निशा देखो दरवाजे पे कोई है।
1: वो ये लड़की भी ना। अब शिशिर तुम, तुम्हें मेरा पता किसने दिया?
2: वर्षों से ढूंढ रहा हूँ शैला तुम्हें, बस एक माफी मांगने के लिए। मैं क्यों ना समझ सका कि तुम कितना बड़ा काम करना चाहती हो। तुमने कभी बचपन में पार्वती गिरी के बारे में पढ़ा था और तय कर लिया कि मैं उनकी तरह ही देश सेवा करूंगी और शहर का अच्छा खासा सुख सुविधा वाला जीवन छोड़कर इधर चली आई। जब इस गांव में आया तो सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा और लोगों ने मुझे सम्मान के साथ सीधा यहां लाकर छोड़ा। तुम्हारी बहन प्रिशा से जब मैंने पता मांगा तो उसने भी यही कहा था कि इस गांव में आकर दीदी का नाम पूछ लेना और वो लोग तुम्हें सम्मान सहित उनके घर पहुंचा देंगे।
1: आओ शिशिर।
0: प्रिशा, तुम्हारे मेहमान आए हैं ट्रेन वाले।
3: जी दीदी, आई।
1: शिशिर खाना लगा रही हूँ, खाना खाकर जाना।
2: नहीं, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा।
1: बच्चों जैसी बातें मत करो, चलो खाना खा लो।
4: अरे शिशिर भाई, आ गए आप? दी वो तो खाना खा लेंगे, पर ये तो बताओ कि आपको पार्वती गिरी की कौन सी बात इतनी प्रभावित कर गई कि आपने उनके जीवन पर चलने की ठान ली?
1: जानती हो प्रिशा, जिस लड़की को 11 साल की उम्र में ही पता चल गया हो कि उन्हें अपने देश की आजादी के लिए काम करना है, सोच कर देखो उस शख्सियत के बारे में। वैसे उनके चाचा रामचंद्र गिरी एक प्रमुख नेता थे और उनके घर में बैठकर स्वतंत्रता सेनानी देश की आजादी की चर्चा किया करते थे। समलाईपुर गांव राष्ट्रवादियों के लिए एक महत्वपूर्ण सभा स्थल था।
4: समलाईपुर गांव संबलपुर जिले में है।
1: हाँ,
4: जहाँ पार्वती गिरी जी का जन्म हुआ है ना? 19 जनवरी 1926 में। हाँ सही याद है ना मुझे शिशिर भाई?
2: आज का दिन यानी 19 जनवरी मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज के दिन ही तो हम अलग हुए थे। तुम्हारी दीदी पार्वती गिरी जी की तरह अनाथालय खोलना चाहती थी, देश की जिम्मेदारियां संभालना चाहती थी और मैं शैला का साथ निभाने में असमर्थ रहा।
4: आप तो कहानी को अपने ऊपर ले गए शिशिर भाई। अभी ये तो बताएं कि पार्वती गिरी जी स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा कैसे बनी?
2: बताया ना तुम्हारी

0: दी ना कि वो अपने घर में हो रही स्वतंत्रता सेनानियों की बैठकों में बहुत दिलचस्पी से भाग लेती थी। उनके बलिदान से प्रेरित होकर वो घर घर जाकर लोगों को पार्टी का सदस्य बनने का अनुरोध करने लगी, और उन्हें ये जिम्मेदारी किसी ने सौंपी नहीं थी, बल्कि उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने लिए खुद तय की थी। और एक संगठन के विकास के लिए पहला कदम यही है कि ज्यादा से ज्यादा उसके सदस्य बने।
1: हाँ, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति इस छोटी सी लड़की की पहल पार्टी के नेताओं तक पहुंची। उन्होंने इस बात से प्रभावित होकर पार्वती के पिता से विनती की कि वो उसे समलाईपुर गांव में पार्टी के अधिवेशन में संगठनात्मक कार्य के लिए अनुमति दे दें। उस समय पार्वती मात्र 11 बरस की थी। उनको सौंपे गए कार्यों के प्रति उनका समर्पण इतना प्रभावशाली था कि मालती चौधरी और प्रण कृष्ण पढ़ियारी जैसे प्रतिष्ठित नेताओं ने उनके परिवार से फिर अनुरोध किया कि पार्वती को संगठनात्मक कार्यों में पूर्णकालिक रूप से शामिल होने की अनुमति दे दें।
0: हाँ, और ये वो समय था जब पार्टी में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की भारी कमी थी, पर परिवार ने काफी समय तक कोई जवाब नहीं दिया। पार्वती गिरी भी दृढ़ निश्चय करके बैठी थी। उन्होंने तो अपनी शिक्षा भी बीच में ही छोड़ दी थी।
1: हाँ।
0: उनके लिए अभी अपनी शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण देश की आजादी के संघर्ष से जुड़ना था।

0: बाबूजी, हम स्वतंत्रता आंदोलन में जरूर भाग लेंगे, चाहे आप हमें इजाजत दें या नहीं।
1: पार्वती, तुम अपने बाबूजी के आगे ज्यादा बोल रही हो। तुम्हारी उम्र की बच्चियां पढ़ती हैं या उनका ब्याह करके विदा कर दिया जाता है। ये आंदोलन वांदोलन में काम करना बच्चों का काम नहीं है।
0: पर हमारा काम देखकर ही तो मालती दीदी और प्रण कृष्ण,
1: तुमसे उन लोगों का नाम तो अच्छे से लिया नहीं जा रहा है, और काम करोगे उनके साथ? देखो, जिद मत करो, बाबूजी इसकी इजाजत नहीं देंगे।
2: पार्वती की माँ, वो लोग अच्छे हैं, पर अगर उन्होंने कुछ कहा है तो कुछ तो सोचकर ही कहा होगा। और रामचंद्र तो है ही इसके साथ, करने दो इसे अपनी मर्जी, ना हो पाया तो ब्याह कर देंगे।
3: कितना खुशी का पल रहा होगा ना पार्वती जी के लिए।
4: हाँ, और मुझे देखो, आज के आधुनिक समय में मैं पढ़ी लिखी एक संभ्रांत परिवार की लड़की, जिसको आज तक इजाजत नहीं मिली कि मैं गांव में आकर सेवा करूं।
5: शैला, शैला, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती?
4: तुम क्यों माफी मांग रहे हो शिशिर? गलती तुम्हारी नहीं है, हमारे समाज की है कि लड़कियों को कुछ काम करने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है, पर पुरुष, उनकी डिक्शनरी में तो इजाजत शब्द ही नहीं है।
5: पर मुझे तो अपने घर वालों से इजाजत लेनी पड़ रही थी ना, कि मेरी पत्नी शादी के बाद इस घर में ना रहकर उस गांव में रहेगी जहां वो सेवा करना चाहती है। तो नहीं मिली थी मुझे इजाजत? हम लड़के भी इतने स्वतंत्र नहीं होते कि हमारी हर बात मान ली जाए। शैला,
4: चलो मैं ना सही, पर पार्वती गिरी जी खुशकिस्मत निकली कि उन्हें 12 वर्ष की छोटी सी आयु में जाजपुर में रमा देवी द्वारा संचालित बारी आश्रम में जाने की अनुमति दे दी गई। वो बिना किसी घबराहट के वहाँ गई। तुम्हें पता है प्रशा, उनके साथ बरगढ़ की बाल विधवा प्रभावती भी थी। प्रभावती के परिवार ने भी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर उनके दृढ़ इरादों के आगे सबको हार माननी पड़ी। ये रीबा राय के घर अरिगांव में कुछ दिन तक रुकी और फिर आश्रम पहुंच गई।
3: क्या बात है दीदी।
5: और तो और, पार्वती गिरी ने आंदोलन चलाने के साथ साथ आश्रम में रहकर हस्तशिल्प और स्वयं सहायता सहित कई चीजें सीखी जो बाद में उनके बहुत काम आई। उन्होंने पार्टी के लिए बरगढ़, संबलपुर, पदमपुर, पनीमारा घेस और अन्य स्थानों की यात्राएं शुरू कर दी, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। निडर पार्वती आंदोलन का झंडा उठाए गांधी जी का संदेश जगह जगह दे रही थी।

0: आंदोलन में आगे बढ़ती जा रही थी। उनको कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार अंग्रेज सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा।
1: पर क्यों?
0: चूंकि वो नाबालिग थी, बेचारे अंग्रेज दांत पीसते रह जाते, पर पार्वती का बाल भी बाका नहीं कर पाते।
1: पता है दी, शिशिर भाई ने ट्रेन में एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाया था पार्वती गिरी जी का।
2: अच्छा, फिर से एक बार सुनाओ ना।

0: ओह, तो ये कार्यालय है एसडीओ का और ये उसकी कुर्सी जिस पर बैठकर वो हमारे खिलाफ सारे काम करता है और ब्रिटिश सरकार का हुक्म बजाता है, तो आज हम उसका न्याय करेंगे।
1: पार्वती, तुम एसडीओ की कुर्सी पर बैठकर कानून हाथ में ले रही हो। वैसे ही ब्रिटिश सरकार तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। अगर ऐसा किया तो वो तुम्हें जरूर जेल में डालकर अपनी मूंछों पर ताव देगी और अपनी पीठ ठोकेगी।
0: ब्रिटिश सरकार इसके अलावा कर ही क्या सकती है, जेल में ही भेज सकती है ना। पर कब तक रख लेगी जेल में? देश की आजादी के बाद तो देश अपना ही होगा ना। तो जल्द से जल्द इस ब्रिटिश सरकार को भगाना होगा। उन्हें लोहे के चने चबाने ही होंगे, वरना तो वो सोचेंगे कि हम में दम ही नहीं है। तो मेरे सामने उस एसडीओ के हाथ पैर बांध कर लाया जाए, हम उसका न्याय करेंगे।
1: तुम्हें डर नहीं लगता पार्वती?
0: हाँ, डर तो ब्रिटिश सरकार को लगना चाहिए। जहाँ के बच्चे आपकी नाक में दम कर सकते हैं, वहाँ के बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी आपका क्या हाल करेंगे। तो अच्छा यही है कि हमारे देश से इज्जत से निकल जाओ, वरना तो हम ऐसा नाक में दम करेंगे कि अपने देश में जाकर भी नाक से सांस नहीं ले पाओगे।
2: सांस नहीं ले पाओगे।

0: इस घटना ने तो ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था। अब तक तो पार्वती गिरी जी को किसी भी आंदोलन के लिए सजा नहीं दे पाए थे क्योंकि वो नाबालिग थी, पर इस घटना के होते ही पार्वती को उन्हें सजा देने का मौका मिल गया क्योंकि अब वो 16 साल की हो चुकी थी। उन्हें 2 साल का कठोर कारावास देकर ब्रिटिश सरकार के कलेजे को ठंडक मिली। दाद थी पार्वती गिरी जी को कि उन्होंने अपने उस कठोर कारावास की सजा को भी खुशी खुशी काटा।
1: बिल्कुल।
0: और जेल के बाहर आने के बाद वो फिर से अपने कामों में जुट गईं। ब्रिटिश सरकार उनके साहस को टस से मस नहीं कर पाई।
2: क्या बात।
1: वैसे प्रिशा, ये किस्सा मुझे तुम्हारी दीदी ने ही सुनाया था।
2: ओह, और मैं वैसे ही आपसे इतनी इम्प्रेस हुई जा रही थी।
0: वैसे तुम्हें पता है प्रिशा, पार्वती गिरी जी ने बरगढ़ कोर्ट में वकीलों को अंग्रेजों के खिलाफ अदालत का बहिष्कार करने और आंदोलन करने का आह्वान किया, पर वकीलों ने उनका साथ नहीं दिया। तो निडर पार्वती ने उन सभी को चूड़ियां भिजवाई थी। ये मर्दों का सरासर अपमान था, पर कोई भी कुछ नहीं बोला, बस बेइज्जती का घूंट पी कर रह गए।
2: सच में क्या दीदी, क्या बात थी ना पार्वती गिरी जी में। यहाँ तो लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है छोटा सा भी करेज लाने के लिए, नहीं?
1: हाँ, जैसे मुझे ही देख लो, हम जैसे लोग कहाँ आगे आने देते हैं किसी भी महिला को। वो अगर कुछ करना चाहती है तो सबसे बड़ा रोड़ा उसके लिए अपने बनते हैं।
2: सच है।
1: जैसे मैं ही कहता था कि अरे हम शादी करेंगे तो कैसे बनेगी हमारी गृहस्थी, मेरे बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा। छोटी छोटी सोच में फंस के रह जाते हैं, बहुत ही स्वार्थी होते हैं हम।
2: हाँ, तो क्या पार्वती जी के माता पिता ने नहीं सोचा होगा कि पहले अपना घर देख लो फिर बाहर का देखना। अब कहा होगा ना, रोका होगा ना उन्हें।
0: बिल्कुल, जरूर कहा होगा, पर वो रुकी कहाँ। उन्होंने अपने हर कर्तव्य को तन और मन से निभाया। और मुझे देखो तुम, मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया है। उनके लिए मकसद है शादी, और ये शिशिर बाबूजी का भी मकसद है कि शादी हो और मैं इनके घर से लेकर रिश्तेदारों की जिम्मेदारी निभाऊं। क्योंकि प्रेम विवाह होगा ना, तो ये साबित करना होगा कि बहू अच्छी आई है। पर मुझे ना किसी को कुछ साबित नहीं करना था, मुझे तो बस पार्वती गिरी जी के नक्शे कदम पर चलना था। और अब जैसा भी मैं काम कर रही हूँ ना, मुझे एक संतुष्टि है कि मैं समाज को अपनी सेवा दे पा रही हूँ, अपने मानव होने का फर्ज निभा पा रही हूँ।
2: दी, मैं आपके साथ हूँ। पार्वती गिरी जी के कामों से ही उन्हें अपने गाँव, जिले, राज्य के लोगों के दिलों में जगह मिली। आज उनका सम्मान पूरा देश करता है।
0: हाँ प्रिशा, तुम्हें पता है वो चाहती तो स्वतंत्रता के बाद एक अच्छा पद प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी कर सकती थी।
2: बिल्कुल दी, बिल्कुल।

0: कितनी खुशी का दिन है ना आज, सच में स्वतंत्रता की सांस का एहसास ही कुछ अलग होता है। आज लग रहा है जैसे मैंने फिर से जन्म लिया।
1: सच में मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।
2: हाँ दीदी, सच में आज तो सांस लेने में आनंद आ रहा है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, हम आजाद हैं, आजाद देश के वासी हैं।
0: किसने रोका है तुम्हें? खुशी से चिल्लाओ, जोश से चिल्लाओ। अब हम गुलाम नहीं है किसी के, जो अपनी बात कहने से डरेंगे। बोलो मेरे साथ, हम आजाद हैं, आजाद देश के वासी हैं।
3: हम आजाद हैं, आजाद देश के वासी हैं।
0: हम आजाद हैं, आजाद देश के वासी हैं।
2: दीदी, चूंकि अब देश आजाद हो गया है तो आपको भी अब दिल्ली चले जाना चाहिए, क्योंकि अब वहीं से तो पूरा देश चलेगा।
0: नहीं, अब तो घर वापसी हुई है, देश आजाद हुआ है, पर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। देश के ऊपर बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमें अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को खुद ही देखना होगा। मुझे एक अनाथालय बनाना है। देश की इस लड़ाई में बहुत से बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनको अच्छा जीवन देने के लिए हमें काम करना होगा। दलितों के लिए हमें काम करना होगा, उन्हें समाज में सम्मान दिलाना होगा।
1: पार्वती, तुमने तीसरी कक्षा में अपनी शिक्षा छोड़ दी थी और देश के प्रति अपने को समर्पित कर दिया था, पर अब तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करके जो भी तुम्हारा सपना है उसे पूरा करना। प्रयागराज जाकर प्रयाग महिला विद्यापीठ से अपनी शिक्षा पूरी करो, वहाँ तुम्हारे लिए जो भी मदद बन पड़ेगी मैं करूँगी।
0: सच बताऊं तो प्रभा दीदी, मन में कसक थी कि अपनी शिक्षा को पूरा करूं, वरना तीसरी पास लड़की को कौन सुनेगा। आपने मेरा मार्गदर्शन करके मुझे अपना ऋणी बना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा दीदी।
1: तुम मेरी बहन जैसी हो पार्वती, तुम्हारा अच्छा सोचकर मुझे सुख मिलता है। वैसे पार्वती, तुमने अपने विवाह के बारे में कुछ सोचा है? शिक्षा के बाद ही करना जो करना है।
0: प्रभा दीदी, विवाह तो हो ही चुका है देश की जिम्मेदारियों से। शिक्षा पूरी करने के बाद मुझे बहुत काम करना है दीदी, उसमें शादी की जिम्मेदारियां उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
4: वाह, पार्वती जी को शत शत प्रणाम। वो चाहती तो आजादी के बाद आसानी से राजनीति में आ सकती थी, सारी सरकारी सुख सुविधाओं का भोग कर सकती थी, पर उन्होंने दोबारा शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग चुना।
5: यही नहीं, उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक पैदल कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय विकास का कठिन रास्ता चुना। उन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भाग लिया। अनाथों के लिए बारगांव के पाड़ कमल गांव में रुकमणी लाठ बाल निकेतन की स्थापना भी की, और अनाथों, महिलाओं और बच्चों के लिए कस्तूरबा गांधी मातृ कुंठा नामक संघ की स्थापना की। और प्रशा, संबलपुर में उन्होंने निराश्रितों के लिए डॉक्टर संतराबाल निकेतन की स्थापना भी की।
6: जी भैया, इतना ही नहीं प्रशा, इसके अलावा पार्वती गिरी जी ने जेल सुधार के लिए भी आंदोलन चलाया। वहीं स्वतंत्रता सेनानी रमा देवी चौधरी के साथ

0: कोरापुट में अकाल से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा जाकर मदद की।
1: उन्हें अपनी जान की कतई चिंता नहीं थी क्या?
0: हाँ हाँ, उन्हें अपने जान की कतई चिंता नहीं थी। ऐसे ही थोड़ी उन्हें उड़ीसा की मदर टेरेसा कहा जाता है।
1: तो आप भी मदर टेरेसा बनना चाहती हैं?
0: अरे नहीं नहीं, मदर टेरेसा जैसा जीवन जीना आसान नहीं है, और ना ही पार्वती गिरी जी जैसा। पर उनका 1% भी जीवन जी लिया और एक गांव भी या एक इंसान को भी सही मार्ग दिखा दिया ना, तो समझूंगी कि मैंने अपने देश और अपनी आत्मा के प्रति अपना कर्तव्य निभा दिया।
1: दीदी, आपके त्याग को कोई समझे ना समझे, पर मैं समझ गई हूँ। 17 अगस्त 1995 को पार्वती जी ने आखिरी सांस ली और उनके सम्मान में सरकार ने 2016 में मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का नाम पार्वती गिरी रखा।
0: हाँ।
1: वहीं 1998 में उड़ीसा राज्यपाल द्वारा संबलपुर विश्वविद्यालय से पार्वती गिरी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
2: बिल्कुल,
1: थोड़ी देर कर दी थी इस सम्मान के लिए, पर पार्वती गिरी जी को तो जीवन में कोई चाह ही नहीं थी, बस एक चाह के अलावा कि मेरी आखिरी सांस भी लोगों के लिए कुछ काम आ जाए। ऐसी थी पार्वती गिरी जी।
2: बहुत अच्छा समय बीता प्रिशा आप लोगों के साथ।
1: भैया, हम सबको भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ।
2: तो अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पार्वती गिरी जी पर बहुत सारी जानकारी एकत्रित करके एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: क्या बात है भैया,
2: और पूरी हो गई तो शैला तुम्हें कष्ट देने जरूर आऊंगा, क्योंकि वो किताब मैं तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज तुमसे बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ। नमस्ते।
1: नमस्ते। नमस्ते। मुझे लगता है कि पार्वती गिरी जी ने आज शिशिर भाई के जीवन और उनकी सोच को भी बदल दिया।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक पार्वती गिरी, लेखिका सुनीता अग्रवाल, निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे प्रज्ञा झा, अंशिका अवनी, दिशा सेन, राहुल दक्ष, मनिल मयंक मिश्रा, उर्मिला, निशा भारद्वाज।
1: आप सुन रहे थे नाटक पार्वती गिरी, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: मैं हूँ आपका जलदाता ग्रैंड वॉटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे।

0: इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं, क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत, क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, 4 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।

0: Into the Liguang Pudian Tai, just a putong hua chimu, bosong tao churli. She she da jia, so ting. Zai, hoi.
1: From Khel Khiladi.
2: Khel Khiladi, Khelon ka aina.
3: खेल की दुनिया की हर हलचल, हर जीत, हर संघर्ष के साथ मैं हूं प्रेरणा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रवीण यादव।
4: नमस्कार सभी को।
3: नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल खिलाड़ी। आज का दिन भारतीय खेल जगत के लिए कई बड़ी खबरें लेकर आया है। कहीं विश्व मंच पर युवा भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का दम दिखाया है, तो कहीं बड़े टूर्नामेंट में अगले मुकाबले की तस्वीर साफ हो रही है। हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, फुटबॉल

और क्रिकेट खेल के हर मैदान से आज हमारे पास है आपके लिए कुछ खास। आज के खेल खिलाड़ी में हॉकी के FIH वर्ल्ड कप 2026 से लेकर कोरिया मास्टर्स, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, डूरेंट कप, DPL 2026 और आखिर में भारत श्रीलंका अभ्यास मुकाबले तक खेल जगत की हर बड़ी हलचल पर होगी हमारी खास नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हॉकी के उस बड़े मन से जहां जल्द ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें विश्व चैंपियन बनने के लिए होंगी आमने सामने।

0: मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सफर से रिश्ता निभाते हैं। पदक तो बस पहचान बनते हैं, इतिहास तो हौसले लिख जाते हैं। वक्त भी बड़ा दिलचस्प होता है, कभी वो एक लम्हे में तकदीर बदल देता है तो कभी एक सपने को मुकम्मल होने में बरसों लग जाते हैं। कुछ सफर मंजिल पर पहुंचकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो हर नई पीढ़ी के साथ फिर एक नया ख्वाब बनकर लौट आते हैं। खेल की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ जीत सिर्फ एक नतीजा नहीं, हार सिर्फ एक स्कोर लाइन नहीं, और मैदान पर बचती अंतिम सीटी केवल मुकाबले का अंत नहीं बल्कि किसी नए ख्वाब की शुरुआत कराती है। दुनिया के हर बड़े खेल आयोजन की अपनी एक पहचान है, कहीं ओलंपिक का गौरव है, कहीं फुटबॉल विश्व कप का जुनून, और जब बात हॉकी की आती है तो FIH हॉकी विश्व कप वो मंच है जहाँ रफ्तार, रणनीति, हुनर और हौसला चारों एक साथ अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देते हैं। हॉकी एक ऐसा खेल जिसकी गूंज भारत ने दशकों तक पूरी दुनिया को सुनाई। कभी इस खेल ने तिरंगे को विश्व खेल मानचित्र पर सबसे ऊंची पहचान दिलाई तो कभी यही खेल करोड़ों भारतीयों के गर्व की सबसे बड़ी वजह बना। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा अध्याय भी आता है जहां वक्त कुछ ठहर सा जाता है। भारत की हॉकी यात्रा में भी ऐसा एक लंबा इंतजार चला आ रहा है, लेकिन अब वही इंतजार एक बार फिर उम्मीदों में बदल रहा है। सिर्फ कुछ ही दिनों बाद 15 अगस्त एक तारीख जो हर भारतीय के दिल में आजादी, स्वाभिमान और राष्ट्र गौरव का एहसास जगाती है, और इस बार ये तारीख एक और वजह से खास होने वाली है। यही वो दिन है जब बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आगाज होगा। एक ओर पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाएगा, स्कूलों में तिरंगा लहरा रहा होगा, सीमाओं पर जवान मातृभूमि की रक्षा में तैनात होंगे, और उसी दिन हजारों किलोमीटर दूर यूरोप की धरती पर भारतीय हॉकी टीम भी उसी तिरंगे के सम्मान को विश्व मंच पर ऊंचा उठाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। खेल और राष्ट्रभक्ति का ऐसा सुंदर संगम शायद ही कहीं देखने को मिले। ठीक 50 वर्ष पहले वर्ष 1975 में भारत ने हॉकी विश्व कप का स्वर्णिम अध्याय लिखा था।
1: और गेंद भारत के डी में, राष्ट्रवादी बाबर दौड़े डी से पहले, लेकिन उससे पहले ही मुनम्मर ने गेंद क्लियर कर दी। गेंद मिली है बाएं फ्लैंक के अंदर लेफ्ट हाफ के स्थान पर इफ्तार को, इफ्तार ने पास दिया अख्तर रसूल को, अख्तर रसूल ने फिर इफ्तार को, इफ्तार ने जाहिद को, जाहिद बहुत खतरनाक खिलाड़ी, उन्होंने लेफ्ट आउट के स्थान पर मंसूर जूनियर को दे दिया जो सेंटर फॉरवर्ड असलम ने इंटरसेप्ट किया। असलम ने गेंद छीन ली मंसूर जूनियर से, लेकिन असलम का फाउल लिया अंपायर ने, और यह फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तार को, जिन्होंने हिट लगाया, पास दिया अख्तर रसूल को, अख्तर रसूल ने, और गेंद भारत के डी में बाएं तरफ जहां पे चौकर ने वहां पे पहुंच गया अब्बास, अब्बास भारतीय डी में, और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में, और यह खेल खत्म। भारत 2-1 जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। और ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूँ। 2-1
0: कुआलालंपुर में खेले गए उस ऐतिहासिक फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर भारतीय टीम ने पहली और अब तक की अपनी एकमात्र विश्व कप ट्रॉफी जीती थी। उस ऐतिहासिक जीत की यादें आज भी भारतीय हॉकी प्रेमियों के दिलों में ताजा हैं। सुनते हैं उस स्वर्णिम अभियान के नायक और 1975 विश्व कप फाइनल में निर्णायक गोल करने वाले महान खिलाड़ी अशोक कुमार से।
2: उस दौर को वाकई में एक जो हमको हमारे देश को वो जीत मिली थी 1975 की, यदि मैं कहूँ कि वो एक ऐसी ऐतिहासिक जीत थी जिसको अगर हम इस नजरिए से देखें और लोगों ने उसको आंकलन किया भी है, जो 1936 का अगर मैं आपको कई साल कई बरस पहले ले जाऊं तो वो मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में उनकी टीम के अगेंस्ट में जो मैच हिटलर की टीम और जो टीम ने खेला था, जिसमें भारत ने इंटरवल तक एक गोल से बराबर रहने के बाद सेकेंड हाफ में 8-1 से विजय हासिल की थी, उन दो पैमानों को हमेशा याद करके देखा जाता है भारत की हॉकी को, और वो है 1936

0: और 1975 वर्ल्ड कप कुआलालंपुर जिसमें भारत की टीम ने पाकिस्तान के साथ फाइनल मैच में 2-1 से जीत हासिल कर देश सम्मान को उन मेडल्स को और हॉकी को उस खेल को ऊंचा उठाया था। और मुझे भी थोड़ा गर्व होता है इस बात का कि वो जो विक्ट्री था जिसका जीत का गोल था वो गोल मेरी हॉकी से हुआ, तो मुझे उस क्षण और पल का मुझे एहसास है और मैं उसको अपने दिल दिमाग में रखता हूँ कि उस जीत में जो भारत को मिली और भारत ने जीता था वर्ल्ड कप उसमें थोड़ा सा योगदान मेरा भी था।
1: उस जीत ने केवल एक खिताब नहीं दिलाया, उसने करोड़ों भारतीयों को ये विश्वास दिया कि जब इरादे बुलंद हों तो दुनिया की सबसे कठिन चुनौती भी छोटी पड़ जाती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों ने एक बार फिर उम्मीद की नई किरण जगाई है। टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक, पेरिस ओलंपिक में लगातार दूसरा कांस्य, राजगीर में एशिया कप का शानदार खिताब और उसके बाद विश्व की दिग्गज टीमों के विरुद्ध आत्मविश्वास से भरे प्रदर्शन, इन उपलब्धियों ने ये संकेत दिया कि भारतीय हॉकी फिर उसी दिशा में बढ़ रही है जहां कभी उसका स्वर्णिम साम्राज्य हुआ करता था। अब इस नए अभियान की कमान एक ऐसे खिलाड़ी के हाथों में है जो अपनी तेज ट्रैक फ्लिक, आक्रामक नेतृत्व और शांत स्वभाव के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है, हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन संगम नजर आ रही है। रक्षा पंक्ति में अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय और सुमित जैसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। मिडफील्ड में मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद जैसे अनुभवी नाम खेल की गति को नियंत्रित रखने की क्षमता रखते हैं। वहीं आक्रमण में मनदीप सिंह, सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह, अभिषेक और शिलानंद लाकड़ा जैसे खिलाड़ी किसी भी मजबूत रक्षा पंक्ति को भेदने का इरादा रखते हैं। गोलपोस्ट की जिम्मेदारी मोहित एचएस और सूरज करकेरा के कंधों पर होगी, जिनसे टीम को निर्णायक मौकों पर मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। यानी अनुभवी खिलाड़ियों के मार्गदर्शन के साथ युवा प्रतिभाएं भी इस विश्व कप में अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उनके लिए टूर्नामेंट अपने सपनों को साकार करने और तिरंगे का मान बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है। आइए सुनते हैं भारतीय टीम के युवा फॉरवर्ड शिलानंद लाकड़ा का इस विश्व कप को लेकर क्या कहना है।
2: जितना भी हॉकी प्लेयर्स हैं, सभी का हॉकी प्लेयर्स लोग का ड्रीम होता है कि वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करें, तो वो सपना मेरा भी था। मैं इस अपॉर्चुनिटी को मैं 100% दूंगा इस वर्ल्ड कप। और जो ट्रेनिंग का जो बात है, जो मेंटेलिटी का जो बात है, वो ये है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी सर के बारे में काम कर रहे हैं, पेनल्टी कॉर्नर के बारे में काम कर रहे हैं। मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने आप की हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें मैं अपने आप पे ज्यादा फोकस हूँ कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ टीम के लिए, उसके बारे में अपने आप को प्रिपेयर करना।
1: लेकिन केवल मजबूत टीम होना ही पर्याप्त नहीं होता, विश्व कप जीतने के लिए हर मुकाबले में धैर्य, निरंतरता और दबाव में सही फैसले लेने की क्षमता सबसे बड़ी कसौटी बन जाती है। और इस बार चुनौती इसलिए भी बड़ी होगी क्योंकि FIH हॉकी विश्व कप 2026 नए प्रारूप के साथ खेला जाएगा, यानी शुरुआती ग्रुप मुकाबलों से आगे तक का सफर पहले की तुलना में अधिक कठिन, अधिक रणनीतिक और अधिक रोमांचक होने वाला है। वर्षों से भारतीय हॉकी की रीढ़ रहे मिडफील्डर मनप्रीत सिंह इस चुनौती को अच्छी तरह समझते हैं। आइए सुनते हैं इस विश्व कप को लेकर उनके विचार।
2: ग्रुप काफी अच्छा है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इनके साथ मैचेस खेल चुके हैं, ठीक है। रिसेंटली जो हमारी प्रो लीग के मैचेस थे उसमें हम लोग इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों टीमों के साथ खेले थे, वेल्स के साथ नहीं खेले हैं, बट उन दोनों के साथ काफी अच्छे मैचेस रहे, काफी कुछ सीखने के लिए मिला कि क्या उनके प्लस पॉइंट है, क्या उनकी वीकनेस है, कहाँ पे हम लोग उनको हर्ट कर सकते हैं, कि हम लोग कैसे और गोल मार सकते हैं, तो वो काफी अच्छा रहा हमारे लिए। और वर्ल्ड कप में ऐसा है कि हमारा एक पर्सनल ये रहेगा कि हाँ, कि किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि भले जो अभी कैसा भी हो हम लोग अपना हर मैच में पूरा बेस्ट करें। टीम का माइंडसेट यही है कि हाँ, कि जैसे हम लोगों ने लास्ट ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस दिया था वैसे, और बिलीव भी है क्योंकि जिस हिसाब से टीम अपना खेलती आ रही है तो काफी बिलीव है कि हम लोग इस बार कर सकते हैं। और यही रहेगा कि हाँ, कि अपना हर मैच में बेस्ट करें, किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट ना करें, और जिसके साथ भी मैच हो अपना बेस्ट दे के निकले और जीत के निकले बाहर। और वेल्स काफी अच्छी टीम है, तो यही रहेगा कि हाँ, कि जो हमारी अच्छी चीजें हैं, जैसे हम लोग काफी अच्छे प्लेंटी कॉर्नर में अच्छे हैं, तो उसको कंटिन्यू करेंगे, उस दिन जितने भी हमें चांस मिले हम लोग उसको गोल में कन्वर्ट करें। और काफी बड़ा दिन है हमारे लिए उस दिन, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा मैच है उनके साथ, तो यही रहेगा कि हाँ, कि हम लोग अपने देशवासियों को वो जीत के साथ दें। अगर ऑनेस्टली बात करें सर, हमारा यही रहेगा कि जो हम लोगों ने अभी लास्ट दो मैच जैसे खेले हैं वैसे खेलेंगे तो हम लोग उनको बीट कर सकते हैं।

0: हमें इमोशनल नहीं होना है, जो हमारा गेम स्ट्रक्चर रहेगा, जो गेम प्लानिंग हम लोग उस दिन के लिए करके जाएंगे तो उसको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि एक हॉकी टीम के में सभी को अपना 100% देना हुआ उस दिन, क्योंकि वर्ल्ड कप है, वो भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। और हमारा यही रहेगा कि हम लोग अपना डिफेंस स्ट्रांग रखें, तो उनके साथ जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम लोग उसको गोल में करें।
1: तो आखिर भारत का सफर किस मुकाबले से शुरू होगा, किस दिन होगी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से टक्कर, किन टीमों से महिला टीम की चुनौती होगी और नया प्रारूप फाइनल तक पहुंचने का रास्ता कैसे तय करेगा, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा हॉकी विश्व कप 2026 में, जहां केवल विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीमें ही नहीं बल्कि उनके वर्षों का परिश्रम भी आमने सामने होगा। इस बार विश्व कप और भी विशेष है, पहली बार पुरुष और महिला दोनों विश्व कप का आयोजन एक साथ किया जा रहा है। 15 अगस्त से 30 अगस्त तक चलने वाला यह महाकुंभ बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। विश्व हॉकी की 32 सर्वश्रेष्ठ टीमें 16 पुरुष और 16 महिला विश्व चैंपियन बनने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। मुकाबला दो प्रतिष्ठित स्टेडियमों वैगनर हॉकी स्टेडियम एम्स्टलवीन और बेल्फियस हॉकी एरिना वेवरे में खेले जाएंगे। 15 अगस्त से शुरू होकर आने वाले 15 दिनों तक दुनिया की नजरें इन्हीं दो मैदानों पर टिकी रहेंगी, जहां हर पास, हर टैकल, हर गोल और हर बचाव इतिहास का हिस्सा बनने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार केवल मेजबानी ही नहीं बदली, विश्व कप का प्रारूप भी बदला है। यही नया प्रारूप इस संस्करण को पहले से कई अधिक चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बना देता है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 16-16 टीमों को 4-4 पूलों में बांटा गया है। प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की बाकी 3 टीमों से एक एक मुकाबला खेलेगी। इसके बाद प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें अगले चरण में प्रवेश करेंगी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, पहले की तरह सीधे क्वार्टर फाइनल नहीं होंगे। अब दूसरे चरण में क्वालिफाई करने वाली 8 टीमों को 2 नए समूहों में विभाजित किया जाएगा। पहले चरण में अपने साथ क्वालिफाई करने वाली टीम के विरुद्ध प्राप्त परिणाम लेकर टीमें आगे बढ़ेंगी और शेष 2 नए प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करेंगी। यानी खिताब की दौड़ में बने रहने के लिए हर मैच, हर अंक और हर गोल का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। दूसरे चरण के बाद दोनों नए समूहों की शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। इसके बाद विजेता टीमें विश्व चैंपियन बनने के लिए फाइनल में आमने सामने होंगी, जबकि हारने वाली टीम कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेगी। यानी इस बार केवल शानदार शुरुआत करना ही काफी नहीं होगा, पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना ही विश्व कप जीतने की सबसे बड़ी शर्त होगी। भारत के लिए ये चुनौती आसान नहीं है। पुरुष वर्ग में भारतीय टीम को ग्रुप डी में रखा गया है। इस ग्रुप में भारत के साथ इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स जैसी टीमें मौजूद हैं। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के विरुद्ध करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को विश्व के शीर्ष टीमों में शुमार इंग्लैंड से मुकाबला होगा और फिर 19 अगस्त को वो तारीख जिसका इंतजार केवल भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी हॉकी दुनिया करती है, भारत बनाम पाकिस्तान। 2 पड़ोसी देश, 2 समृद्ध हॉकी परंपराएं और विश्व कप का वो मुकाबला जिसकी गूंज हमेशा सीमाओं से कहीं आगे तक सुनाई देती है। हर बार ये मुकाबला केवल अंक तालिका तक सीमित नहीं रहा बल्कि करोड़ों खेल प्रेमियों की भावनाओं से भी जुड़ा रहा है। हालांकि इस बार भारत की नजरें केवल इस एक मुकाबले पर नहीं होंगी, लक्ष्य है ग्रुप चरण में निरंतर प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में पहुंचना और फिर 5 दशक पुराने अधूरे सपने को पूरा करने की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाना। उधर भारतीय महिला टीम भी एक नए विश्वास के साथ विश्व कप में उतर रही है। महिला टीम को भी ग्रुप डी में जगह मिली है, जहां उसका सामना चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 16 अगस्त को चीन के विरुद्ध करेगी। इसके बाद 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका और 20 अगस्त को इंग्लैंड से मुकाबला होगा। भारतीय महिला टीम की कमान एक बार फिर सलीमा टेटे के हाथों में होगी। अपनी तेज गति, बेहतरीन बॉल कंट्रोल और नेतृत्व क्षमता के लिए पहचानी जाने वाली सलीमा के साथ मिडफील्ड में निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, नेहा और दीपिका सोरेंग जैसे खिलाड़ी टीम को संतुलन और मजबूती देंगे। गोल पोस्ट की जिम्मेदारी अनुभवी सविता और बिच्चू देवी खरीबाम संभाल।

हिनी ईद एक स्वहिलिया आकाशवाणी हम जम्बो वस्ली वे टू अफ्रीका मशवी के नमहाली पेंगी ने पोपोटे अम्बा को ईदाई नसिकी का टू नटंगाजीनी क्वेनिक्लो हार्ट्स एल्फू कोमीना टीसा मिया टीसा नाम सीनी यानी मीटा बैनी कोमीना सीटा व पेंडवा वस्कलीजाजी सासा टू नवाले टेनी की पिंडी मालूम सेक्टर जाफिया नामती बाबू कटिकांजिया इंडिया

0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार,
1: भाई जी राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: गिलाहापुर का रंगन नए बांध से घनश्याम बोल रहा हूँ सर।
0: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज के कलाकार तुम सागर की
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: नाम बोल दो तो है?
0: हाँ बोल दीजिए।
1: मेरी बहन है ज्ञानवती अनंती, प्रधान जी गहना गाँव के सुनने वालों सबको राम राम।
0: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर रुस्तम सागर से ये देशभक्ति रागनी।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मोहल्ला दौज वाला शिकारपुर बुलंद शहर से बबली कुमार प्रजापति बात कर रहा हूँ।
0: बबली भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज हमें बिशन सिंह की आवाज में देशभक्ति की रागनी सुनवा दीजिए।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: और हमारे परिवार का नाम नोट कर लो जी। पत्नी पुष्पा देवी, लड़की डॉली कुमार, लड़का मोनू कुमार, लड़की पूजा रानी, लड़का छोटा भीम और शीशपाल अकेला है, अनवर बिहारी जी और जयप्रकाश जी। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं गांव चौधरी वास से राजू अग्रवाल।
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: किशन सिंह की आवाज में देशभक्ति की रागनी सुना दो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: बच्चे हैं जी, केशव चरण दास रेखा।
0: हेलो ग्राम संसार।
3: राम साहब,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
3: खुर्जिया उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा।
0: अरोड़ा साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज बिशन सिंह को सुनवा देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा भी सुनेंगे मेरे साथ।
0: बिल्कुल, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार, राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: विनोद कुमार प्रजापत बोल रहा हूँ जी, गांव जोजू कला से, तहसील डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी से।
0: विनोद भाई, कार्यक्रम में स्वागत है, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: आज विशन सिंह की आवाज में सुनवा दो अच्छा सा कोई।
0: देशभक्ति गीत
4: जी?
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो ग्राम संसार, सती भाई नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मैं भूकंत शरण बोल रहा हूँ, ग्राम तरारा, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा से।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: जी बिशन सिंह को सुनवा लेना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: कुछ नाम है एक दो, सचिन कुमार हैं जी और बीना कुमारी हैं।
0: हेलो ग्राम संसार।
6: राम राम साहब।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: हवलदार जयप्रकाश, ग्राम पाठशाला बुलंद शहर से बोल रहे हैं साहब।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: बिशन सिंह को सुनवा दीजिए साहब, नाम नोट कर ले हो।
0: जी कराएं।
6: करण, खुशी, नंदनी, राधिका, प्रतिज्ञा, राम राम साहब।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
7: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुचाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश जी।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: आज बिशन सिंह जी से कोई देशभक्ति गीत सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
7: कुछ नाम है जी, जयपाल सिंह अध्यक्ष, मास्टर ब्रह्म सिंह, जगदीश मोटा बादलपुर, मास्टर फुंदन सिंह, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, गर्व गुजर और आरव भाटी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर विशन सिंह से ये देशभक्ति रागनी।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731 और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम,
1: राम।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आपने आनंद लिया कार्यक्रम ग्राम संसार का। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में उभर रहे नए क्षेत्र युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है।

0: में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा। इससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप्स के साथ कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी पर भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
1: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। यमन में हौसी विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हौसी विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चलेहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
0: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं हूं अमित तेवतिया
4: और मैं हूं नीरा बख्शी।
3: मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम किसान वाणी में आपके लिए होती है विषय संबंधित जानकारी।
4: बिल्कुल, और जानकारी के साथ साथ होता है मनोरंजन भी,
3: और मनोरंजन के साथ साथ ऐसी योजनाएं जिसका लाभ सीधे सीधे हमारे किसान भाइयों तक पहुंचता है। मित्रों, ऐसी ही एक योजना है ई नाम, अर्थात राष्ट्रीय कृषि बाजार, और भारत सरकार का यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिस पर देश की विभिन्न कृषि उपज बाजार समितियां और मंडियों को जोड़कर एकीकृत बाजार बनता है।
4: और इस पोर्टल के माध्यम से हमारे किसान भाई बहन घर बैठे अपनी उपज का सही भाव जान सकते हैं और पारदर्शी तरीके से सही कीमत पा सकते हैं।
3: ये भी आपको बता दें कि यह पोर्टल देश भर के किसानों को ऑनलाइन माध्यम से अपनी उपज बेचने की सुविधा देता है। और जब बात आती है सुविधा की, तो कार्यक्रम किसान वाणी में हम आमंत्रित करते हैं विशेषज्ञों को, डॉक्टर्स को या वैज्ञानिकों को, जो समसामयिक विषय पर प्रश्नों के जवाब देते हैं जिसका लाभ हमारे किसान भाई बहनों को मिलता है। आज का विषय है उत्पादन बढ़ाने में केंचुआ खाद का महत्व, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सीमा सांगवान को। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
5: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: डॉक्टर, सबसे पहला प्रश्न वो ये है कि केंचुआ खाद क्या है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
5: जी हाँ, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि केंचुआ खाद, जिसे हम बहुत कॉमनली वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये एक बहुत उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद है जिसे केंचुओं की सहायता से गोबर, फसल अवशेष, पत्तियां तथा अन्य जैविक पदार्थों को सड़ाकर तैयार किया जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ साथ अनेक सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो बहुत ही लाभकारी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यही कारण है कि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाली सबसे प्रभावशाली जैविक खादों में से एक माना जाता है।
3: बिल्कुल, जब बात आती है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, लेकिन वहीं डॉक्टर साहब, किसानों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या फसल उत्पादन में यह सहायक होगी?
5: बिल्कुल सहायक होगी। केंचुआ खाद पौधों को आवश्यक पोषक तत्व, जो हम बोलते हैं ना, उनको धीरे धीरे और लंबे समय तक प्रदान करती है। इसी वजह से इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है एक जब हम इसको अपनी फसलों में डालेंगे। इससे पौधों की जड़ों का विकास जो है वो बहुत बेहतर होता है, अंकुरण जो है वो भी अच्छा होता है और पौधा अधिक स्वस्थ और मजबूत बनता है। साथ ही साथ यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी और उसकी संरचना में भी बहुत सुधार करती है, जिससे पौधा जो सूखे जैसी परिस्थिति अगर आ जाए तो उसको बहुत आसानी से वो सहन कर पाते हैं। इन्हीं सभी कारणों से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में ही वृद्धि होती है।
4: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं कि केंचुआ खाद अकेली ही इतनी सक्षम है?
5: केंचुआ खाद मिट्टी के लिए तो बेहतर है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन अधिकतर फसलों में सर्वोत्तम परिणाम अगर आपको लेना है तो एक संतुलित उपयोग करना बहुत जरूरी है। इस संतुलित उपयोग में जो रासायनिक खादें हैं और उसके साथ साथ अगर हम इन जैविक खादों का इस्तेमाल करें, केंचुआ खाद का इस्तेमाल करें, तो पोषक तत्वों की उपलब्धता बहुत अच्छे से बढ़ाई जा सकती है और उर्वरकों का जो उपयोग है वो दक्षता के सुधार में होता है और उपयोग भी हमें अधिक मिलता है, जो उत्पादन शक्ति है वो बहुत बढ़ती है। इसीलिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है।
3: तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात रही कि हम केंचुआ खाद के प्रयोग से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन वहीं जब बात आती है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव की, तो किस प्रकार से यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और पर्यावरण के लिए क्या इसके प्रभाव होंगे?
5: जी हाँ, केंचुआ खाद मिट्टी में जैविक कार्बन को बढ़ाती है। जब हम इसे डालेंगे तो जो ऑर्गेनिक कार्बन वो बढ़ेगा और उसके बढ़ने की वजह से जो लाभकारी और सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या में बहुत वृद्धि होती है। इससे मिट्टी की संरचना, वायु संचार और जल धारण की क्षमता बहुत बेहतर होती है। इसके नियमित उपयोग के कारण रासायनिक उर्वरकों पर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाती है, और जब वो कम होगी तो आप समझ सकते हैं कि वो डायरेक्टली लिंक करेगा कि हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी, ताकि पर्यावरण का जो प्रदूषण होगा वो घटेगा और खेती की अधिक टिकाऊ एवं जलवायु अनुकूल बन जाएगी जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे।
3: यानी कि मिट्टी की संरचना में सुधार होगा, पर्यावरण पर सीधा सीधा इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे किसान भाई बहन आज भी ऐसे हैं कि जो रासायनिक खाद का प्रयोग कर

0: लेकिन जब कार्यक्रम सुनेंगे तो निश्चित ही मन होगा कि क्यों ना हम भी कैचुआ खाद का प्रयोग अपनी खेती में करें। तो कैचुआ खाद हमारे किसान भाई बहन कैसे बना सकते हैं और इसे व्यवसाय के रूप में कैसे धारण किया जा सकता है?
1: अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं कि इसको बनाना, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है,
0: जी
1: तो केचुआ खाद अगर वो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको एक छायादार जगह का चयन करना चाहिए, जहां पे हवा आ रही हो और छायादार हो, जहां डायरेक्ट धूप ना लगे। इसके बाद उनको एक टैंक या गड्ढा कुछ बनाना चाहिए, जिसमें सबसे पहले भूसे की परत या सूखी पत्तियों की एक परत बनाई जाएगी। फिर उसमें अच्छी तरह से सड़ा हुआ गोबर, जितने भी अवशेष हमारे पास हैं, चाहे वो रसोई से निकलता है या फिर जो हमारे फसलों के अवशेष हैं या पेड़ों से जो पत्तियां गिरती हैं या फल फ्रूट जो भी खराब हो जाए, वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। और उनको परतों में बिछाया जाता है सड़े हुए गोबर के साथ। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें उपयुक्त प्रजाति डाली जाएगी केचुआ की। तो केचुए की जो प्रजाति सबसे महत्वपूर्ण और बहुत लंबे समय से इस्तेमाल होती है खाद बनाने के लिए, तो वो है आयसेना फेटिडा। तो उसका भी एक प्रपोर्शन है, एक रेशो अनुपात कहूंगी मैं, कि अगर 100 क्विंटल आपको खाद बनानी है तो उसमें आपको 1% उसका 1% आपको ये केचुआ लेना होगा, मतलब 1000 से 1500 आपको केचुए लेने होंगे और उनमें छोड़े जाते हैं। उसके बाद बेड में जो नमी है, अगर खाद को बहुत अच्छे से बनाना है ताकि जो केचुए हैं बहुत अच्छे से अपना काम करें, तो उसमें एक नमी बरकरार रखना बहुत जरूरी है, जो 60 से 70% के बीच में ये नमी बरकरार रखी जाती है। और इससे सीधी धूप और वर्षा से हमेशा बचाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया तो ये मर जाएंगे, क्योंकि नीचे दब जाएंगे और वो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होने की वजह से वो मर जाएंगे। तो लगभग जब हम ये क्रिया करते रहते हैं और बीच बीच में जब इसमें पलटवार करते हैं, इसको ऊपर से नीचे तक घुमाते हैं, तो 45 से 50 दिन के अंदर ये केचुए जो है इस जैविक खाद को भुरभुरी गहरे भूरे रंग की गंधहीन खाद में बदल देंगे, जो कि उसका साइन भी है कि हाँ ये अब तैयार हो गई है। फिर उसको छानकर अलग कर लिया जाता है और केचुओं को पुनः हम अगली खाद बनाने के लिए इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हम कह सकते हैं कि मौखिक रूप से हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसान भाई बहन इसकी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन जब बात आती है कि क्या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं या कृषि अनुसंधान संस्थान हैं, कहीं से सीधे हमारे किसान भाई बहन इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं, देख सकते हैं
2: व्यवसाय के रूप में,
0: जी उन्हें तो अच्छा अनुभव इस चीज का होगा, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे?
1: मतलब जिस तरह मैंने बताया कि उत्पादन शक्ति तो बढ़ेगी ही, लेकिन इससे किसान भाई पैसा भी कमा सकते हैं अगर वो इसको बनाना सीखें, क्योंकि आजकल कहीं पे भी देखेंगे तो वर्मी कंपोस्ट के पैकेट बिकते हैं, बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप सहायता समूह जो बनाते हैं, वो लोग भी इकट्ठा होकर इसको बना सकते हैं और इसको बेचा जा सकता है, क्योंकि इसको बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है और इसमें लागत भी बहुत ज्यादा कुछ ऐसी नहीं लगती है। आप सोचेंगे तो सिर्फ आपको केंचुए ही होंगे जो खरीदने पड़ेंगे, अदरवाइज और सारी चीजें आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ केंचुए वर्मी वॉश और वर्मी कंपोस्ट यूनिट की भी स्थापना, मतलब क्रिएट की जा सकती है। अगर कोई केवीकेस है, कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर काम करता है, अगर किसान भाई पूछे तो वो इनकी सहायता भी करेंगे और उनको समझाएंगे कि किस तरह से ये सब तैयार किया जाएगा और उनको वो प्रशिक्षण और वो ट्रेनिंग दी जा सकती है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे लगातार कार्यक्रम में बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
4: पुतला बोल रहे।
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं और चखम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: मित्रों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी और हमारे साथ लगातार विषय पर बनी हुई हैं डॉक्टर सीमा सांगवान, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से।
6: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे केचुआ खाद की, तो सबसे पहले एक चीज और, जब हम इसको बना रहे हैं, जैसे आपने कहा कि गहरे भूरे रंग में हो जाए तो ये मान लेना चाहिए कि तैयार हो गई है, इसके अलावा और क्या पहचान है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके बनाने वक्त?
1: पहचान तो इसकी यही है कि वो गहरे भूरे रंग की होगी और वो बहुत भुरभुरी रंग की तैयार हो जाएगी और गंधहीन होगी, मतलब शुरुआत में इसमें बहुत ज्यादा गंध आती है, लेकिन हाँ जब वो खाद तैयार हो जाएगी तो वो गंधहीन हो जाएगी और वो पाउडर की तरह भूरे रंग की भुरभुरी हो जाएगी।

0: इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हाँ ये तैयार हो गई है, और अप्रोक्सीमेट टाइम भी हम समझ सकते हैं कि 45 से 50 दिन लगेंगे, 55 दिन लगेंगे जिसमें ये तैयार हो जाएगा। सावधानियों की अगर बात करें तो सबसे पहली सावधानी आपको यही ध्यान रखनी है कि कोई ऐसी जगह ना हो जहां पे धूप डायरेक्टली लग रही है, क्योंकि आप समझेंगे कि केचुआ जो है बहुत ज्यादा तापमान अगर बढ़ गया तो वो मर जाएंगे। इसी तरह से जो सड़ी हुई हमने गोबर इस्तेमाल किया उसमें भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो काम करते हैं, जो इसको सड़ाने में हेल्प करते हैं, तो उनका सबका भी एक उचित तापमान ही है जहां पे वो काम कर पाएंगे। तो अगर वो ज्यादा बढ़ जाता है किसी वजह से तो इससे वो केंचुए भी मर जाते हैं और सूक्ष्म जीव भी मरेंगे, तो उससे हमें बचाना है। दूसरा है कि हमें इसको छायादार जगह पे रखना है जहां पे डायरेक्ट बारिश का पानी ना हो, ऐसा ना हो कि पानी से भर रहा है वो। हमें नमी तो बरकरार रखनी है लेकिन इससे ऊपर भी नहीं होना चाहिए, वो भी सही नहीं है क्योंकि उससे एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है और उसमें भी केंचुए मर सकते हैं। तो सबसे बड़ी सावधानियां तो ये दो ही हैं।
1: यदि हमारे किसान भाई व्यावसायिक रूप से केचुआ पालन बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें किसान को सीधा सीधा कोई आर्थिक लाभ मिले?
0: देखिए, अगर किसान जो FPO और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते
1: जी
0: हैं अगर उनकी मदद से वो करते हैं तो हाँ, बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जो उनकी जरूर मदद करेंगी। और वो क्योंकि अब तो सरकार ही खुद ही बता रही है कि आपको संतुलित खादों का उपयोग करना है, रासायनिक खादों पे हमें अपनी निर्भरता है वो कम
1: कम
0: करनी
1: करनी
0: है,
1: है।
0: तो उसका यही उपाय है कि इस तरह से ग्रुप बना के इन व्यवसाय में अपना हाथ आजमाएं और अपने साथ साथ और गांव वालों को भी समझाएं अपने साथ।
1: डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ एक बात और आई थी कि प्रजाति चुनने की, तो जैसे हम प्रजाति जब चुनते हैं उस वक्त क्या बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और किस प्रकार हम कहाँ कहाँ से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं?
0: एसेना फोर्टेटा तो आपको कहीं पे भी मिलेगा,
1: जी
0: यही एक मेन प्रजाति है जो इसमें इस्तेमाल की जाती है बहुत कॉमन तरीके से। इसके अलावा यूडिलस यूजेनिए भी है, एक और केंचुए का प्रजाति जो इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि एसेना फोर्टेटा ही है जो बहुत बड़े स्तर पे अगर आपको काम करना है तो बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट इसी केंचुए से मिलते हैं। और ये आप कहीं पे भी ऑनलाइन देखेंगे तो आपको ये प्रजाति और कहीं पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको बस अपना अनुपात देखना है कि कितनी खाद तैयार करना चाहते हैं उस हिसाब से आप खरीदिए। और सबसे अच्छी इसकी लाभकारी बात यह है कि एक बार खरीदा हुआ वो आपका बार बार इस्तेमाल होगा केंचुआ, ये इसी खाद से निकलेगा। आप जब ये खाद तैयार हो जाए तो उस केंचुए को अलग कर लीजिए छान के और उसको अगली खाद में डालिए, तो वो इस तरह से चलता रहेगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब,
0: बिल्कुल
1: यदि हम
0: अमित
1: बात करते हैं कि केचुआ का उत्पादन जब हम कर रहे हैं तो वहीं फसल का उत्पादन बढ़ रहा है, तो
0: जी,
1: किसानों को किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से आप इस विषय पर क्या संदेश देना चाहती हैं?
0: जी मेरा सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि यदि हमें अधिक उत्पादन के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी लंबे समय तक अगर बनाए रखना है तो जैविक खाद और रासायनिक पोषक तत्वों का एक बहुत संतुलित उपयोग है वो हमें अपनाना होगा। केचुआ खाद न केवल फसल की वृद्धि और उत्पादन में मदद करती है बल्कि मिट्टी को भी स्वस्थ बनाती है। इसलिए किसान भाई बहन जो भी इसे खेती में अपनाना चाहते हैं तो उसको अपना नियमित हिस्सा बनाएं, मतलब संतुलन के साथ आप ये जैविक खादों का भी इस्तेमाल करें, वर्मी कंपोस्ट बनाएं और वैज्ञानिक सलाह के अनुसार इसका उपयोग करें।
1: डॉक्टर साहब, अभी मानसून का समय चल रहा है तो ऐसे में कोशिश होती है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए वो कौन सा उचित समय रहेगा जहां से वो केचुआ पालन शुरू कर दे और उनका जो उत्पादन अच्छा रहेगा,
0: बिल्कुल
1: चाहे वो केचुए का रहे या उनका खाद का रहे या फसल उत्पादन पर, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े।
0: जी हाँ, तो जैसे ये अभी तो बहुत बारिश का समय है तो अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं वो, और जैसे ही बारिशें ये खत्म होंगी उसके बाद वो अपना उत्पादन इसी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जब सर्दी का मौसम आ जाएगा तो भी आप समझ सकते हो कि जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है जिसमें ये घटन होता है, सारी प्रक्रिया होती है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है क्योंकि
1: जी
0: टेम्परेचर जो है थोड़ा नीचे गिर जाता है। तो उस वजह से मैं ये कहूंगी जो बारिश से पहले का समय था वो भी बहुत उचित था, जिसमें सही गर्मी थी तो उसमें भी बहुत अच्छे से बनाई जा सकती है। और जो जस्ट इसके बाद का होगा सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये बहुत अच्छा समय होगा जिसमें आप ये केचुआ खाद बना सकते हैं अपने घरों में और बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: यानी हम उचित समय की अगर बात करते हैं
0: जी
1: तो वर्षा से पहले और
0: हाँ,
1: वर्षा
0: और
1: के
0: वर्षा
1: बाद
0: के
1: का।
0: बाद बिल्कुल,
1: जी
0: क्योंकि वर्षा के डायरेक्ट उससे तो हमें बचाना होगा इसको कि पानी वो डायरेक्ट ना गिरे कहीं पे भी, तो उसी के लिए अगर आपके पास बहुत अच्छा यूनिट नहीं है और वो घर पे ही ये सब करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा वर्षा का ये टाइम अपना वो अवॉइड करना होगा उससे पहले और उसके बाद।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो केचुआ खाद या फिर दूसरी खाद जो इस्तेमाल की जाती है फसलों में, उसका क्या प्रभाव रहता है?
0: देखिए जैविक खाद की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी तरह की जैविक खादें हैं, तो ये तो एक पर्टिकुलर हम कह देंगे कि जो केचुआ खाद है एक तरह की खाद है, और जो कि बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि इस खेत में ही ये पड़ेगा या इस फसल में ही ये पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये किसी भी तरह की फसल में डालोगे तो ये अपना नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश के साथ साथ जो और अन्य पोषक तत्वों की भी जो फसल को जरूरत होती है तो वो इसको देंगे। लेकिन हाँ, इसके अलावा हमारे पास बहुत

0: तत्व की कमी है और ये डाल दें, तो वहां पे उसको अलग अलग लेना पड़ेगा, उसको नाइट्रोजन के लिए अलग लेना पड़ेगा, फॉस्फोरस की कमी है तो उसके लिए अलग जैविक खाद लेना पड़ेगा, और इसी तरह से पोटाश की कमी है तो अलग लेना पड़ेगा, जिंक की कमी है तो अलग लेना पड़ेगा, इस तरह के सारे विकल्प हमारे पास है। लेकिन केचुआ खाद इस वजह से बेहतर मानी जाती है कि एक ही तरह की खाद जो कि बहुत आसानी से हम अपने घरों में बना सकते हैं, हमारी महिलाएं भी अपने ही रसोई से जो कचरा हमारा बनता है तो उस हरे कचरे को जिसमें बहुत सारे जो फल हैं उनका छिलका होता है वो होता है, सब्जियां होती हैं, कुछ सड़ी गली चीजें भी होती हैं, ये सब इस्तेमाल करके वो महिलाएं भी घरों में ये खादों को तैयार कर सकती हैं। मतलब इसका महत्वपूर्ण इसीलिए मैं कह रही थी कि बेहतर क्यों है और खादों से, क्योंकि एक ही तरह की खाद डाल के आपको वो सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे जो हमें अगर दूसरी जैविक खादें यूज करनी पड़े तो शायद अलग अलग डालना पड़े, तो ये एक ही तरह की खाद से वो हर पोषक तत्व खाद डालने की वजह से जमीन में आ जाएगा, हमारी मिट्टी में आ जाएगा। और दूसरा कि जब ये कार्बन शक्ति जब मिट्टी की बढ़ाता है तो जो सूक्ष्म जीव जो मैं आपको बात कर रही थी ना कि हमें अलग से डालना पड़ता है, राइजोबियम हुआ, एजोटोबैक्टर हुआ, पोटास सोलबलाइजर हुआ, तो ये सूक्ष्म जीव कार्बन कंटेंट बढ़ने की वजह से जो वर्मी कंपोस्ट हम डालेंगे, केचुआ खाद हम डालेंगे, उसकी वजह से वो अपने आप ही पनपने लगते हैं। तो वही काम जो हम बाहर से डाल के करते हैं वही काम वो सूक्ष्म जीव अपने आप वो पनपेंगे और अपने आप ही वो होता है ना कि एक इकोसिस्टम इस तरह से तैयार होता है जिसमें सभी मिलजुल कर काम करें और वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाएंगे, फसल की शक्ति भी बढ़ाएंगे और फसल की जो उत्पादन होगा वो भी बढ़ेगा, लागत बहुत कम होगी।
1: बिल्कुल, यानी कि जब केचुआ पालन की बात आती है तो हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं यह वरदान सिद्ध होता है। ऐसा क्यों?
0: क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हम समझेंगे ना कि क्या जरूरी क्या था केचुआ खाद बनाने में, तो वो गोबर जरूरी है। वो गोबर उन्हीं के पास होगा जिनके पास पशु होंगे,
1: बिल्कुल
0: उसी गोबर को वो इस्तेमाल कर सकते हैं खाद बनाने के लिए, अपनी ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए, क्योंकि यही वर्मी कंपोस्ट के इससे वो पैसा भी कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, डॉक्टर सीमा सांगवान आप कार्यक्रम में उपस्थित हुई, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
2: कार्यक्रम में अब समय है मनोरंजन का, तो क्यों ना एक लोकगीत सुनवा दें?
1: बिल्कुल, आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: मित्रों आप सुन रहे थे लोकगीत। मित्रों अब कार्यक्रम में समय है साप्ताहिक मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह। तो नीरा यदि बात करें वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए जो वैज्ञानिकों की सलाह है उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जिन्होंने सब्जी लगाई हुई है, तो जो कद्दू वर्गीय एवं अन्य सब्जियां हैं उनमें मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है क्योंकि वे परागण में सहायता करती हैं।
1: जी
0: इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें, कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें, साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें, वे सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें।
1: जी और इसी के साथ जो गेंदे के फूलों की पौध है उसे छायादार जगह पर तैयार करने की सलाह दी जाती है और जल निकास का उचित प्रबंध करें इसकी भी सलाह दी जाती है। और अगर हम फलों की बात करते हैं तो फलों के नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबंध करके इनकी रोपाई अति शीघ्र करने की सलाह दी जाती है।
0: बिल्कुल, तो ये है वैज्ञानिकों की ओर से कृषि संबंधी सलाह। मित्रों आजादपुर मंडी से कुछ फल एवं सब्जियों के भाव प्राप्त हुए हैं तो आपको बताते चलें, आलू का भाव 18 रुपया प्रति किलोग्राम है, प्याज 30 रुपया प्रति किलोग्राम, टमाटर 40 रुपये प्रति किलोग्राम रहा।
1: और इसी के साथ अगर हम फलों की बात करते हैं तो सेब का भाव रहा 200 रुपये प्रति किलोग्राम, केला 25 रुपये प्रति किलोग्राम, अमरूद 80 रुपये प्रति किलोग्राम। वहीं पपीते की बात करें तो पपीते का भाव रहा 30 रुपये प्रति किलोग्राम।
0: जी हाँ मित्रों अभी आप सुन रहे थे आजादपुर मंडी से प्राप्त मंडी भाव। अब कार्यक्रम में समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: आसमान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आपने सुना कार्यक्रम किसान वाणी। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। समय हो चला है 7:35 और ये वक्त है कार्यक्रम गजल और कव्वाली का। इस कार्यक्रम में मैं हूं आज आपके साथ तलत। किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं लेकिन, तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं लेकिन जबान में आंख नहीं होती और आंख में जबान नहीं होती। कई बार आप जो देख पाते हैं वो आप बयान नहीं कर पाते, और जो आप बयान कर पाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वो आप देख नहीं पाते। ऐसा ही कुछ अगली गजल में आप सुनेंगे।

खुदा महफूज रखे उसे हर एक बुरी नज़र से। और अगर ऐसी ही एक बात है तो फिर ये अगली कव्वाली आपके साथ है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अभी आपने कार्यक्रम सुना गज़ल और कव्वाली का। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। दिल्ली कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक के मसौदे को मंजूरी देकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ा नीतिगत बदलाव किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम में 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। दिल्ली पुलिस ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल से हर घर तिरंगा अभियान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।

0: जानते हैं हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की यह पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए मजबूत आधार का काम करेगी।
0: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्य क्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
0: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी कानूनी ढांचा तैयार करना है। उन्होंने कहा कि विधेयक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों और उनके ऑफ कैंपस सेंटर्स के लिए दिल्ली में स्थापित होने का रास्ता भी साफ करेगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि विधेयक में छात्रों के हितों की सुरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। लागू आरक्षण नीति के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम में 25% सीट दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी। दिल्ली मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने आज सिविक सेंटर में 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया। इसमें 17 स्पेशल एजुकेटर भी शामिल हैं। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की चिकित्सा जांच और स्वास्थ्य निगरानी के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को गति देना दिल्ली नगर निगम को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है तो काम कैसे होगा, नर्सिंग स्टाफ नहीं है तो काम कैसे होगा। इसलिए जरूरत है जिस रेशो में पेशेंट बढ़ रहे हैं उसी रेशो में फैसिलिटीज भी बढ़नी चाहिए। मुझे खुशी है आज यहाँ पे नियुक्ति दी जा रही है। ये एक मानवीय सोच इस नगर निगम की दिखाता है कि साधारण बच्चे नहीं, स्पेशल बच्चों के लिए भी सरकार काम कर रही है।
1: दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने इस अवसर पर कहा कि आज परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसमें नए नियुक्त कर्मचारी और अनुकंपा के आधार पर नियुक्त लोग शामिल हैं। महापौर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम उनके कर्मचारियों के कल्याण, सम्मान और अधिकारों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
3: दिल्ली नगर निगम के हेल्थ सेंटर्स, हमारे स्कूल्स सुरक्षित माहौल, एक बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर के साथ साथ बेस्ट टीचर्स के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। दिल्ली नगर निगम बिल्कुल मॉडल और ये जो पब्लिक स्कूल है उनके समकक्ष आकर खड़ा हो गया। निश्चित रूप से जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें नई योजनाएं लाकर नई बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर दिलशाद गार्डन के समीप स्थित कांवड़ सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांवड़ सेवा शिविर में निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों से संवाद कर उनकी यात्रा व व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली और सभी के मंगलमय, सुरक्षित और सफल कांवड़ यात्रा की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि किसी भी शिव भक्त व कांवड़ सेवा शिविर को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरकार की ओर से कांवड़ समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके तहत 20,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में 6 से 12 दिन तक संचालित होने वाले बड़े कांवड़ शिविरों को अधिकतम 15 लाख रुपए तक की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रावण मास में हजारों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कांवड़िया भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में पूजनीय और सम्मानीय है तथा इस वर्ष बड़ी संख्या में महिलाएं भी कांवड़ यात्रा में शामिल हो रही हैं।
5: जो है समय शिवमय हुई हुई है और सैकड़ों कांवड़ कैंप लगे हैं, हजारों कांवड़िए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दिल्ली राज्य पूरी मुस्तैदी के साथ में सभी कांवड़ लेके आने वाले शिव भक्तों का स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है।
4: दिल्ली सरकार द्वारा कांवड़ सेवा समितियों को वित्तीय सहायता, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात प्रबंधन, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार दिल्ली के सभी 13 जिलों में बाल भिक्षुक मुक्त दिल्ली, चाइल्ड बेगर फ्री अभियान शुरू करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य भीख मांगते पाए जाने वाले बच्चों की सुरक्षा करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। मुख्यमंत्री ने वीडियो के माध्यम से ये भी बताया कि बच्चों को जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर परिवारों की काउंसलिंग की जाएगी, उनकी मुश्किलों को समझा जाएगा और बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली की विधि विज्ञान प्रयोगशाला का दौरा किया। श्री सूद ने प्रयोगशाला के कामकाज, वैज्ञानिक आधारभूत संरचना, फॉरेंसिक जांच सुविधाओं और समग्र कार्यप्रणाली की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि निरीक्षण के बाद आधुनिक तकनीक, बेहतर संसाधनों और अधिक दक्षता के जरिए जांच प्रक्रियाओं को मजबूत करने के बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में विश्व बंधुत्व रक्तदान महाअभियान का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने आयोजित किया। इस अवसर पर श्री नवीन ने कहा कि रक्तदान के माध्यम से जीवन बचाने और युवाओं को नशे से दूर रखने हुए राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित बनाने का ये संकल्प मानवता की सच्ची सेवा का संदेश देता है।
6: कई बार थैलेसीमिया के कैंप में जाने का मौका मिला, मैं जब उन बच्चों को देखता था तो मुझे लगता था कि आखिर उनका दोष क्या है, पर कहीं ना कहीं प्रकृति ने उनसे उस दोष को उसके जीवन में डाल दिया। और जब रक्त की बात आती है और थैलेसीमिया के बच्चों को जो सहयोग रक्त दान के रूप में मिलता है, निश्चित रूप से एक आत्मसंतुष्टि मिलती है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में अवैध रूप से रह रहे 7 विदेशी नागरिकों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार खुफिया जानकारी और रिकॉर्ड्स की पड़ताल के जरिए पुलिस की टीमों ने 7 अफ्रीकी नागरिकों की पहचान कर उनका पता लगाया है। इनमें 5 नाइजीरियाई के और 2 घाना के नागरिक शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों से आगामी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराकर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर साझा करें। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने बच्चों को देश की स्वतंत्रता में किए गए लोगों के तप, त्याग और बलिदान के बारे में बताने की अपील भी की। स्वतंत्रता

0: दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय आज से 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित करेगा। आज वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई, इसमें दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की जा रही हैं। कल बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रस्तुति देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभक्ति के एक संगीतमय कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि 32 वायु सैनिकों और 8 अग्निवीर वायु की एक टीम ये प्रस्तुति देगी, इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू को आज अमृतसर के अजनाला में स्थित गुरुद्वारा गुरु का बाग में SGPC ने सम्मानित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने बताया कि अजनाला का यह गुरुद्वारा ऐतिहासिक स्थल है। यहां वर्ष 1922 में सरदार तेजा सिंह समुद्री के नेतृत्व में गुरु का बाग मोर्चा हुआ था। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये संघर्ष अनुशासित और अहिंसक प्रतिरोध का सशक्त उदाहरण है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय डाक विभाग डाक सेवा उपहार के अंतर्गत उपहार और पुरस्कार दे रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि भारतीय डाक का किसी भी डाक सेवा उपहार ऑफर पुरस्कार योजना या लकी ड्रॉ से कोई संबंध नहीं है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय कई जगह पर हल्की से तेज वर्षा हुई। आज का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। दिल्ली मंत्रिमंडल ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक के मसौदे को मंजूरी देकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम ने 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। दिल्ली पुलिस ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल से हर घर तिरंगा अभियान शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین اکرام، ہم لے کر حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام مشاعرہ۔ آپ کو شاعر حضرات سے روبرو کرائیں اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگست کا مہینہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ آئیے آپ کو تاریخ کے اوراق میں لیے چلتے ہیں جب غلامی کی زنجیریں ٹوٹی اور آزادی کی روشنی نے ہمارے وطن کو منور کیا۔ یہ وہ مہینہ تھا جب قربانیوں کی داستان نے حقیقت میں ڈھلی، جب شہیدوں کے لہو نے آزادی کا چراغ روشن کیا، اور جب خواب حقیقت بن کر ہمارے دلوں میں امید کی کرن بن کر جگمگانے لگا۔ ہم ان عظیم رہنماؤں کو آج خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس آزادی کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی پیش کی، جس کی وجہ سے آج ہم آزاد ہواؤں میں آزادی اور خود مختاری کے ساتھ اپنے خواب کو خود بن رہے ہیں اور جی رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، آزادی کا نام صرف خوشی نہیں بلکہ آزادی کی یادوں، قربانیوں اور خوابوں کے سفر کا نام ہے۔ یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی صرف ایک دن کا جشن نہیں بلکہ ایک عہد ہے، عہد وفا، عہد خدمت اور عہد قربانی۔ آئیے ہم بھی یہ عہد کریں کہ اپنے ملک عزیز کی بہتری کے لیے ہم پابند عہد رہیں گے۔ آئیے اب سنتے ہیں یہ خوبصورت مشاعرہ۔ تو سامعین، آج ہم نے مشاعرہ کی محفل آپ کے لیے اور صرف آپ کے لیے آراستہ کی ہے۔ آج اس محفل کی جو رونق ہیں ان میں تسلیم دانش،

0: सैफुद्दीन सैफ, जावेद नियाजी और अहमद नदीम मौजूद हैं। तो लीजिए समाअत कीजिए।
1: सामईन आदाब, आकाशवाणी के इस मुशायरे में आपका इस्तकबाल और खैर मकदम है। आज के हमारे जो मेहमान शोरा हैं उनमें जावेद नियाजी साहब, खाकसार अहमद नदीम, तस्लीम दानिश साहब और सैफुद्दीन सैफ साहब। आइए बाकायदा इस मुशायरे का आगाज़ करते हैं और शायर को दावत देते हैं जावेद नियाजी साहब को कि वह आएँ और अपना कलाम पेश करें।
2: मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, ग़ज़ल का मतला बतौर ख़ास पेश करता हूँ।
1: इरशाद, इरशाद,
3: इरशाद।
2: उस

0: गया। शेर पेश करता हूँ,
1: लौट
0: आओ जहाँ हो खुदा के लिए,
1: लौट आओ जहाँ हो खुदा के
0: लौट
1: लिए।

0: ये भी शेर पेश करता हूँ। है हर एक फूल सहमा हुआ आजकल,
1: है हर एक फूल सहमा हुआ
0: है
1: आज।

गजल का मतला पेश करता हूँ। मुश्किल से घबराओगे

0: कि ये भी शेर बतौर खास पेश
1: जी
0: करता हूँ।
1: शायर।
0: मुझको रुसवा करके तुम

0: बहुत
1: शुक्रिया।
0: बहुत बहुत।
2: तो ये थे जावेद नियाज़ी साहब, जो अपने सहरंगेज तरन्नुम से आप महसूस कर रहे थे। आइए अब खाकसार अहमद नदीम भी कुछ कलाम पढ़ना चाहता है।
0: अता जी,
2: गज़ल का मतलब हाजिर करता हूँ, एक मतलब और एक शेर सुन ले उसके बाद।
0: जी अता।
2: तीरा शबी में काकुले कातिल से जा मिले,
0: आह
2: तीरा शबी में काकुले कातिल से जा मिले, नागाह कैदो बंदो सलासिल से जा मिले।
0: कहने
1: कहने वाह।
2: और शेर सुने कि हम अपने इख्तियार में कब थे कि अब रहें,
0: वाह
2: हम अपने इख्तियार में कब थे कि अब रहें, लहरों से जा मिले कभी साहिल से जा मिले।
0: वाह वाह वाह।
2: और एक मतलब दो शेर और मुलाहिजा कीजिए कि अब इसमें तशनगी है न दरिया न ख्वाब है, अब इसमें तशनगी है न दरिया न ख्वाब है, सहरा नवर्द चश्म को बस इस्तेराब है।
0: अरे वाह वाह
1: कहने
0: वाह।
2: अब इसमें तशनगी है न दरिया न ख्वाब है,
0: वाह
2: सहरा नवर्द चश्म को बस इस्तेराब है, यानी मेरी शिकस्त पे गम कर रहे हैं लोग।
0: हाँ हाँ
1: वाह।
2: यानी मेरी शिकस्त पे गम कर रहे हैं लोग, मैं तो समझ रहा था जमाना खराब।
0: अरे वाह वाह।
2: यानी मेरी शिकस्त पे गम कर रहे हैं लोग,
0: वाह वाह वाह,
2: मैं तो समझ रहा था जमाना खराब है। वहशत फिराक आहो फगा बेबसी अलम, जो कुछ है इख्तियार में वो बेहिसाब है।
0: वाह वाह।
2: और एक गजल से शेर और मुलाहिज़ा कीजिए।
0: जी आता।
2: दिल पैहम फरियादी है,
1: दिल फरियादी है,
2: पैहम फरियादी है, थोड़ी वहशत बाकी है।
0: वाह।
2: दिल पहम फरियादी है, थोड़ी वहशत बाकी है, अब जाएं तो जाएं कहां,
1: अब जाएं
2: अब जाएं तो जाएं कहां, चारों ओर उदासी है।
1: क्या कहने।
2: अब जाएं तो जाएं कहां,
0: चारों ओर
2: उदासी है। और शेर देखें कि वीरानी पर जोर नहीं,
0: वीरानी पर जोर नहीं,
2: वीरानी पर जोर नहीं, अपने तौर से आती है।
1: क्या कहने।
2: वीरानी पर जोर नहीं,
3: अपने तौर से,
2: अपने तौर से आती है। है एक ऐसा शहर जहां, है एक ऐसा शहर जहां, हर लहजा इनकारी है।
0: क्या कहने।
2: है एक ऐसा शहर जहां,
0: वाह वाह वाह,
2: हर लहजा इनकारी है, मुझको देख के तन्हाई,
1: मुझको
2: देख के तन्हाई, दूर खड़ी शर्माती है। मुझको देख के तन्हाई, दूर खड़ी शर्माती है। शेर सुने कि अब दिन भर तो मसरूफ रहे,
0: दिन भर तो मसरूफ,
2: दिन भर तो मसरूफ रहे, रात की क्या तैयारी है।
1: क्या कहने।
2: दिन भर तो मसरूफ रहे,
0: रात
2: की क्या तैयारी है। और शेर सुने कि शोर ज्यादा करते हैं,
0: शोर ज्यादा करते हैं,
2: लफ्जों की मनमानी है।
0: क्या
1: कहने।
2: शोर ज्यादा करते हैं,
3: अच्छा है,
2: लफ्जों की मनमानी है, कौन इलाज करे अहमर, कौन इलाज करे अहमर, जीस्त बड़ी बीमारी है। कौन इलाज करे अहमर, जीस्त बड़ी बीमारी है। और एक गजल से चंद शेर और मुलाहिजा कीजिए कि अब तो मिलते भी नहीं शोर मचाने वाले, अब तो मिलते भी नहीं शोर मचाने वाले, इतना थक हार के बैठे हैं जमाने वाले।
0: वाँ वाँ वाँ वाँ।
2: अब तो मिलते भी नहीं शोर मचाने वाले,
0: वाँ वाँ वाँ।
2: इतना थक हार के बैठे हैं जमाने वाले, भूल जाने में सहूलत तो बहुत है लेकिन। शेर सुने कि भूल जाने में सहूलत तो बहुत है लेकिन, याद आते हैं कभी याद ना आने वाले। भूल जाने में सहूलत तो बहुत है लेकिन, याद आते हैं कभी याद ना आने वाले, फिर ये ताबीर की राहों में बिखर जाते हैं, फिर ये ताबीर की राहों में बिखर जाते हैं, कुछ खबर भी है तुझे ख्वाब दिखाने वाले। फिर ये ताबीर की राहों में बिखर जाते हैं, कुछ खबर भी है तुझे ख्वाब दिखाने वाले। इस तकल्लुफ पे लरसता हूँ कि दीवाने को, इस तकल्लुफ पे लरसता हूँ कि दीवाने को, आंख दिखलाने लगे आंख चुराने वाले। बतौर खास ये शेर मुलाहिजा कीजिए कि ताकि तखलीक के पर्दे से बशारत हो आया, ताकि तखलीक के पर्दे से बशारत हो आया, रक्स मिट्टी का दिखा चाक घुमाने वाले। ताकि तखलीक के पर्दे से बशारत हो आया, रक्स मिट्टी का दिखा चाक घुमाने वाले, वो जो आते नहीं जल्दी तो शिकायत कैसी, वो जो आते नहीं जल्दी तो शिकायत कैसी, देर से आते हैं कुछ देर से जाने वाले।
1: क्या कहने,
0: वाह वाह।
2: ये कहानी भी कहीं तूल पकड़ लेती मगर,
0: ये कहानी भी
2: कहीं तूल पकड़ लेती मगर, खुद ही बेजार थे किरदार निभाने वाले। ये कहानी भी कहीं तूल पकड़ लेती मगर, खुद ही बेजार थे किरदार निभाने वाले। उसकी जानिब तो किसी का भी नहीं ध्यान गया, उसकी जानिब तो किसी का भी नहीं ध्यान गया, शेर कहते ही रहे शेर सुनाने वाले। उसकी जानिब तो किसी का भी नहीं ध्यान गया,
0: क्या कहने,
2: शेर कहते ही रहे शेर सुनाने वाले। और मकता है कि शहर की गोद में बेजान पड़े थे अहमर, शहर की गोद में बेजान पड़े थे अहमर, अपनी आगोश में एक उम्र बिताने वाले। शहर की गोद में बेजान पड़े थे अहमर, अपनी आगोश में एक उम्र बिताने वाले।
0: वाह वाह वाह।
2: अभी आप खाकसार अहमद नदीम का कलाम सुन रहे थे। अब आइए अगले शायर की तरफ मैं चलता हूँ, और हमारी फहरिस्त में जो अगला नाम है वो तस्लीम दानिश साहब का है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से।
1: बहुत शुक्रिया मौजूद सामईन की खिदमत में तस्लीम दानिश का प्यार भरा आदाब, और ये गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। अर्ज करता हूँ कि गर्चे अब दूसरे मकान में हूँ,
0: गर्चे अब दूसरे मकान में हूँ
1: शेर कहता उसी जबान में।
0: वाह वाह।
1: शेर कहता उसी जबान में।
0: वाह वाह वाह।
1: और ये शेर देखें कि जिसकी गीबत से जोर पैदा हो, जिसकी गीबत से जोर पैदा हो, बात कहता उसी के कान में।
0: क्या कहने,
2: वाह।
1: जिसकी गीबत से जोर पैदा हो,
0: वाह वाह वाह,
1: बात कहता उसी के कान में। ये शेर देखें कि हाथ से कब के जान ले लेते, हाथ से कब के जान ले लेते, खैर गुजरी तेरी अमान में हूँ।
0: वाह
2: वाह।
1: हाथ से कब के जान ले लेते, खैर गुजरी तेरी अमान में हूँ, और था कभी दोस्तों अजीजों में, था कभी दोस्तों अजीजों में, इन दिनों दूसरी कमान में हूँ।
0: वाह वाह वाह।
1: था कभी दोस्तों अजीजों में,
2: इन दिनों दूसरी
1: कमान में हूँ।
0: वाह वाह।
1: और दूबदू ये शेर देखें बतौर खास के, दूबदू इस तरह हुई दुनिया, दूबदू इस तरह हुई दुनिया, होश आया कि किस गुमान में हूँ।
0: वाह क्या बात, वाह वाह।
1: होश आया कि किस गुमान में हूँ,
0: क्या कहने, वाह वाह।
1: ये शेर देखें कि फोन पर पूछने लगे अहबाब,
0: फोन पर पूछने लगे अहबाब,
1: धूप में हूँ कि साहिबान में हूँ।
0: वाह वाह वाह।
1: धूप में हूँ कि साहिबान में हूँ,
2: क्या कहने।
1: और ये एक और गजल का मतलब ये खिदमत है आप लोगों की खिदमत में।
0: जी आता
1: के अर्ज करता हूँ कि अगरचे ऐसा नहीं तुम पे एतबार ना हो,
0: अगरचे ऐसा नहीं तुम पे एतबार
1: ना हो, मैं चाहता हूँ मुझे इश्क बार बार ना हो।
0: वाह वाह वाह।

0: मैं
1: हाँ हाँ
0: चाहता
1: वाह
0: हूँ
1: वाह
0: मुझे इश्क बार बार ना हो। ये शेर देखें कि तलब अगरचे नहीं थी मुझे सितारों की, तलब
1: जनाब,
0: अगरचे नहीं थी मुझे सितारों की, ये जिद नहीं थी कि मौसम भी खुशगवार ना हो।
1: वाह वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह
0: ये
1: वाह
0: जिद
1: वाह
0: नहीं
1: वाह,
0: थी कि मौसम
1: मौसम
0: भी
1: भी
0: खुशगवार ना
1: खुशगवार ना,
0: हो।
1: वाह वाह
0: और
1: वाह,
0: शेर देखें बतौर ख़ास कि जो चाहता हूँ वो होता हुआ नहीं लगता, जो
1: जो
0: चाहता हूँ वो
1: चाहता
0: होता हुआ
1: हूँ
0: नहीं लगता,
1: वो
0: हुआ नहीं
1: होता
0: लगता।
1: हुआ नहीं लगता,
0: जो हो रहा है कम अज़ कम वो बार बार ना हो।
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: बात है,
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: जो हो
1: वाह वाह
0: रहा
1: वाह,
0: है कम अज़ कम वो
1: वो
0: बार
1: बार
0: बार
1: बार
0: ना
1: ना हो।
0: हो। और ये कैसे ख्वाब दिखाता है आसमां वाले, ये कैसे ख्वाब दिखाता
1: दिखाता
0: है
1: है
0: आसमां
1: आसमां वाले,
0: वाले, कहूँ किसी से तो जालिम को ऐतबार ना हो।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह
0: ये
1: वाह
0: कैसे ख्वाब
1: वाह
0: दिखाता
1: वाह
0: है
1: वाह
0: आसमां वाले। और
1: वाह,
0: ये शेर देखें कि ये गज़ल का मकता
1: जी
0: है
1: जी
0: कि ये बात सच है अकेला सा हो गया दानिश,
1: ये बात सच है,
0: ये
1: अकेला
0: बात
1: सा
0: सच
1: हो गया
0: है
1: दानिश,
0: अकेला सा हो गया दानिश, ये सच नहीं है किसी का भी इंतजार ना हो।
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: ये बात सच है अकेला सा हो गया दानिश,
1: वाह वाह
0: ये सच नहीं है किसी का भी इंतजार ना हो।
1: वाह,
0: अगरचे ऐसा नहीं तुम पे एतबार ना हो, मैं चाहता हूँ मुझे इश्क बार बार ना हो।
1: वाह वाह वाह,
0: की खिदमत में एक और गजल का मतलब पेशे खिदमत है कि
1: बताओ।
0: मेला तो नहीं शहर में बाजार लगा है, मेला
1: मेला
0: तो
1: तो
0: नहीं
1: नहीं
0: शहर
1: शहर
0: में
1: में
0: बाजार
1: बाजार
0: लगा
1: लगा
0: है,
1: है,
0: तरतीब से हर दर्जे का फनकार लगा है।
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: बात,
1: वाह
0: मेला
1: वाह
0: तो
1: वाह वाह
0: नहीं
1: वाह वाह,
0: शहर में बाजार लगा है,
1: क्या कहने,
0: तरतीब से हर दर्जे का फनकार लगा है।
1: क्या कहने,
0: और ये शेर देखें कि अब होती है तामीर मेरे खाने दिल की, अब होती है अब
1: तामीर
0: होती
1: मेरे
0: है
1: खाने
0: तामीर
1: दिल
0: मेरे
1: की,
0: खाने दिल की, दीवार की तकमील में मैमार लगा है।
1: वाह
0: वाह वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह वाह वाह
0: दीवार
1: वाह,
0: की
1: कितने,
0: तकमील
1: क्या
0: में
1: कहने, बहुत
0: मैमार
1: खूब,
0: लगा
1: वाह
0: है। और
1: वाह
0: ये
1: वाह,
0: शेर और देखें बतौर ख़ास
1: क्या
0: के
1: कहने हैं,
0: जिस राह से गुजरा हूँ यही देख सका हूँ,
1: जिस राह से गुजरा
0: जिस
1: हूं,
0: राह से गुजरा हूँ यही देख सका हूँ, नादा को गिराने में समझदार लगा है।
1: वाह वाह
0: नादा
1: वाह
0: को
1: वाह,
0: गिराने में समझदार
1: समझदार
0: लगा
1: लगा
0: है।
1: है,
0: और ये शेर और देखें कि बहते हुए इस खून पे क्या आहो बुका हो, बहते हुए इस खून पे क्या आहो बुका हो, इस शहर में पत्थर तो कई बार लगा है।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह वाह
0: बहते
1: वाह
0: हुए इस
1: वाह वाह
0: खून पे
1: वाह,
0: क्या आहो बुका हो,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: इस
1: तो
0: शहर
1: कई
0: में
1: बार लगा
0: पत्थर
1: है,
0: तो कई बार लगा है।
1: वाह वाह वाह,
0: और ये तय है कि बाजार में हर शय नहीं मिलती,
1: ये तय है कि
0: ये
1: बाजार में
0: तय
1: हर
0: है कि
1: शय नहीं
0: बाजार में
1: मिलती,
0: हर शय नहीं मिलती, कोशिश में बहर हाल खरीदार लगा है।
1: वाह
0: क्या
1: वाह वाह,
0: कोशिश में बहर हाल खरीदार लगा है। और माँ ये मकता पेश खिदमत है कि मालूम है गठरी में तेरी कुछ
1: कुछ
0: नहीं
1: नहीं
0: दानिश,
1: दानिश,
0: ये चोर तेरी गठरी में बेकार लगा है।
1: हाँ
0: क्या
1: हाँ
0: बात,
1: हाँ हाँ
0: ये चोर तेरी गठरी में बेकार लगा
1: वाह
0: है।
1: वाह वाह
0: और ये एक और गजल का मतलब पेश
1: वाह,
0: खिदमत है
1: जी
0: कि वो लोग और हैं जीने के ढब बदलते हैं,
1: लोग और हैं जीने
0: वो
1: के
0: लोग
1: ढंग
0: और
1: बदल,
0: हैं जीने के ढब बदलते हैं, फकत लिबास तो हर रोज सब बदलते हैं।
1: वाह वाह वाह वाह
0: फकत
1: वाह वाह,
0: लिबास तो
1: तो
0: हर
1: हर
0: रोज सब
1: रोज सब
0: बदलते
1: बदल, क्या
0: हैं,
1: कहने,
0: और निगाह सबकी नहीं आसमां के रंगों पर, निगाह
1: निगाह
0: सबकी
1: सबकी
0: नहीं
1: नहीं
0: आसमां
1: आसमां के
0: के
1: रंगों
0: रंगों
1: पर,
0: पर, किसी किसी के लिए रोजो शब बदलते हैं।
1: वाह
0: वाह
1: वाह वाह,
0: वाह, निगाह सबकी नहीं आसमां के रंगों पर,
1: किसी किसी के
0: किसी
1: लिए
0: किसी के
1: रोजो शब
0: लिए
1: बदलते
0: रोजो
1: हैं,
0: शब
1: वाह वाह
0: बदलते
1: वाह,
0: हैं। और ये शेर देखें कि निगाह फेर भी लीजिए तो किस तरफ कीजिए,
1: वाह
0: और
1: निगाह फेर भी
0: निगाह
1: लीजिए
0: फेर
1: तो
0: भी
1: किस तरफ की, तो
0: लीजिए
1: किस तरफ,
0: तो किस तरफ कीजिए, जब आंख बंद हो मंजर भी तब बदलते हैं।
1: वाह वाह
0: जब
1: वाह
0: आंख
1: वाह, क्या
0: बंद हो मंजर भी
1: कहने,
0: तब बदलते हैं। और
1: वाह
0: ये
1: वाह
0: शेर
1: वाह,
0: देखें कि जो जानते हैं
1: जो जानते हैं,
0: कि दीवानगी नहीं जाती,
1: क्या कहने,
0: जो
1: जो जानते
0: जानते
1: हैं कि
0: हैं
1: दीवानगी नहीं,
0: कि
1: कि नहीं आती,
0: दीवानगी नहीं जाती, समा बदलने से पहले मतलब बदलते
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ
0: वाह
1: हाँ वाह
0: वाह,
1: वाह वाह
0: जो
1: वाह
0: जानते
1: वाह,
0: हैं कि
1: बहुत अच्छा
0: दीवानगी
1: है,
0: नहीं जाती,
1: बहुत अच्छा
0: समा
1: है,
0: बदलने से
1: पहले
0: पहले
1: मतलब
0: मतलब
1: बदल,
0: बदलते हैं। और ये गजल का मकता है कि अभी
1: जी
0: अभी में ही दुनिया बदल गई दानिश,
1: अभी
0: अभी
1: अभी
0: अभी
1: में,
0: में ही दुनिया बदल गई दानिश, ये इंतजार है देखें वो कब बदलते हैं।
1: वाह
0: वाह,
1: वाह वाह वाह,
0: ये
1: वाह वाह
0: इंतजार
1: वाह
0: है
1: वाह
0: देखें
1: वाह
0: वो कब
1: वाह
0: बदलते हैं।
1: वाह वाह।

0: अच्छा पारा
1: पारा
0: पारा
1: पारा
0: खूब
1: खूब
0: है,
1: है,
0: रात के अंदर शरारा
1: शरारा
0: खूब
1: खूब
0: है,
1: है।
0: जागती आंखों से जो दिखता नहीं,
1: हाँ,
0: जाग
1: जाग नहीं।
0: जागती आंखों से जो दिखता नहीं, ख्वाब में उसका नजारा खूब है।
1: वाह वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह वाह
0: जागती आंखों से जो दिखता नहीं,
1: वाह वाह
0: ख्वाब
1: वाह,
0: में उसका
1: ख्वाब
0: नजारा
1: में
0: खूब है।
1: उसका नजारा खूब है,
0: और हिजर की दौलत से माला माल हूं,
1: हिजर
0: हिजर
1: की
0: की
1: दौलत
0: दौलत
1: से
0: से
1: माला
0: माल
1: माल
0: की
1: हूँ।
0: दौलत से माला माल हूँ, आशिकी में ये कसारा खूब है।
1: क्या
0: क्या कहने,
1: कहने, वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: और शेर बतौर खास के, दोस्तों की दोस्ती तो दरगुजर,
1: दोस्तों की दोस्ती तो
0: दोस्तों की
1: दरगुजर।
0: दोस्ती तो दरगुजर, दुश्मनी का एक सहारा खूब है।
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: कहने,
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह।
1: दरगुजर।
0: दोस्तों की दोस्ती तो दरगुजर,
1: दुश्मनी
0: दुश्मनी
1: का एक सहारा खूब है।
0: का एक सहारा खूब है। और ये शेर भी समाज फरमाए कि जुल्म सहकर मैं रहा जालिम मगर,
1: जुल्म
0: जुल्म
1: सहकर
0: सहकर मैं
1: मैं रहा
0: रहा
1: जालिम
0: जालिम
1: मगर।
0: मगर, जुल्म करके वो बेचारा खूब है।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह
0: जुल्म
1: वाह,
0: सहकर मैं रहा जालिम मगर,
1: वाह
0: जुल्म करके वो बेचारा खूब है। और ये आखिरी शेर के,
1: जी।
0: लश्करे बातिल से लड़ने के लिए,
1: लश्करे
0: लश्करे बातिल
1: बातिल
0: से
1: से
0: लड़ने
1: लड़ने
0: के
1: के लिए।
0: लिए, दो खजूरों पर गुजारा।
1: वाह वाह
0: वाह
1: वाह वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह, क्या
0: लश्करे
1: बात है,
0: बातिल से लड़ने के लिए,
1: क्या कहने हैं।
0: दो
1: दो खजूर,
0: खजूरों पर गुजारा खूब है।
1: वाह
0: और ये दूसरी गजल का बतला पढ़ता
1: जी
0: हूँ,
1: जी
0: समाज फरमाएं कि हमारे पास कैसा फलसफा है,
1: हमारे पास
0: कैसा
1: कैसा
0: हमारे
1: फलसफा है,
0: पास कैसा
1: कैसा।
0: फलसफा है, बदन कायम मगर दिल मर चुका है।
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: बात,
1: वाह वाह
0: कि
1: वाह,
0: हमारे
1: कैसा
0: पास कैसा
1: कैसा,
0: फलसफा
1: बदन
0: है,
1: कायम मगर दिल मर
0: बदन
1: चुका है।
0: कायम मगर दिल मर चुका है। और शेर खास तौर से समाज फरमाए कि
1: जी
0: मुझे
1: राज,
0: कतरे के बारे में बताओ,
1: मुझे।
0: मुझे कतरे के बारे में बताओ, समंदर तो मेरा समझा हुआ है।
1: वाह वाह वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: बहुत
1: क्या कहने
0: शुक्रिया।
1: हैं,
0: क्या
1: वाह
0: कहे,
1: वाह
0: मुझे
1: वाह।
0: कतरे के बारे में बताओ,
1: समंदर तो मेरा समझा हुआ
0: समंदर
1: है।
0: तो मेरा समझा हुआ है, और अभी ना धूल आंखों से हटाना,
1: क्या कहने, वाह
0: अभी ना धूल आंखों से हटाना, मेरी आंखों में कोई डूबता है।
1: वाह वाह वाह,
0: वाह
1: क्या
0: वाह
1: बात,
0: वाह वाह,
1: वाह,
0: और
1: बहुत
0: ये
1: खूब।
0: शेर समाज फरमाए कि मुझे हासिल हुई है रेगजारी,
1: मुझे हासिल हुई है,
0: मुझे हासिल हुई है रेगजारी, मगर सहरा से कोई झांकता है।
1: वाह
0: वाह
1: वाह वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह वाह वाह,
0: मुझे हासिल हुई है रेगजारी,
1: मगर सहरा
0: मगर
1: से कोई
0: सहरा से
1: झांकता
0: कोई
1: है।
0: झांकता है।
1: वाह
0: और ये शेर समाज फरमाए कि
1: जी,
0: तेरे सुनने में शायद कुछ कमी है, तेरे
1: तेरे
0: सुनने में
1: सुनने में
0: शायद
1: शायद
0: कुछ
1: कुछ कमी
0: कमी है,
1: है।
0: तेरे सुनने में शायद कुछ कमी है, मेरी आंखों से कोई बोलता है।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह वाह,
1: वाह,
0: तेरे सुनने में शायद कुछ कमी है,
1: मेरी आंखों से कोई
0: मेरी
1: बोलता है।
0: आंखों से कोई बोलता है। और ये मक्ते का शेर कि तुझे ऐ सैफ जख्मे दिल मुबारक,
1: तुझे सैफ जख्मे दिल मुबारक।
0: तुझे ऐ सैफ जख्मे दिल मुबारक, अयामे शब कोई कहता रहा है।
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: बात,
1: वाह
0: गजल का मतलब फिर पढ़ता हूँ,
1: जी
0: समाज फरमाए कि
1: जी अता,
0: इसीलिए तो तुझे हम कलाम करना था, इसीलिए
1: इसीलिए
0: तो
1: तो
0: तुझे हम
1: तुझे हम
0: कलाम
1: कलाम
0: करना,
1: करना
0: इसीलिए तो
1: था,
0: तुझे हम कलाम करना था, बस एक रात में किस्सा
1: तमाम
0: तमाम
1: करना।
0: करना
1: वाह
0: था,
1: वाह वाह वाह,
0: वाह वाह, इसीलिए तो तुझे हम
1: हम
0: कलाम
1: कलाम
0: करना
1: करना था,
0: था,
1: बस एक रात
0: बस
1: में
0: एक रात में
1: किस्सा
0: किस्सा तमाम
1: तमाम
0: करना
1: करना।
0: था, बदन को चाह थी दुनिया को जीत लेने की,
1: वाह, बदन को चाह
0: बदन
1: थी,
0: को चाह थी दुनिया को जीत लेने की, मुझे भी नफ्स को अपना गुलाम करना था।
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: कहने,
1: वाह वाह
0: वाह वाह,
1: वाह वाह
0: बदन को चाह थी
1: वाह
0: दुनिया
1: वाह,
0: को जीत लेने की,
1: मुझे भी नफ्स को
0: मुझे भी
1: अपना,
0: नफ्स को अपना गुलाम करना था, और कदम कदम पे नई ख्वाहिशों के हमले थे, कदम
1: वाह,
0: कदम पे नई
1: नई
0: ख्वाहिशों के
1: ख्वाहिशों के
0: हमले
1: हमले
0: थे, कदम
1: थे। क्या
0: कदम पे मुझे कत्लेआम करना
1: वाह
0: था।
1: वाह, क्या बात, वाह हाँ
0: और
1: हाँ
0: ये शेर बतौर खास के, सभी को फिक्र थी रोशन चराग बनने की,
1: बनने की,
0: सभी को
1: सभी को
0: फिक्र थी
1: फिक्र थी
0: रोशन,
1: रोशन
0: सभी को
1: चराग
0: फिक्र थी
1: बनने
0: रोशन
1: की,
0: चराग
1: चराग
0: बनने
1: बनने
0: की,
1: की।
0: मुझे तो डूबते सूरज पे काम करना था।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह वाह
0: सभी
1: वाह,
0: को फिक्र थी रोशन चराग बनने
1: वाह
0: की,
1: मुझे तो डूबते सूरज पे
0: मुझे तो
1: काम करना
0: डूबते
1: था,
0: सूरज
1: क्या
0: पे काम
1: कहने।
0: करना
1: वाह,
0: था, बिछड़ रही थी हर एक गांव मंजिलें मुझसे,
1: बिछड़
0: वाह,
1: रही
0: बिछड़
1: थी।
0: रही थी हर एक गांव मंजिलें मुझसे, सितम तो ये के सफर भी तमाम करना था। वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह वाह,
0: बहुत शुक्रिया।
1: क्या बात है,
0: बिछड़ रही थी हर एक गांव मंजिलें मुझसे, सितम तो ये कि सफ़र भी तमाम करना
1: क्या
0: था।
1: कहने हैं।
0: अब जिस मकान में

0: मेरे रकीब रहते थे, वो जिस मकान में मेरे रकीब रहते थे, तमाम उम्र वहीं पर कयाम करते थे।
1: वाह वाह
2: क्या कहने, वाह वाह।
0: वो जिस मकान में मेरे रकीब रहते थे,
1: तमाम उम्र
0: वहीं पर कयाम करना था। तनशेर देखें कि दर्दमंदों न बेसहारों में,
1: दर्दमंदों न बेसहारों में,
0: दर्दमंदों न बेसहारों में दर्द पलता है दिल के मारों में।
2: वाह वाह वाह।
0: दर्दमंदों न बेसहारों में
1: दर्द
0: पलता है दिल के मारों में।
1: वाह।
0: कोई पैकर नहीं तेरे जैसा,
1: कोई पैकर नहीं तेरे जैसा
0: ना समंदर न रेगजारों में।
2: क्या कहने,
0: कोई पैकर नहीं तेरे जैसा।
1: वाह वाह।
0: ना समंदर न रेगजारों में। और शेर समाप्त फरमाए कि जब से मुझको सुकून नसीब हुआ एक हलचल मची है यारों में।
2: क्या कहने, वाह।
0: जब से मुझको सुकून नसीब हुआ
1: एक हलचल मची है यारों में।
0: और ये शेर समाज फरमाए कि सजदाए हक की उनको उजलत है है जो बुहरान आबशारों में।
1: सजदाए हक की उनको उजलत है जो बुहरान आबशारों में।
0: और दिल को बेहद सुकून रहता है जब से बैठा हूँ बेकरारों में।
2: जब से बैठा हूँ बेकरारों में।
0: और ये मक्ते का शेर के सैफ दुश्मन भी खूब हैं तेरे छुप के बैठे हैं गमगुसारों में।
1: क्या बात है,
2: क्या कहने।
0: सैफ दुश्मन भी खूब हैं तेरे। बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया।
3: सामईन, अभी आप मुशायरे के तहत अहमद नदीम, सैफुद्दीन सैफ, जावेद नियाजी और तस्लीम दानिश से उनका कलाम सुन रहे थे। यकीनन आप इससे महसूस हुए होंगे। तो सामईन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, तब तक के लिए अपनी मेज़बान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ तलत।

17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने

0: सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 GW का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना

0: होगा जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु,

0: पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई, राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
1: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory, addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. Mr. Modi urged the students to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said production has begun at

0: in Keonsa district. Besides several other areas, authorities are closely monitoring the situation, particularly downstream areas, as more rainfall is forecast. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: In Jammu and Kashmir, the Amarnath Yatra will remain suspended from both Waltal and Pahalgam routes from August 9th in view of track restoration works and adverse weather conditions. Divisional Commissioner Kashmir Anshul Garg said in a statement that the recent rains have necessitated repair and maintenance of vulnerable stretches along the Yatra tracks, with the restoration work being undertaken by the Border Roads Organization. Indian shuttler Smita Chaliha will take on China's Che Han in the women's singles final of the Korea Masters badminton tournament in Asan tomorrow morning. Smita reached the final after defeating fellow Indian Rakshita Ramraj 21-13, 16-21, 21-13 in the semi-final today. Indian lifters continued their impressive performance at the Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent, Uzbekistan today with a gold and a silver medal in the men's junior 60-kilogram category. Tom Chumite won a total of 3 medals, gold in the overall category, bronze in the snatch and silver in the clean and jerk. He finished with a combined lift of 266 kilograms. Guru Naidu Sanapati bagged 2 medals, silver in the overall category and silver in the snatch, along with bronze in the clean and jerk. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian president says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Smita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों में इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफुजात की जरूरत उजागर की है। सरकार ने स्टार्टअप इदारों को मजीद तकवियत पहुंचाने की खातिर बड़े सनअती इदारों के साथ कलीदी मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। ईरान के सदर ने कहा है कि उनका मुल्क सिफारतकारी के तई अहदबंद है, लेकिन वो दबाव में आकर नहीं झुकेगा। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने के तनाजुर में फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में आसान में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में स्मिता चलिहा का मुकाबला चीन की कहान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखें और अपने आप से सवाल करें कि किस तरह उनके काम से मुल्क को फ़ायदा हो सकता है और उसकी ज़रूरियात पर तवज्जो दी जा सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं और नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे शोबों का हवाला दिया और कहा कि भारत सभी शोबों में खुद कफील बनने की सिमत काम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुद किफालत की सिमत यह मुहिम एक विकसित भारत की तामीर के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगी।
3: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, technological self-reliance,

0: इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर शोबे में भारत की कोशिशों का तذکرہ करते हुए कहा कि भारत के पहले सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है।
0: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: उधर तालीम के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी आईआईटी दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन हरीश सालवे और आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बनर्जी भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीरे आज़म ने आईआईटी दिल्ली में आला कारकर्दगी वाले कंप्यूटिंग मरकज परम प्रज्ञा का इफ्तिताह भी किया। उम्र दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों के इमदाद बाहमी बैंकों के लिए और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफुजात की जरूरत पर जोर दिया है। वह आज मुंबई में सहकार नव क्रांति प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि डिजिटल लेन देन के फ्रॉड के मामलात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बैंककारी सेफ्टी को यकीनी बनाने की खातिर और ज्यादा मजबूत फॉरेंसिक मदद पर जोर दिया। उन्होंने साइबर जराइम और माली उमूर से मुतालिक जराइम से निमटने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ इश्तराक की अहमियत को उजागर किया। वजीर दाखिला ने एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का आगाज भी किया जो शहरी इलाकों के इमदाद बाहमी बैंकों के लिए दिन रात साइबर निगरानी और सिक्योरिटी फराम करेगा।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और एनएफएसयू फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: हुकूमत ने आज अहम सनअतकारों और इको निज़ाम तैयार करने वालों के साथ सिलसिलेवार कलीदी मुफाहमतनामों का ऐलान किया, जिनमें कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वाल्टर इंडिया, कास 24 और स्टार्टअप्स इंडिया काउंसिल शामिल हैं। इन मफाहमत नामों पर तिजारत और सनत के सनती और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे ने दस्तखत किए हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने मुतला किया है कि कैश फ्री पेमेंट्स के साथ दस्तखत किए गए मफाहमत नामे का मकसद स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करना है। डार्विन डायनामिक्स के साथ दस्तखत किया गया मफाहमतनामा एंटरप्रेन्योरशिप की तरक्की और स्टार्टअप्स इको निज़ाम को मजबूत करेगा। वजारत ने मजीद कहा कि इस शराकतदारी का मकसद टायर 2 और टायर 3 और देही खित्तों में छोटे कारोबारों को फरोग देकर स्टार्टअप्स इंडिया पहल को वसत देना है। सरकार ने यह वजाहत की है कि सार्फीन के लिए यूपीआई और एक शख्स से दूसरे शख्स के दरमियान लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वजारत खजाना ने एक बयान में कहा है कि सार्फीन को यूपीआई के जरिए रकम की अदायगी करते वक्त लेन देन पर किसी तरह के चार्ज का सामना नहीं करना होगा। साथ ही बेशतर कारोबारी लेन देन पर भी कोई चार्ज आयद नहीं होगा। वजारत ने कहा है कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR चार्जेस का सिलसिला शुरू होता है तो इसका इतलाक एक मखसूस हद के ऊपर महदूद कारोबारी लेन देन पर ही होगा और यह बहुत मामूली शरह होगी। वजारत ने कहा है कि अदायगी और तस्फीये के निजाम से मुतालिक एक्ट में तरमीम एक ऐसा बंदोबस्त है जिसका मकसद यूपीआई के तवील मुद्दत तक पायदार रहने, तकनीकी पेशरफ्त और उभरते हुए खतरात के तनाजुर में इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। भारत ने अपनी माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में एक अहम संगमील हासिल किया है। मुल्क में नस्बशुदा गैर रवायत

0: खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मुल्क में खवातीन रिजर्वेशन बिल पर फौरी तौर से अमल दरामद के लिए शिरोमणि अकाली दल के मुतालबे का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि सभी को एक मुनसिफाना और मसावियाना हदबंदी के साथ खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मिलकर आगे आना चाहिए, जिसमें बराबर की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया गया हो। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने सरकर्दा रहनुमाओं की मीटिंग में यह मुतालबा किया था। शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पार्टी ने एक ऐसी मुनसिफाना और मसावियाना हदबंदी की भी मांग की है, जिसमें सभी रियासतों के लिए बराबर की नुमाइंदगी हो। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जोर देकर कहा है कि शहरियों से ये उम्मीद रखने के बजाय कि वो निजाम इंसाफ की जानिब कदम बढ़ाएंगे, इंसाफ खुद शहरियों तक पहुंचना चाहिए। वह आज इंदौर में कानूनी खिदमात से मुतालिक कौमी अथॉरिटी की मगरबी जोन की इलाकाई कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। जनाब सूर्यकांत ने कहा कि इंसाफ तक बामकसद रसाई का तकाजा है कि कानूनी इदारे उन लोगों तक पहुंचें जो उनसे रुजू करने से कासिर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के तीन अहम सतूनों मुज़ाकरात, अजमत और शमूलियत से मसावियाना इंसाफ के आईनी वादे के लिए अमली माने मैसर होता है।
1: मैं हमेशा बोलता हूं कि न्यायपालिका को, चाहे उसमें हमारा न्यायिक अधिकारी है या कोई भी कर्मचारी है, मैंने आज कहा है कि हम जैसे हॉस्पिटल में एक मरीज जब जाता है, हमारी वहां पर बहन नर्स के साथ हमारा कोई जो टेक्नीशियन है, कोई डॉक्टर है, जो जैसे वो उनसे व्यवहार करके एक मरीज के साथ प्यार से बात करके उसकी आधी बीमारी को जैसे उसको अनुभव होता है कि मैं शायद ठीक हो जाऊंगा, ऐसी ही भावना एक हमारे यहाँ पे न्यायिक मंदिर में अगर कोई आता है तो उसको ये होना चाहिए कि मेरा जो अधिकार है जिससे मुझे वंचित किया गया है वो अधिकार मुझे मिलेगा।
0: झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी और दीगर मसाबिकती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जबकि रियासती हुकूमत और मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के दरमियान बातचीत जारी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सुप्रीम कोर्ट में एक उजरदारी दाखिल की गई है, जिसमें 14वें जेपीएससी इब्तदाई इम्तिहान को मुबैना बेसाब्तगियों की वजह से मनसूख किए जाने और उसे दोबारा कराए जाने की दरख्वास्त की गई है। इस दौरान जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कई दिनों से एहतजाज कर रहे तलबा मुसलसल अपनी मांगों पर जोर दे रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि सिर्फ लफ्जी यकीन दहानी काफी नहीं है और यह मुजाहरा तब तक जारी रहेगा जब तक पुख्ता नतायज बरामद नहीं होते। रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के साथ अपनी बातचीत भी तेज कर दी है। उन्होंने तलबा उम्मीदवारों, वालदेन और समाजी कारकुनों से 10 अगस्त को मुजवजा असेंबली घेराव में बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की, ताहम इंतजामिया ने एहतजाज के मकाम के आसपास सिक्योरिटी सख्त कर दी है। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत के बहरी तरक्की के सफर में मल्लाहों का अहम रोल रहा है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के सरकार के अहद को दोहराया कि हर मल्लाह महफूज रहे, उसका ख्याल रखा जाए और मदद की जाए। जनाब सोनोवाल ने आज मुंबई में मल्लाहों की सिक्योरिटी तहफ्फुज़ और बहबूद के मौजू पर एक कौमी मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत मल्लाहों के ताल्लुक से दुनिया के एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर उभरा है। ईरान के सदर मसूद पजिश्कियान ने मुल्क के कौमी मफादात का तहफ्फुज़ करने के लिए सफारतकारी के तई अपने मुल्क के अहद का इआदा किया है और जोर देकर कहा है कि ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जनाब पजिश्कियान ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर एक इंटरव्यू में अमरीका के साथ बातचीत और एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है, जिसका मकसद जंग खत्म करना है। उन्होंने कहा कि जब तक अमरीका मस्कूरा समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, ईरान भी अपने वादों पर अमल करता रहेगा। ईरान के सदर ने कहा कि अगर अमरीका अपने अहद की तकमील में नाकाम रहता है तो इस अमल को जारी रखने के लिए ईरान पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भारतीय मौसमियाती महकमे आईएमडी ने कल उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और शुमाल मशरक के हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार जजायर में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। आज दिल्ली के

بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة

Christina.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है।

0: मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा कि हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया जो दोनों देशों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुद्दीचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुद्दीचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आर सिल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरी मेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुद्दीचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस करल प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार पुद्दीचेरी पुलिस की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जा रहा है। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज आबिद जान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओतारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को और बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1.47 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। बताया गया कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला 1:10 और 6 सेकंड और श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा

0: को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति जीडी वेंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाशनाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आर सिल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज आबिदजान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओत्तारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार

0: रक्षा महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुद्दुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आर सेल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कल वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई, जिसमें दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। आज बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को दिल्ली NCR के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi yesterday, Mr. Modi urged the students to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said the strive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President J.D. Vance late last night. In a social media post, Mr. Modi said they discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. They noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr.

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 4 बजने को है, अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। अगला कार्यक्रम होगा अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत।
2: नमस्कार, आकाशवाणी
1: अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: तो अभी आप सुन रहे थे खास कार्यक्रम अर्चना, भक्तिमय संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे थे AIR लाइव न्यूज 24/7 पर। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4:20 और पूरे 10 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं खास कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बांसुरी वादन जी रघु रमन का रागम मध्यावती में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीनावेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 अगस्त 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हमारे कार्यक्रम जो अब आरंभ होते हैं।

अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको बता दें आज आप कौन कौन से कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ पर सुनेंगे। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें, जिसमें आज आप सुनेंगे बद्ध पद्मासन, योगा फॉर वेलनेस। 5:20 पर देशभक्ति संगीत होगा और सुबह 5:30 पर कार्यक्रम स्वर रंजनी में आज आप सुनेंगे नीपा चौधरी का राग बैरागी में गायन। सुबह 6:10 पर कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे भजन शब्द और नट। 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन में आज भगवान महावीर के उपदेश। हर रोज की तरह आज भी 6:45 पर सुबह आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। सुबह 6:55 पर संस्कृत में समाचार। संगीतिका का कार्यक्रम होगा सुबह 7:10 पर और 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

0: पर और साहित्यिकी में आज आप सुनेंगे जयराम शर्मा के मुझसे भेंट। भेंट करता होंगे श्री ओंकार त्रिपाठी वरिष्ठ कवि। 8:45 पर कार्यक्रम आज आप सुनेंगे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। 5:00 अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं और जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कम्प्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विन से कल फोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिदजान में कोटे दी आयवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटे दी आयवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। श्री सिंह ने अफ्रीका के साथ मजबूत और व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और कोटे दी आयवर की लंबी समय से चली आ रही दोस्ती को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाशनाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R सेल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में

0: गृहमंत्री मोरूगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ आज अगले दौर की वार्ता करेगी। इससे पहले सरकार की ओर से वार्ता में शामिल मंत्रियों ने कहा कि वो परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि राज्य के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए गए हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केन्द्र भी कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने बताया कि बारिश के कारण यात्रा मार्गों के संवेदनशील हिस्सों की मरम्मत और रखरखाव आवश्यक हो गया है, जिसका काम सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए खराब मौसम की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi yesterday, Mr. Modi urged the students to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President J.D. Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. They noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and the Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. Over the years, it has emerged as a true people's movement that inspires citizens across regions and communities to celebrate the tricolour as a symbol of India's unity, honour and collective national identity. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. Vice President C.P. Radhakrishnan will participate in the Har Ghar Tiranga campaign and hoist the national flag

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 5:10 और पूरे 20 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाए। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के 1 घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज

भी योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं, हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ दें।